मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। मीडियम वेव और FM पर हमारी प्रथम सभा अब एक साथ आरंभ हो रही है।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट,

0: लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश पांच प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

हम अपना सब कुछ सौंप चुके हे नाथ तुम्हारे चरणों में, लौ लगी रहे निश्चिन अब तो हे नाथ तुम्हारे चरणों में, करुणा कर अब तो आ जाओ इस मन मंदिर में बस जाओ, निष्काम दीप सा सदा जले हे नाथ तुम्हारे चरणों में।

कण कण में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चहूँ ओर निहारूँ तेरी सूरत मेरे राम। सतगुरु सच्चा बूटा तू ही, दसवां द्वारा तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी, अपनी बोली अपना वेश।

व्याप रहा जो कण कण में, तू उसके गुण गाए जा, प्रभु में ध्यान लगाए जा, तू ज्योत से ज्योत मिलाए जा।

अभी आप पंडित भीमसेन जोशी, यूनुस मलिक, भाई गोपाल सिंह रागी और मुकेश के स्वर में भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। वंदना अब संपन्न होती है।

अभी आप सुन रहे थे वंदना, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 6:25 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं गांधी चर्चा।

भारतीय इतिहास में गांधी जी का व्यक्तित्व मानव चिंतन के लिए समुद्र की तरह है। उसमें कितने भी गोते लगाए किंतु उसकी गहराई को मापने में असमर्थ ही रहते हैं। गांधी जी की बात करते समय हमारा ध्यान उस गीत की तरफ जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस गीत के आधार पर हम उनके योगदान को राजनीतिक चश्मे से ही देखते हैं। दूसरा पक्ष यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक पक्ष पीछे कहीं छूट जाते हैं, जो उन्हें निश्चित ही भारतीय परंपरा के अवतारवाद की परिकल्पना के करीब ले जाती है। गांधी जी का प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। गांधी न केवल पतित पावन राम की बात करते थे, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का हर संभव प्रयास करते थे। गांधी जी के जीवन की प्रत्येक घटना हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन की छोटी छोटी बातों में अनेक महत्व की बातें छुपी होती हैं। जहां तक समय का प्रश्न है तो गांधी जी का संपूर्ण जीवन उसका पाबंद रहा। वो अपना सारा काम समय व नियम के अनुसार करते थे। इसी कारण गांधी जी को लोग गिलट की घड़ी का दास और 17 घंटों का गुलाम कहा करते थे। गांधी जी घर में हो, बाहर हो या फिर जेल में भी हो, अपने नियमों से कभी पीछे नहीं हटते थे। वो समय को धन के समान मूल्यवान मानते थे। उनका मानना था कि जैसे व्यक्ति अपनी संपत्ति को मूल्यवान मानता है और उसके एक एक पैसे का हिसाब रखता है, उसी प्रकार व्यक्ति को समय का भी हिसाब रखना चाहिए। जो लोग अनियमितता या अन्य कारणों से समय का मूल्यांकन न कर उसे नष्ट कर देते हैं, उन्हें अपने समय धन के नष्ट होने का अनुमान ही नहीं रहता। बापू का कहना था कि जिस प्रकार संपत्ति के माह भर का हिसाब करते हुए उसके सदुपयोग और दुरुपयोग को लेकर सावधान रहते हैं, उसी प्रकार इस समय धन का भी महीने भर का विवरण सामने रखकर अपने जीवन को नियमित करने का प्रयास करना चाहिए। इससे जो गलतियां हो रही होती हैं उनको दूर करने की प्रेरणा मिलती है। जैसा कि नारायण देसाई ने व्यक्त किया कि बापू कुटी सेवाग्राम में एक छोटा सा बोर्ड गांधी जी ने अपने सीट के पीछे लटका दिया था, जो मिलने आने वाले व्यक्ति को उसको दिए समय की ओर इशारा करता था, जिस पर लिखा था, जल्दी करें, संक्षिप्त करें, शीघ्र जाएं। इससे ये पता चलता है कि किसी से भी मिलने का उनका जो समय निर्धारित होता, उससे 1 मिनट भी ज्यादा समय उनसे कोई ले नहीं सकता था। एक उदाहरण के द्वारा, जैसा कि काका कालेलकर ने उल्लेख किया है कि बापू समय के इतने पाबंद थे कि उसकी मिसाल भारत में नहीं मिलेगी। एक बार काका कालेलकर को उनके साथ बंबई जाने का अवसर प्राप्त हुआ। सुबह 7 बजे का समय नियत हुआ। काका साहब 1 मिनट बाद उनके कमरे में पहुंचे, तब तक बापू अपना सारा सामान स्वयं लेकर रास्ते में नजर आए। काका साहब दौड़कर उनके पास पहुंचे और बोले, आपने प्रतीक्षा नहीं की? बापू ने उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं सोची। इस प्रकार उनका यह आदर्श था कि दूसरा देर करे करे, स्वयं देर नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, साबरमती आश्रम में रहने वाले सभी लोगों के लिए अनुशासन, सत्यता और तत्परता के नियमों का पालन अनिवार्य था। आश्रम में एक नियम प्रचलित था कि कोई भी सुबह शाम के प्रार्थना, भोजन और सामूहिक सूत्र यज्ञ जैसे कार्यों के लिए इसमें रहने वाले लोगों को घंटी बजते ही पहुंचने में 1 मिनट का भी विलंब नहीं होना चाहिए। यदि कोई विलंब करता है और इस प्रकार की घटना महीने में 3 बार होती है, तो वो आश्रमवासी आश्रम में नहीं रह सकता। इस प्रकार सपरिवार आश्रम में रहने वाले लोग यदि आश्रम से जाना चाहते थे तो बापू से आज्ञा लेनी पड़ती थी, किंतु 3 विलंब के दोषी को स्वयं ही आश्रम छोड़ देना होता था। गांधी जी स्वयं भी इस बात का ख्याल करते थे। एक बार 1942 में आगा खां महल में निवास के दौरान सुबह 6 बजे सोकर उठे। इससे उन्हें बहुत ही ग्लानि हुई, अतः इसके प्रायश्चित में बापू ने आहार में दूध का परित्याग कर दिया तथा केवल फलों का रस ग्रहण किया। गांधी जी की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाती थी। अमूमन गांधी जी सुबह 3:30 बजे उठ जाते, यहां तक कि अपने जीवन के अंतिम दिन अर्थात 30 जनवरी को भी बापू सामान्य नियम के अनुसार 3:30 बजे ही उठे थे। इस प्रकार
समय प्रबंधन के संबंध में गांधी जी के विचारों से हमें प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा कि व्यक्ति को न केवल अपने समय का बल्कि दूसरे के समय का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि समय मानव जीवन की अत्यंत मूल्यवान वस्तु है। यदि वो एक बार बीत जाए तो फिर वापस लौटकर नहीं आता, अन्यथा जीवन उस कहावत की तरह हो जाएगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। इस समय आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण। 6:35 हुए हैं। ये समय है स्वास्थ्य संदेश का। स्वास्थ्य संदेश में आज जानकारी का विषय है ब्लड प्रेशर की समस्या। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा।
1: स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो सोचने, समझने और कार्य करने की सामर्थ्य हमारे अंदर अधिक होगी। प्रायः देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ कुछ समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ऐसी ही एक समस्या है हाई ब्लड प्रेशर की। उच्च रक्तचाप शरीर की एक ऐसी स्थिति है जिसे आमतौर से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बदकिस्मती यह है कि दुनिया भर में जितने लोग इससे मर रहे हैं उतने किसी और बीमारी से नहीं, इससे भी ज़्यादा खबर

0: उत्पादक आबादी है। रक्तचाप के अधिकतम दबाव को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जबकि कम से कम दाब को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। आदर्श ब्लड प्रेशर 120/80 यानी ऊंचे में 120 और नीचे में 80 है। युवा वर्ग में अक्सर डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ा हुआ पाया जाता है, जबकि अधिक उम्र के लोगों में सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा देखने में आता है। उच्च रक्तचाप के चलते रोगी में हृदय संबंधी विकार, किडनी के रोग आदि कई तरह की जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। उच्च रक्तचाप से ब्रेन हेमरेज जैसी अत्यंत गंभीर समस्या भी उत्पन्न होती देखी जा रही है। हाई बीपी के मुख्य कारण क्या है? खान पान में अधिक नमक का सेवन, मोटापा, डायबिटीज या मधुमेह, तनाव, जेनेटिक फैक्टर्स और महिलाओं में हार्मोन्स परिवर्तन। हाई बीपी के कारण होने वाले कुछ संभावित प्रभाव इस प्रकार हैं। अगर समय रहते इस हाई बीपी को नियंत्रित न किया जाए तो ये न केवल आपके हृदय बल्कि अन्य अंगों पर भी असर डाल सकता है, जिससे वे सामान्य ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, जैसे स्ट्रोक। उच्च रक्तचाप स्ट्रोक का जोखिम पैदा करता है। इसके कारण मस्तिष्क की कोई कमजोर नस फट सकती है, इससे मस्तिष्क में रक्तस्राव हो सकता है, इसे स्ट्रोक कहते हैं। उच्च रक्तचाप के कारण आंख की रक्तवाहिकाएं फट सकती हैं या उनमें रक्तस्राव हो सकता है, इससे नज़र धुंधली हो सकती है या दिखना काफ़ी कम हो सकता है, जिससे अंधापन भी हो सकता है। किडनी हमारे शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। उच्च रक्तचाप के कारण किडनी की रक्तवाहिकाएं सकरी और मोटी हो सकती हैं, इससे किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और खून में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। उच्च रक्तचाप हार्ट अटैक के सिलसिले में काफ़ी बड़ा जोखिम खड़ा करता है। अगर हृदय को सक्रिय या सख्त हो चुकी रक्तवाहिकाओं के कारण पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो छाती में दर्द या एंजाइना हो सकता है। अगर खून का बहाव रुक जाए तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। हाई बीपी के कारण कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का खतरा रहता है। एक गंभीर नशा है जिसमें हृदय धड़कते धड़कते इतना थक जाता है कि यह शरीर की जरूरतों के मुताबिक पर्याप्त खून पंप नहीं कर पाता। वास्कुलर डिमेंशिया, इसके कारण समय बीतते बीतते मस्तिष्क को खून की आपूर्ति और कम हो जाती है और व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति घटती जाती है। पेरिफेरल ब्लड वेसल डिजीज, पैरों तक खून का बहाव प्रभावित होता है, जिससे दर्द तथा अन्य समस्याएं हो सकती हैं, कभी कभी गैंग्रीन भी हो जाता है। ब्लड प्रेशर के रोगियों को संतुलित भोजन करना चाहिए, हरी सब्जी और सलाद का सेवन अधिक करना चाहिए। इसके अलावा फास्ट फूड, घी, तेल का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। शरीर को फिट रखने के लिए योगासन, प्राणायाम और ध्यान के लिए वक्त जरूर निकालें। सिर्फ 30 मिनट में योगासन अभ्यास से ही आप महसूस करेंगे कि आपका बीपी सामान्य हो रहा है। हाई बीपी के रोगियों का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नियंत्रित होना चाहिए। हाई बीपी के साथ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल दिल को नुकसान पहुंचा सकता है और धीरे धीरे व्यक्ति दिल का रोगी बन जाता है। तो श्रोताओं, इस प्रकार संतुलित खान पान एवं नियंत्रित जीवन शैली से हाई बीपी की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आज के स्वास्थ्य संदेश में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संदेश, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे अमृत काव्य कलश में सोनू रूपा विशाल की काव्य रचनाएं। सुबह सवेरे कार्यक्रम अब तक पहुंचेगा 7:31 पर 102.9 मॉर्निंग हिट्स। नए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत 9:25 पर सुनिएगा रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़ा प्रेरक प्रसंग। उर्दू प्रोग्राम आप सुन सकेंगे।

सुबह 9:30 इसमें आज आप सुनेंगे नातिया नशिस्त। इसमें शिरकत करेंगे जनाब अनवर अली, जनाब यासीन अहमद ख़ान और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा नियाजी।

आपके अनुरोध पर फिल्मी गीत आप सुनेंगे 10:10 पर सुनहरा दौर। ये कार्यक्रम अब तक पहुंचेगा 10:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे 2000 के दशक के फिल्मी गीत। धरोहर इस कार्यक्रम में 11 बजे सुनिएगा गुडविन मसीह का लिखा नाटक ख्वाबों के पंख। प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की होगी। मन भवन कार्यक्रम प्रसारित होगा 11:30 पर। इसमें आज एक ही शीर्षक से फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे। आज का शीर्षक होगा सनम। गीत आपके नाम। ईमेल आधारित फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:10 पर। 1:15 पर नाथ कव्वाली का हमारा हफ्तावार प्रोग्राम होगा। इसमें आज फनकार होंगे शाहिदीन साबरी और साथी। कुमकुम ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे आज शाम के साथ युवा साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युवाणी होगा 5:15 पर। 6:20 पर कृषि जगत का प्रसारण होगा। 7 बजे सुनिएगा शास्त्रीय संगीत। सुगम संगीत में 7:31 पर आज कलाकार होंगे अपूर्व भारद्वाज। गीत गाता चल ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8 बजे। 9:30 पर कार्यक्रम होगा स्पोर्ट्स राउंडअप। प्रस्तुति होगी अवधेश कुमार गौतम की और सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर आप तक पहुंचेगा 10:00। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। आज आप सुनेंगे कड़ी संख्या 347।

लंका विजय के पश्चात सीता की अग्नि परीक्षा मात्र एक लीला थी। उनके असली स्वरूप को तो हरण के पूर्व श्री राम ने अग्निदेव के पास धरोहर के रूप में रख दिया था। अग्नि परीक्षा का आदेश सुनकर न केवल राक्षसियों को विषाद होता है, बल्कि लक्ष्मण की आंखों में भी दुख के आंसू उमड़ आते हैं। किंतु स्वयं सीता से धर्म, विवेक तथा नीति के वचन सुनकर वे लकड़ियां एकत्र कर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। इस लीला की पात्रा के रूप में सीता अग्निदेव से प्रार्थना करती हैं कि यदि मन, वचन और कर्म से वे पति परायणा रही हैं तो अग्नि उनके लिए चंदन के समान शीतल हो जाए, उनकी छाया मूर्ति तथा अपहृत होने का कलंक आग की प्रचंड लपटों में भस्म हो जाते हैं। अग्निदेव स्वयं

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। आज गायक कलाकार थी शोभना राव, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं, कुछ ही देर में संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य 22 दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यं च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था वित्तीय निरीक्षणं संसदीय विशेषाधिकाराः विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविधपक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88-80-3000 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला 20-20 विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत काव्य कलश। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं श्रीमती सोनरूपा विशाल से उनकी काव्य रचनाएं।
3: तो एक दिन चांद को देखते हुए मेरे मन में एक विचार आया कि अगर चांद नभ में नहीं होता तो क्या क्या ना होता। उस अनुभव को मैंने एक गीत में लिखा है, वो मैं आपको सुनाती हूँ।

एक और गीत आप सबको मैं सुनाना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो हमारी जिंदगी होता है, जब वही हमारी जिंदगी में नहीं होता, तो कुछ हम कल्पनाएं करते हैं और उसकी उपस्थिति को कुछ स्मृतियों से भरने का प्रयास करते हैं। एक गीत इसी भावनाओं को व्यक्त करता हुआ।

एक गजल मुझे याद आती है अपनी, जो इसी भावनाओं के ओतप्रोत है। बहुत सरल शब्दों में इस गजल को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ।

सोनू रूपा विशाल से अभी आप सुन रहे थे काव्य रचनाएं अमृत काव्य कलश। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
3: सामने हैं इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
4: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
3: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध।
2: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
3: जागिए और जगाइए,
4: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
2: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
3: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
5: से नो टू प्लास्टिक।

0: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
1: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
0: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
1: आपातकाल में साथ निभाए,
0: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
1: 112।
0: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
1: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
0: यदि चाहिए पुलिस सहायता
1: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
0: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
1: मिटाकर हर सस्पेंस को
0: डायल 112।
1: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
0: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
1: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
0: या फिर भेजें ईमेल always use 112 India mobile app।
1: जब घेरे कोई भी आपदा,
0: तुरंत मिले सहायता
1: डायल 112।
0: चिंता से पाएं छुटकारा,
1: पुष्पा झुकेगी नहीं,
2: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।

श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर, आपका अपना आकाशवाणी रामपुर। जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी।

0: भी आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशान में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की जबान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें।

0: आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए एसआईटी दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीवीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण के लिए अनुदान राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
4: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांग

0: प्रतिवेदन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के उद्यान और कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि कल जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में कल एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस बीच अयोध्या विकास प्राधिकरण ने श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लोकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लोकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्र सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026-29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना ने 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लिया है।
3: इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल आने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल तिरुपति में विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जीराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा। तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में अधिनियम के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीबों को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का मजबूत माध्यम बनेगी।
5: लेकिन किसी भारत जीरामजी में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाए और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश बनाए। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 कल पहले दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा के दूसरे दिन आज प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और कल की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश की संभावना जताई है। इस बीच राज्य में मानसून के आने के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, हालांकि कई जिलों में लोगों को अभी भी उमस का सामना करना पड़ रहा है।
6: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
7: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। दो तीन दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना।
6: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए एसआईटी दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने तीन दिनों तक जताई बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 7:31 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे।

सुबह सवेरे कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, कीजिए स्वीकार नमस्कार रेणु तिवारी की ओर से। ये सुबह की हवा है, सभी रोगों की अच्छी दवा है। भोर होते ही घर से निकल जाइए, दूर तक जाकर थोड़ा टहलाइए, ताजगी अपनी सांसों में भर लाइए। उगते सूरज की ये रंगोली को देखिए, उन परिंदों की उस टोली को देखिए, फूल पत्तों की ये हमजोली देखिए। ये जरा बस देर, बस जरा देर का किस्सा है, किसे पता है ये वक्त के फेर का। मुफ्त में मजा लीजिए इस खेल का, जिंदगी में है सेहत नियामत बड़ी, इसके आगे न दौलत न दुनिया बड़ी।

तो फिर देर किस बात की। सुबह की इस हवा में, इस सुहाने मौसम में हम और आप एक सुहानी सैर पर चलते हैं, चटपटी बातों और गुनगुनाते गीतों के साथ।

जिनका दिन आशा के अनुरूप नहीं गुजरता वो एक बार फिर नए दिन के साथ नई उम्मीद लेकर उठते हैं। नाकामी से कामयाबी तक का सफर उम्मीद पर ही टिका होता है। रोज रोज किए गए प्रयास सफलता का दरवाजा आखिर खोल ही देते हैं। ऐसे ही उत्साही लोग इतिहास रचते हैं और बार बार याद किए जाते हैं। उनके जीवन से जुड़े दिन इतिहास बन जाते हैं। आज 3 जुलाई है और आज का दिन क्यों विशेष है ये हम आपको बताते हैं। 3 जुलाई 1661 को पुर्तगाल ने बॉम्बे को ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को उपहार में दिया। 1720 की 3 जुलाई को स्वीडन और डेनमार्क ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 3 जुलाई 1760 को मराठा सेना ने दिल्ली पर कब्जा किया। 1778 को इसी दिन पर्शिया ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 3 जुलाई 1884 को स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने अपना पहला स्टॉक इंडेक्स जारी किया। 3 जुलाई 1908 को ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया। 1951 की 3 जुलाई को न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज रिचर्ड हेडली का जन्म हुआ। 3 जुलाई सन 1971 को विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे का जन्म हुआ। 3 जुलाई 1996 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार ने इस दुनिया को अलविदा कहा। ये तो हुई बात आज के इतिहास की और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। IGRS रामपुर लगातार छठी बार यूपी में नंबर 1। IGRS सुनवाई पोर्टल के माध्यम से आम जन की शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण में रामपुर जिले ने पूरे प्रदेश में एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। शासन द्वारा जारी जून 2026 की मासिक रैंकिंग में रामपुर ने 130 में से 129 का आंकड़ा छूकर छठी बार प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल IGRS पोर्टल पर यह शानदार उपलब्धि केवल कागजी निस्तारण तक सीमित नहीं है बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा उस संतुष्टि पर आधारित है जिसे सीधे शासन स्तर से क्रॉस चेक किया जाता है। UPTET में पहले दिन 5138 अभ्यर्थी हुए शामिल। जिले भर में गुरुवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का आयोजन बेहद कड़े सुरक्षा प्रबंधों और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। भविष्य में शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए कुल 5138 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा को नकल विहीन और सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। हज के लिए रामपुर में 3 निशुल्क हज ई सुविधा केंद्र खुले। प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के अनुसार हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इच्छुक आवेदक 20 जुलाई 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हज यात्रियों की सुविधा के लिए जनपद रामपुर में 3 निशुल्क हज ई सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां आवेदनकर्ताओं को ऑनलाइन आवेदन कराने के साथ साथ आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। बिलासपुर तहसील में 12 स्थानों पर लगे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। भूजल को सुधारने के लिए नगर पालिका ने एक बड़ी और सराहनीय पहल की है। पालिका प्रशासन ने नगर के प्रमुख 12 स्थानों पर वर्षा जल संचयन सिस्टम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कराए हैं। पालिका अध्यक्ष ने नागरिकों व्यापारियों और उद्यमियों से भी जल संरक्षण की इस मुहिम से जुड़ने की भावुक अपील की है। पालिका अध्यक्ष ने जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि जल ही जीवन का मुख्य आधार है। 7वें साल में भी नहीं बढ़ेंगी बिजली की

दरें। प्रदेश में इस वर्ष भी बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। लगातार सातवें साल भी बिजली की दरें नहीं बढ़ाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। यहां वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी पहले से निर्धारित दरों पर ही बिजली बिल लिया जाएगा। इस संबंध में विद्युत नियामक आयोग ने बृहस्पतिवार को घोषणा कर दी। बारिश से बढ़ी उमस, पारा पहुंचा 38 डिग्री सेल्सियस। मौसम के बदलते मिजाज ने आम जनजीवन को मिलाजुला एहसास कराया। पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी के बीच पिछले दो दिनों में मौसम ने करवट ली। रिमझिम बारिश और फिर धूप छांव के खेल ने लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत तो दी है, लेकिन उसके बाद बड़ी उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज भी बारिश के आसार हैं। रामपुर में ही तैयार होगा मछलियों का आहार, दूसरे जिलों को भी होगा लाभ। प्रधानमंत्री मत्स्य फील्ड योजना के तहत मत्स्य विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा था। केंद्र सरकार ने रामपुर में मत्स्य फील्ड मिल स्थापना के लिए 1 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। अब रामपुर में ही मछलियों के लिए आहार तैयार किया जा सकेगा। इससे दूसरे राज्यों के और दूसरे जिलों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। एक जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत गुरुवार को सीएमओ कार्यालय से की गई। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली विभिन्न मार्गों से जुड़ी गुजरी और इस रैली में स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों को शपथ दिलाई गई कि अभियान के अंतर्गत सभी व्यक्तिगत रूप से साफ सफाई रखने के अलावा अपने घर, मोहल्ले और शहर को भी साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित करेंगे। लखनऊ में महकेगी मंडल के आमों की मिठास। आम का मौसम अपने पूरे शबाब पर है और मुरादाबाद मंडल के बागवान अपनी मेहनत का स्वाद राजधानी लखनऊ में दिखाने पहुंच गए हैं। 5 जुलाई से गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आम महोत्सव 2026 में मंडल के 5 जिलों के 40 किसान अपनी बागवानी का प्रदर्शन करेंगे। इसमें आम की लोकप्रिय किस्मों के साथ साथ दुर्लभ और नई प्रजातियों के आम भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। ये हुई आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां और अब समय है एक अल्प विराम का। ब्रेक के बाद कुछ नई बातें और कुछ गीत कर रहे हैं आपका इंतजार। बने रहिए हमारे साथ।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। श्रोताओं, बारिश के मौसम ने दस्तक दे दी है और अभी तक ये माना जाता था कि जब बारिश का मौसम आता है तो हमारे आसपास सब कुछ साफ हो जाता है, सुंदर हो जाता है। होना तो ऐसा ही चाहिए, पर होता कुछ यूं है कि बारिश होते ही सड़कों पर गंदगी का अंबार लग जाता है और जल भराव की स्थिति हो जाती है। इस समस्या का कारण है हम और हमारे इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक बैग। ये प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा हैं। प्लास्टिक बैग्स डिकम्पोज नहीं होते, नतीजा ये होता है कि ये ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को कम करते हैं। यदि प्लास्टिक को जलाकर नष्ट करना चाहें तो जहरीला धुआं हवा को प्रदूषित करता है और पानी

0: को रोककर जल भराव का कारण भी बनता है। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक बैग के नुकसानों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 3 जुलाई को प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। प्लास्टिक बैग्स के उपयोग से बचने के लिए हमें आदत बनानी होगी कि हम अपने साथ कपड़े या जूट का थैला रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हम बाज़ार से सामान लाने के लिए करते हैं। सरकार द्वारा प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, पर हमें प्लास्टिक बैग का प्रयोग बंद करना अपनी आदत में शामिल करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कचरा निस्तारण पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अधिकतर यह होता है कि हम अपने घर का कूड़ा निकालकर सड़कों पर फेंक देते हैं या फिर पॉलीथीन या पॉली बैग में डालकर अक्सर नालियों में डालते हैं। अगर हम सड़क पर भी ये कचरा डाल देते हैं तो ये कचरा नालियों में चला जाता है, और जब पानी ज़्यादा मात्रा में आता है या बारिश की स्थिति होती है तो इन प्लास्टिक बैग के कारण नालियाँ चोक हो जाती हैं और जल भराव की और गंदगी की स्थिति बन जाती है। कई बार जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है, सड़क पर गंदगी और फिसलन हो जाती है, और बारिश का ये मौसम इस स्थिति को और भी खराब कर देता है, जहां पर जगह जगह लोग फिसलते हैं और फिर खिसियाते हुए कुछ ये कहते नजर आते हैं।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। हर एक समाज के कुछ नियम, कुछ मापदंड होते हैं जिसको समाज में मान्यता मिलती है और इन आधारों पर ही समाज चलता है। शासन का कानून लिखित और बाध्यकारी होता है, पर समाज का कानून या नियम अलिखित और परंपरा पर आधारित होते हैं जिसे नैतिक आधार प्रदान किया जाता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में आज्ञा पालन एक विशेष गुण माना जाता है जिसमें बड़े एवं प्रभावशाली लोगों के आदेश का पालन करना जरूरी होता है और आदेश की अवहेलना को गलत माना जाता है। बिना तर्क के आज्ञा मानने की उम्मीद की जाती है और अगर कोई व्यक्ति आज्ञा पालन से इनकार कर दे तो सम्मान पर इसे आघात समझा जाता है। आज राष्ट्रीय अवज्ञा दिवस है। ये दिवस लोगों को बताता है कि आदेश की अवहेलना या अवज्ञा हमेशा गलत नहीं होती। इस समस्या का सामना आजकल के समाज की एक बड़ी समस्या है। उनका मानना है कि वर्तमान पीढ़ी आज्ञा पालन नहीं करना चाहती या बड़ों का सम्मान नहीं करती। आज की पीढ़ी के तर्क में विश्वास करती है और वो कोई भी आज्ञा बिना तर्क के, बिना कारण के नहीं मानना चाहती। सवाल पूछना गलत नहीं है। अगर किसी आज्ञा या आदेश के पीछे का तर्क समझा दिया जाए तो शायद अवज्ञा जैसी स्थिति का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। तर्कहीन आज्ञाओं का पालन मानसिक गुलामी का प्रतीक है और स्वतंत्र विचार प्रवाह में घातक है। परंतु तर्क और असम्मान या दुर्व्यवहार के बीच का अंतर समझना भी जरूरी है। तर्क करें पर मर्यादा और सम्मान की सीमा रेखा को पार न किया जाए। सम्मान के साथ तर्क और तार्किक आज्ञाओं का पालन कर ये जो एक विचार है, समन्वय है, ये बहुत जरूरी है। तानाशाह और मर्जी का मालिक होना दोनों ही स्थितियां गलत हैं। तर्क और संयम के साथ अवज्ञा को सकारात्मक मोड़ दिया जा सकता है, नहीं तो सब अपनी अपनी मर्जी से चलेंगे, हर तरफ अराजकता होगी और हर कोई अपनी मर्जी अपने अंदाज से चलना चाहेगा।
1: गोरे को मैं कहूँ काला, जीजा को मैं बोलू साला, नदी को मैं बोलू नाला, चाबी बिना खोलू ताला। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो बोलना नहीं, मुझे समझाना मत झूठ सही, चाहे पी जाऊं मैं चाय कॉफी डाल के दही।

श्रोताओं, सुरक्षित और अनुशासित जीवन हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने की रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार वर्ष से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए तकाईची ने पाकिस्तान से फैलाई जाने वाली सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों लीडरों ने पिछले साल 29 जुलाई की अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल की निगरानी टीम की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया है, जिसमें रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप का तस्करा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दोनों वज़राए आज़म ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस काबिल मजम्मत हरकत के लिए जिम्मेदार इसकी साजिश रचने वालों और सरमाया फराहम करने वालों को बिला ताखिर कानून की गिरफ्त में लिया जाए। उन्होंने अलकायदा, दाइश, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और उनकी जेली तंजीमों समेत उन सभी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया जो अक्वामे मुत्तहदा की फहरिस्त में शामिल हैं। दोनों वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के खात्मे, दहशतगर्दी के लिए सरमाया

0: सफर में शामिल होंगे। अकीदतमंद तकरीबन 3888 मीटर की बुलंदी पर वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं और फितरी तौर पर बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन करते हैं। ये यात्रा रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ 28 अगस्त को खत्म हो जाएगी। हमारे नवनिगार ने बताया है कि आज सुबह खवातीन और बच्चों समेत 4800 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल यात्रियों का पहला जत्था नुनवन और बालतल के बुनियादी पड़ाव से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। मजीद तफसील हमारे नवनिगार से।
1: तो बाबा अमरनाथ की जय, बोलो शिव शंकर की जय।
2: बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों के बीच आज सुबह हजारों की तादाद में यात्री अमरनाथ जी की मुकद्दस गार की तरफ रवाना हो गए। 57 रोजा इस यात्रा के दौरान लाखों यात्री नुनवन पहलगाम और बालतल के रास्तों से सफर करके बाबा बर्फानी के यहाँ अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर हुक्काम ने तिब्बी कैंपों, आरामगाहों, लंगर खानों, पीने के पानी की सहूलियात जैसे जामिया इंतजाम किए हैं। दरियासना यात्रियों का दूसरा काफिला आज सुबह जम्मू से रवाना हो चुका है और तवक्का है कि ये काफिला आज से पहर वादी पहुंच जाएगा। आकाशवाणी खबरों के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की जानिब से ड्रोन और मिसाइल के बड़े हमलों में 27 अफराद हलाक और दीगर 90 जख्मी हो गए हैं। कीव में खासतौर से रिहायशी इमारतों और शहरी बुनियादी ढांचे को 30 मकामात पर नुकसान की खबर है। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन की जानिब से उसके शहरी बुनियादी ढांचे पर तवील सिलसिले के हमलों के जवाब में बुध की रात ये हमले किए गए। थाईलैंड में शुमाल मशरकी मुगदहन सूबे में 11 साल के एक लड़के ने एक पिकअप ट्रक यात्रा के लिए जाने वाले राहिबों के एक ग्रुप से टकरा दिया। इस वाकये में 9 राहिबों की मौत हो गई। 13 दीगर जख्मी राहिबों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और इनमें से 3 की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मस्कूरा लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। जुनूब मगरबी मानसून दिल्ली में मजीद आगे बढ़ गया है। ये गुजरात के कुछ और हिस्सों, उत्तर प्रदेश के बाकिया हिस्सों, मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों की जानिब भी बढ़ रहा है। मौसमियात के महकमे ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश और कहीं बहुत ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली में मतला अबरारूद रहने के इम्कान के साथ साथ दिन में हल्की बारिश हो सकती है। खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड जनूबी अफ्रीका को 40 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। यह मैच लंदन के किंगस्टन ओवल में खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से एनसी ब्रंट ने सबसे ज्यादा स्कोर किया। उन्होंने 47 गेंदों पर 75 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 129 रन ही बना सकी। एनसी ब्रंट को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आलमी कप का फाइनल मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इतवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। फीफा आलमी कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। यह मैच कैलिफोर्निया के इंगलवुड में लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेला गया। स्पेन की तरफ से 36वें मिनट में माइकल ओयार्ज़बल ने पहला गोल किया, जबकि मैच के 66वें मिनट में पेद्रो ने दूसरा और 79वें मिनट में माइकल ओयार्ज़बल ने एक और गोल करके स्पेन की जीत में अहम रोल अदा किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। यह मैच आइंदा माह की 15 से 27 तारीख तक खेले जाएंगे। इफ्तिताही टेस्ट मैच आइंदा माह की 15 तारीख से गाल बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच आइंदा माह की 23 तारीख से कोलंबो के सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। यह सीरीज आईसीसी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का एक हिस्सा है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
3: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भारत जापान मुश्तरका इक्तसादी फोरम से खिताब करने को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि भारत और जापान ने इक्तसादी तहफ़ मसनू जहानत AI دفاع اور صحت سے متعلق

और अब आइए सुनते हैं ये गीत विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है बॉर्डर 2।

ये गीत अभी आपने सुना रोचक कोहली और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम था धड़क 2, 102.9 मॉर्निंग हिट्स। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। आइए अब सुनते हैं ये गीत विशाल मिश्रा और नीति मोहन की आवाजों में। फिल्म का नाम है गदर 2।

सन ऑफ सरदार टू। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना विकास मान की आवाज में। आइए अब सुनते हैं ये गीत आदित्य रेखारी और किंजल चटर्जी की आवाजों में। फिल्म का नाम है परम सुंदरी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:15 होने वाले हैं। जिले की हलचल कुछ ही देर में लखनऊ केंद्र से रिले होगी।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और संत कबीर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई को सहारनपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 613 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
2: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अधिक बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
1: पिछले 9 वर्षों में प्रदेश के बेसिक विद्यालयों का व्यापक कायाकल्प हुआ है और सरकार प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिक से अधिक बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने का आह्वान किया। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा कि पहले दंगे और पलायन जैसी घटनाएं आम थी, जबकि अब प्रदेश विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच समिति गठित की। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ट्रेडिंग के नाम पर एक कारोबारी से 1.31 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने इसे जिले में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया। वहीं फर्जी हाईस्कूल मार्कशीट के आधार पर डाक विभाग में सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला भी सामने आया। विभागीय जांच में दस्तावेज फर्जी मिलने पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने सड़क सुरक्षा, साइबर सेवाओं और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने पुलिस लाइन में पोलियो बूथ पर एक छोटे बच्चे को ड्रॉप्स पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 5,09,306 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सख्ती दिखाई है। कार्य में लापरवाही मिलने पर नकुर थाने की अम्बेटा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर किया गया। इसके अलावा साइबर अपराध, वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी और नियमित चेकिंग अभियान को तेज किया गया। पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाए। मंडलायुक्त डॉक्टर रूपेश कुमार ने मंडल स्तरीय बैठकों में विकास कार्यों, राजस्व मामलों, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और मानसून पूर्व की तैयारियों की समीक्षा की।
3: अभी मंडली समीक्षा में हमने विकास कार्यों की जो

0: कुछ कार्य हैं पर्यटन विभाग के, वो इनकम्प्लीट हैं, और यूपी CNDS इसमें कार्यदायी संस्था है, तो उनको हमने पुलअप किया कि इसको समय पे पूर्ण किया जाए। और इसके अलावा अभी आने वाला जो मानसून सीजन है, इसमें बाढ़ की संभावना को देखते हुए बाढ़ की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं सभी संबंधित अधिकारियों को।
1: उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के दौरान जलभराव, बाढ़ जैसी संभावित स्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी सुनिश्चित की जाए और जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। बाइट मंडलायुक्त रुपेश कुमार। कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में दानवीर भामाशाह की जयंती व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिले के सर्वाधिक कर देने वाले 10 व्यापारियों और उद्यमियों को DM अरविंद चौहान व नगर विधायक राजीव उम्बर ने शील्ड, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। जून में लगभग पूरे महीना भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। कई बार अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। हालांकि इन दिनों मौसम विभाग ने सहारनपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं, गरज चमक और मानसून की आगमन की संभावना जताई। सामाजिक और खेल गतिविधियों में भी जिला सक्रिय रहा। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता, अंडर 12 समर क्रिकेट लीग का फाइनल, जिला साइकिलिंग संघ की कार्यकारिणी का विस्तार तथा CIS द्वारा अध्यक्ष रविन्द्र मिगलानी की अध्यक्ष में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर आयोजित सौहार्द कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण रहे। हरविंदर सिंह लार्ड की अध्यक्षता में यूपी सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें गुरप्रीत सिंह बग्गा को नवाब कपूर सिंह सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें सिख समाज की एकजुटता, धार्मिक मर्यादा और युवाओं के लिए मुफ्त UPSC कोचिंग की घोषणा की गयी। सहारनपुर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ करते हुए शातिर आरोपी गणेशपुर निवासी रोहित और बाबा को गिरफ्तार किया। थाना फतेहपुर पुलिस ने एक नदी के डूब क्षेत्र में कमरे में छापा मारकर मौके से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए।
2: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं संत कबीर नगर जिले की हलचल। आलेख है अजय श्रीवास्तव का।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर के धनघटा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संत कबीर नगर को 475 करोड़ रुपए की 139 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और बाबा तामेश्वरनाथ धाम कॉरिडोर, मघर के सुंदरीकरण और बखीरा झील को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र तथा युवा उद्यमियों को आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर भी राजनीतिक टिप्पणी की। संत कबीर नगर के कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, विधायक अंकुर राज तिवारी, विधायक गणेश चंद्र चौहान, जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और लाभार्थियों से सीधे फीडबैक लेने पर विशेष जोर दिया। जनप्रतिनिधियों ने मेहंदावल धनघटा मार्ग को 4 लेन बनाने, जर्जर बिजली तारों को बदलने, नगरीय आवासों के निष्पक्ष आवंटन तथा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मांग उठाई। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि कार्यों में लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने सभी निर्देशों का 100% पालन कराने का भरोसा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संत कबीर नगर में कांशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष बेचन राम, जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, मंडलायुक्त अखिलेश सिंह और जिलाधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने योग को स्वस्थ जीवन की आधारशिला बताते हुए इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। योग प्रशिक्षक विवेक मिश्रा के निर्देशन में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं और बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। संत कबीर नगर जिला कारागार का जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह, जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरकों, अस्पताल अस्पताल, भोजनालय और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन को निर्देश दिया गया कि कारागार में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश न हो, साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर कारागार परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। संत कबीर नगर की महुली थाना पुलिस ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने अशोक चौहान, शिव कुमार उर्फ नकुल चौहान और राजन कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल अनिल कुमार और पुलिस टीम पर हमला किया था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की गई। संत कबीर नगर के नाथनगर विकास क्षेत्र में पुत्सर में बिना मान्यता के संचालित स्कूल पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विद्यालय को सील कर दिया। ये कार्रवाई IGRS पर प्राप्त शिकायत और पूर्व में जारी नोटिस के बाद की गई। अधिकारियों ने बताया कि विद्यालय बिना वैध मान्यता के संचालित हो रहा था, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वहां अध्ययनरत बच्चों का प्रवेश निकटवर्ती सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जाएगा। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद से पल्स पोलियो जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामानुज कनौजिया ने बताया कि जिले में 311,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 858 बूथ स्थापित किए गए हैं। साथ ही घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाने के लिए विशेष टीमें भी गठित की गई हैं, जो अभियान के दौरान छूटे हुए बच्चों को कवर करेंगी।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: जिले की हलचल समाप्त हुई।
5: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर 9:25 हुए हैं। प्रेरक प्रसंग इस क्रम में आज आइए सुनते हैं रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़ा ये प्रेरक प्रसंग।

0: लव कुमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जा रहा है,
1: जी
0: तो इसके जो ये

0: को 75 साल गुजर चुके,
1: बिल्कुल
0: तो बहुत अच्छी योजना है हमारे सरकारों की।
1: जी
0: हम ये जानना चाहते हैं कि आज के तनाजुर में हम देखें तो
1: जी
0: वन महोत्सव मनाने की अहमियत आज क्यों ज्यादा है?
1: वन महोत्सव मनाने की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है। आप देख रही हैं कि कितनी गर्मी हो रही है और
0: जी
1: कितने, आप पहले देखते थे कि एनवायरनमेंट इतना क्लीन होता था, जैसे आप देख रहे हैं पेड़ों के नीचे बुजुर्ग बैठ जाते थे गांव में और ठंडी ठंडी हवा का लुफ्त उठाते थे।
0: जी
1: लेकिन आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट के बिल्डिंग बना रहे हैं और बहुत सी जगह पेड़ नहीं बचे हैं।
0: जी
1: इसलिए वन विभाग का मेन काम लोगों को बताना, जन जागरूकता फैलाना कि आप अधिक से अधिक

0: नर्सरी वहां पर है, और
1: अच्छा
0: एक से और रामपुर में शहबाद को रोड जो जाता है, एक हमारी वहां पर है नर्सरी
1: अच्छा अच्छा
0: जी। तो आप रामपुर रेंज में चाकू चौराहे के पास किसी से भी पूछेंगे सरकारी नर्सरी के बारे में, तो
1: जी
0: कोई भी बता देगा।
1: अच्छा अच्छा लव कुमार जी, इसके अलावा इस वन महोत्सव के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?
0: आज से जो चालू है हमारे प्रोग्राम वृक्षारोपण, जो सबसे मेन थीम पे चलता है
1: जी
0: कि हमें वृक्ष लगाने लगाना है।
1: बिल्कुल
0: दूसरा हमारा कार्यक्रम चालू हुआ है जन जागरूकता फैलाना, और ये संदेश देना कि सभी हमारे जो मनुष्य हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे बुजुर्ग, सबको यही थीम बताना कि हमें एक पौधा माँ के नाम लगाना, जिसकी थीम चल
1: बिल्कुल
0: रही एक पेड़ माँ के
1: माँ के
0: नाम।
1: नाम जी
0: हाँ, तो हम जगह जगह जन जागरूकता फैला रहे हैं, कॉलेज हो, स्कूल हो, और गंगा ग्राम्स हैं हमारी, और जो हमारे गांव के एरिया, सब में हम जन जागरूकता फैला रहे हैं। तीसरी चीज, हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जन जागरूकता फैला रहे हैं
1: जी
0: पर्यावरण संरक्षण के लिए। और काफी स्कूलों में हम पेंटिंग कंपटीशन, निबंध कंपटीशन, वाद विवाद कंपटीशन भी करा रहे हैं, जिसमें
1: अच्छा
0: जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आएंगे उन्हें हम प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये
1: अच्छा
0: हमारी एक रूपरेखा बनी है 1 से 7 के लिए।
1: इसमें एक कार्यक्रम कुछ आम के पेड़ों के लिए भी चल रहा है?
0: जी मैडम, जो आम के वृक्ष हैं वो हमारी तरफ से वितरण करे जा रहे हैं, वो भी
1: अच्छा
0: प्रोग्राम हमारी तरफ से चल रहे हैं।
1: जी, ये बताइए कि वन जो आजकल तेजी से कट रहे हैं, उससे जहाँ इंसानों को नुकसान है, उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण को या हमारे जंगली जानवरों को क्या हानि है?
0: जिस प्रकार से, जैसा आपका क्वेश्चन है कि पेड़ कट रहे हैं, तो पेड़ कटने के साथ साथ मनुष्य को हानि है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है,
1: जी
0: जो प्योरली हमारी ऑक्सीजन होती है वो हमें नहीं मिल पा रही है।
1: जी
0: और जीव जंतुओं को जो परेशानी है, जो हमारे जंगली जीव है, उन्हें ये परेशानी, जब पेड़ कट जाएंगे जंगल से तो वो रास्ता कहाँ ढूंढेंगे, वो
1: जी
0: हमारे शहरों में एंटर करेंगे। जैसे
1: बिल्कुल
0: बहुत से आप देखते हैं कि काफी जीव जंतु क्या होते हैं, हमारे शहर में आते हैं, तो
1: हाँ
0: उस वो चीज आपके शहर में ना हो, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो भी खाली जगह है आपकी, चाहे वो सरकारी जगह है, चाहे वो आपकी प्राइवेट जगह, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं और उसे सफल बनाएं उसे।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया लव कुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई वन महोत्सव के ताल्लुक से, और हम भी ये आपके माध्यम से और अपने इस आकाशवाणी के माध्यम से अपने तमाम सामेईन से गुजारिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान को पूरी तरह से कामयाब बनाएं।
0: जी,
1: बहुत बहुत
0: और
1: शुक्रिया
0: मैं जी
1: जी
0: एक मैं लास्ट में कहना चाहूंगा आपसे, एक पेड़ केवल पौधा नहीं बल्कि
1: जी
0: आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन का उपहार है।
1: बेशक
0: आइए वन महोत्सव के अवसर पे प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए, और उसकी देखभाल करने के लिए आज से ही हम शपथ भी लें।
1: बिल्कुल
0: तो मेरी मेरी पूरी जनता से और जनवासियों से यही गुजारिश है, सभी लोग एक एक पौधा जरूर लगाएं इस वन महोत्सव में। धन्यवाद।
1: बिल्कुल धन्यवाद। देखिए आयशा, लव कुमार जी ने भी यही सारी चीज़ें बताई कि क्यों ज़रूरी है, और उन्होंने उन प्रोग्रामों के बारे में भी बताया जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव के ज़ेर एहतमाम मनाए जा रहे हैं, और इसमें उन्होंने कितना अच्छा एक प्रोग्राम बताया, आम बहार आपके द्वार, अच्छा
0: यानी हर किसी को वो आम के पेड़ भेंट कर रहे हैं कि आप जहां भी जगह हो वहां आम के पेड़ लगाइए।
1: बेशक, तो ये एक मुहिम भी है और हम लोगों के लिए फायदा भी है।
0: जी हाँ, और महकमे जंगलात की तरफ से उनकी नर्सरियों में मुफ्त पौधे बांटे जा रहे हैं कि आप आइए पौधे लीजिए और लगाइए।
1: लगाइए, बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ताकि हमारा जो मुल्क है वो हरा भरा रहे।
0: बिल्कुल
1: तो रबाबा जी, ये तो हमारी बात हुई आज की इस मुहिम की, जो हमारी मुहिम चल रही है यानी वन महोत्सव की, और इसके साथ साथ अब हम आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के
0: जी
1: जो अगला हिस्सा है हमारा, यानी जुमे के दिन का।
0: बिल्कुल।
1: तो जुमे के दिन आज आप सामीन को क्या सुनवाएंगी?
0: देखिए, जुमे का दिन हमारे लिए एक ऐसा दिन है जिस दिन हम जितना भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होता
1: बेशक
0: है। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे हर बात में, हर चीज़ में उस दिन हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखें, उनके ऊपर दुरूद सलाम भेजें। उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका

0: का बताया, अगर हम उस पर चलकर जिंदगी गुजारें तो बहुत सी परेशानियों मुसीबतों से बच सकते हैं।
1: और उनकी सुन्नतों पे अमल करने से हमारी बहुत सी मुसीबतों का हल निकलता है।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: शजरकारी की बात कर रहे थे, अभी
1: जी
0: आपने बताया भी था कि देखिए शजरकारी का भी जो एक अहम पैगाम है
1: जी
0: वो उन्होंने हम सबको दिया कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा हरियाली का एहतमाम करना चाहिए, अपने आसपास की जगहों पर जहां तक हो सके वहां
1: जी
0: पेड़ लगाने चाहिए।
1: और अपने साथ अपने जो और लोग हैं, अपने आसपास का माहौल है, पेड़ पौधों के जरिए उनका ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो परिंदे हों,
0: जी
1: जानवर
0: हाँ
1: हों या फिर कोई भी चीज़ है, तो उसका वैसे ही ख्याल रखना चाहिए
0: जी, तो
1: जैसे
0: फिर
1: कि हम अपना
0: आयशा,
1: ख्याल रखते हैं।
0: हाँ तो आइए आयशा फिर अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको और अपने सामीन को हम सुनवाते हैं एक नातिया नशिस्त। तो हमारी आज के इस नातिया नशिस्त में जिन शुआरा इकराम को हमने मदऊ किया है और वो यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनका तारुफ हम करा दें।
1: जी बिल्कुल।
0: इस नातिया नशिस्त में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा नियाजी साहब, जनाब अनवर आलम कैफी साहब और जनाब कारी यासीन साहब। तो आज की ये नशिस्त इन चार लाइनों के साथ कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूंचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गई है सब गम भुला दिए हैं। तो
1: बेशक,
0: आइए उन्हीं को याद
1: सुभान
0: करते
1: अल्लाह।
0: हुए हम आपको सुनवाते हैं ये नातिया नशिस्त।
2: हज़रात गिरामी, ये नातिया शेरी नशिस्त आकाशवाणी रामपुर से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। इस नशिस्त में जो हज़रात शिरकत फरमा रहे हैं उनके इस्माए गिरामी इस तरह हैं। अनवर कैफी साहब मुरादाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, क़ारी यासीन अहमद नातिक नौमानी साहब रामपुर से तशरीफ़ लाए हैं और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाहिद नियाज़ी खानकाह नियाज़िया बरेली से हाज़िर हुआ हूँ। इस सिलसिले में कि नात शरीफ के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वरफ़ाना लका ज़िक्रक है, और उसी हवाले से जो आदमी जब शायर जब जज्बात में आता है तो नात लिखता है, और उसी नात के इजहार के लिए हम लोग यहाँ हाज़िर हुए हैं। ये बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं इस सिलसिले में चंद शेर नात के पेश करने का जुर्रत कर रहा हूँ। हजरात
3: जी
2: गिरामी
3: इरशाद
2: मुलाहिदा
3: इरशाद
2: मुलाहिदा
3: सुनाइए
2: फरमाइए
3: जी,
2: कि
3: इरशाद अली।
2: जिए जिंदगी हम बराए नबी,
3: जिए
2: जिए जिंदगी
3: जिंदगी
2: हम बराए नबी,
3: जिंदगी,
2: ओ किसी को न देखें सिवाए नबी।
3: वाह वाह
2: जिए
3: वाह वाह
2: जिंदगी
3: सर,
2: हम
3: वाह
2: बराए
3: वाह
2: नबी,
3: वाह,
2: किसी को न देखें सिवाए नबी, दो
3: सुभान अल्लाह
2: आलम में भी न समाए नबी, दो
3: सुभान
2: आलम में
3: अल्लाह
2: भी न समाए नबी, गरीबों की कुटिया में आए नबी,
3: सुभान अल्लाह
2: गरीबों
3: सुभान
2: की
3: अल्लाह
2: कुटिया में आए
3: सुभान अल्लाह
2: नबी। अज़ाद मुरादे
3: सल्लल्लाहु अलैहि
2: फरमाइए शेर के, नबी से मोहब्बत बराए खुदा,
3: सुभान
2: नबी से
3: अल्लाह
2: मोहब्बत बराए
3: सल्लल्लाहु अलैहि
2: खुदा
3: वसल्लम
2: और खुदा से मोहब्बत बराए नबी,
3: वाह सुभान
2: नबी से
3: अल्लाह
2: मोहब्बत बराए
3: सुभान
2: खुदा, खुदा से मोहब्बत बराए नबी, मोहब्बत का काबा बनाऊंगा मैं,
3: मोहब्बत
2: मोहब्बत
3: का
2: का
3: काबा
2: काबा
3: बनाऊंगा
2: बनाऊंगा
3: मैं,
2: मैं, अगर मिल गए नक्शे पाए नबी,
3: सुभान
2: अगर
3: अल्लाह
2: मिल
3: सुभान
2: गए नक्शे
3: अल्लाह
2: पाए नबी,
3: सुभान अल्लाह
2: मोहब्बत का
3: सुभान अल्लाह
2: काबा बनाऊंगा मैं, अगर मिल गए नक्शे पाए नबी, और मदीने की जानिब कोई जब चला, मदीने
3: मदीने
2: की
3: की
2: जानिब
3: जानिब
2: कोई
3: कभी
2: जब
3: जब
2: चला,
3: चला,
2: तड़प कर कहा दिल ने हाय नबी, मदीने
3: सुभान
2: की
3: अल्लाह
2: जानिब कोई
3: सुभान
2: जब
3: अल्लाह
2: चला, तड़प कर कहा दिल ने हाय नबी,
3: सुभान अल्लाह।
2: गुनाहगार जाहिद परेशान ना हो। आजाद ग्रामी मकतम राजा
3: जी
2: फरमाइए,
3: जी
2: जाहिद
3: जी
2: मेरा
3: जी
2: मांगता है
3: गुनाहगार
2: कि
3: जाहिद
2: गुनाहगार जाहिद परेशान ना हो, सरे हश्र होगी रिदाए नबी,
3: सुभान अल्लाह
2: गुनाहगार
3: सुभान
2: जाहिद
3: अल्लाह
2: परेशान ना हो,
3: वाह
2: सरे
3: जाहिद
2: हश्र
3: जाहिद वाह
2: होगी रिदाए नबी,
3: सुभान
2: जिए
3: अल्लाह सुभान
2: जिंदगी
3: अल्लाह
2: हम बराए नबी, किसी को न देखें सिवाए नबी।
3: सुभान
2: आजाद
3: अल्लाह
2: ग्रामी
3: सुभान अल्लाह
2: एक नात शरीफ और मुलाहिदा फरमा लिए कि
3: जी इशारे
2: रहमत के
3: आली
2: तलबगार मोहम्मद के शहर में, रहमत के तलबगार
3: मोहम्मद
2: मोहम्मद
3: के
2: के
3: शहर
2: शहर
3: में।
2: में, और जाते हैं गुनाहगार मोहम्मद के शहर में,
3: वाह भाई
2: जाते हैं
3: वाह भाई
2: गुनाहगार
3: वाह
2: मोहम्मद के शहर में, हसनैन के सदक़े में माफ़ी भी मिलेगी,
3: हसनैन के
2: हसनैन के
3: सदक़े में
2: सदक़े में
3: माफ़ी भी
2: माफ़ी भी
3: मिलेगी,
2: मिलेगी, मिल जाएगा गफ्फार मोहम्मद के शहर में, मिल
3: सुभान अल्लाह
2: जाएगा
3: सुभान
2: गफ्फार
3: अल्लाह
2: मोहम्मद के शहर में, ले आना मेरे वास्ते सरकार की उल्फत, ले आना
3: ले
2: मेरे
3: आना
2: वास्ते
3: मेरे
2: सरकार
3: वास्ते
2: की
3: सरकार
2: उल्फत,
3: की उल्फत,
2: है इश्क का बाजार।

0: सब हैं इसमें मोहम्मद की बरकतें।
1: क्या बात है,
2: वाह।

0: इशारा कर रहे हैं कि अब हम अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने सामीन से रुख्सत हों।
1: जी
0: तो इस शेर के साथ अपनी दोनों मेज़बान रबाब अंजुम और आयशा राहत को दें इजाज़त
1: इजाजत।
0: कि अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।
1: बेशक,
0: अलविदा।
1: अलविदा।
2: सामीन, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम आकाशवाणी का। ये रामपुर केंद्र है, 10:10 हुए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ फिल्मी गीत आपके अनुरोध पर।

रीना वसीम, आरिस वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख, शेख टोरी समस्तीपुर से मोहम्मद शहनवाज परवेज और मुसरत जहां नाज, दीदा रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, अक्रम सैफी और आबाद खान, परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी, गंज टनवारा से शमसुल कमर और मास्टर जाहिद अली, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, मोहल्ला झंडा बड़े पीर साहब निकट बालाजी मंदिर रामपुर से लियाकत भाई, गौसिया सिद्रा, उबैद खां, प्रेम प्रकाश, मास्टर अनुराज और जमील भाई, पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी और कृष्णा केवट, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे और पुष्पाताई नारे, नई बस्ती पतेई खालसा जिला अमरोहा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी और सुदेश चौहान, थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां, शाहिदा परवीन, इमरान खां, रेहान खां, इकराम खां, समीना बी, आसिफा और शबीना, रेलवे कॉलोनी बटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, आपके अनुरोध पर कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं ने, दंत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, बेरेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल, अर्जुन गवनीकर और धीरज सभ्य शेरे, मोहल्ला अलवायन शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दंतरेगी से भागवत वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर, सीमंदर पार्क वीरम गांव से अजीत, प्रेमिला, भावेश, सन्नी, हेतल, कृष्णा और जैमिन भावसार, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा, छत्रपति शंभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, पटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल, शीला और गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, महिमा रानी वैद और नीतू वैद, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, अनमोल, सीमा, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से अख्तर हुसैन, बारोनेशा असलम हुसैन, महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से ये श्रोता हैं, अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, रोही और स्वाति मौर्य, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रणामिका और उत्कर्ष नेताम,
मोहल्ला चामुंडा कस्बा नरौली से इंतजार रही।

हीर रांझा फिल्म के इसी गीत के साथ आज का आपके अनुरोध पर कार्यक्रम समाप्त करने की रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत

सुनहरा दौर, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं 2000 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। सबसे पहले ये गीत अभिजीत और साधना सरगम की आवाजों में, फिल्म का नाम है इंडियन।

इंडियन, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अभिजीत और साधना सरगम की आवाजों में। और अब ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है दिल ने जिसे अपना कहा।

हम हो गए आपके। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं ये गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है जूली।

जूली, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 2000 के दशक के फिल्मी गीत। अब सुनिए ये गीत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है अब बस।

अब बस फिल्म केसी गीत के साथ सुनहरा दौर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने 2000 के दशक के फिल्मी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनहरा दौर। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत नाटक ख्वाबों के पंख। लेखक हैं गुडविन मसीह और प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की है।
1: जानकी, मौसम तो वाकई बहुत खराब है।

0: में हमें गांव से निकलना ही नहीं चाहिए था। गांव वालों की बात ना मानकर शायद हमने गलती कर दी है जानकी।
1: आप सही कह रही हैं सिस्टर, एक तो मौसम खराब है, ऊपर से सड़क पर अंधेरा है, पर आप घबराइए नहीं, मैं गाड़ी पूरी सावधानी से चला रहा हूँ।
0: हाँ जानकी, तू गाड़ी जरा आराम से चलाना, भले ही देर हो जाए।
1: आप परेशान मत होइए सिस्टर, चैरिटी होम तक हम आराम से पहुंच जाएंगे।
0: अरे क्या हुआ जानकी, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी?
1: मैं क्या करता सिस्टर, वो एकदम गाड़ी के सामने आ गई।
0: गाड़ी के सामने आ गई? कौन गाड़ी के सामने आ गई जानकी?
1: अरे सिस्टर आपने देखा नहीं, एक लेडी हमारी गाड़ी के सामने आ गई।
0: अरे अरे तो तुम गाड़ी में बैठकर क्या कर रहे हो? जाओ जाकर देखो उसे, कौन है वो, उसको चोट तो नहीं लगी?
1: जी हाँ मैं देखता हूँ सिस्टर। सिस्टर प्लीज हाँ, आपको भी आना पड़ेगा।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ रुको रुको, मैं अपनी टॉर्च लेकर आती हूँ।
1: सुनो कौन हो तुम? अरे तुम बोलते क्यों नहीं है, कौन हो तुम? सिस्टर लगता है ये बेहोश हो गई है।
0: ओह माय गॉड, अब हम क्या करें, ये इतनी रात को सड़क पर कहाँ से आ गई?
1: पता नहीं सिस्टर, देखने से तो अच्छे भले घर की लग रही है।
0: इस हालत में तो इसे यहाँ छोड़कर जाना भी ठीक नहीं होगा। एक काम करो जानकी, किसी तरह इसे गाड़ी में बिठा लो।
1: देख लीजिए सिस्टर, हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं।
0: मतलब क्या है तुम्हारा जानकी?
1: सिस्टर
0: हाँ?
1: आजकल स्कैम बहुत हो रही है, ऐसा भी तो हो सकता है
0: क्या?
1: ये जानबूझकर हमारी गाड़ी से टकराई हो।
0: ओह माय गॉड,
1: ताकि हम रुके और इसके साथी जो यही कहीं छिपे हो वो आकर हमें लूट ले, हमारी गाड़ी छीन ले। वरना आप खुद सोचिए, इतनी रात को वो भी सुनसान सड़क पर एक अकेली लड़की क्या करने आएगी?
0: ठीक है जानकी, तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन इसके साथ मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक हमारे ऊपर अटैक हो गया होता। अब ज़्यादा सोचो नहीं जानकी, ऐसे भी मौसम बहुत खराब हो रहा है, इसे उठाओ जल्दी से और चलो यहाँ से।
1: ओके सिस्टर, आप मेरी हेल्प कीजिए।
0: हाँ हाँ जरूर।

0: अरे अरे लेटे रहो बेटी, तुम ठीक तो हो ना?
1: पर इस समय हम कहाँ हैं और आप?
0: बेटी, मैं एक समाज सेविका सिस्टर लीसा हूँ और तुम इस समय मेरे चैरिटी होम में हो।
1: सिस्टर लीसा, चैरिटी होम? लेकिन हम यहाँ कैसे आ गए? कौन लाया हमें?
0: इसका मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तुम कल रात मेरी कार से टकराकर बेहोश हो गई थी।
1: क्या
0: रात बहुत हो चुकी थी और तुम एकदम अकेली थी। मौसम भी बहुत खराब था, इसलिए तुम्हें मैं अपने साथ ले आई। लेकिन लेकिन एक बात समझ में नहीं आई बेटा।
1: क्या?
0: यही कि कल रात को इतने खराब मौसम में सुनसान सड़क पर तुम अकेली क्या कर रही थी? अरे रो क्यों रही हो बेटा?
1: सिस्टर, आपने हमें क्यों बचाया? सिस्टर क्यों बचाया?
0: क्या हुआ बेटा?
1: हाँ सिस्टर, हम तो मरना चाहते थे।
0: क्यों?
1: हम मरने के लिए ही घर से निकले थे सिस्टर। हमें मर जाने दिया होता, मर जाने दिया
0: क्यों बेटा क्यों? और बेटी, मैं कौन होती हूँ तुम्हें बचाने वाली? तुम्हें बचाने वाला तो ईश्वर है और उसी ने हमें वहां भेजा था। बेटी, मुझे नहीं मालूम तुम

0: चाहती थी, तुम्हारी समस्या क्या है? लेकिन मैं इतना तो जानती हूं कि मौत किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि समस्या को खत्म कर देना ही समस्या का हल होता है बेटी। अगर तुम चाहो तो मुझे अपने बारे में सब कुछ बता सकती हो। सकता है तुम्हारी समस्या का मैं कोई हल निकाल लूं। हाँ बेटा।
1: सिस्टर, मेरा नाम सुनैना है।
0: हाँ?
1: मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ। अभी 3 महीने पहले मेरी शादी इंजीनियर शेखर से हुई है।
0: अच्छा,
2: और कितना इंतजार कराओगी सुनैना? मैं तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे चांद से मुखड़े का दीदार करने के लिए कितना बेकरार हूं। सुनैना प्लीज, अब इस घूंघट को हटा भी दो और अपने चांद से मुखड़े का दीदार भी करा दो ना।
1: शेखर, तुम्हें अपने चांद का दीदार करना है ना?
2: हाँ,
1: तो घूंघट भी तुम्हें ही हटाना होगा।
2: ओह तो लो हटा दिया घूंघट। खूबसूरत, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत मेरा चांद सुनैना, सचमुच तुम बहुत खूबसूरत हो।
1: छोड़िए ना शेखर, छोड़िए हमें। अब हम
2: सुनैना,
1: इतनी भी खूबसूरत नहीं जितनी आप हमारी तारीफ कर रहे हैं।
2: सुनैना, माँ ठीक कहती थी कि मैं तुम्हें देखते ही तुम पर निहाल हो जाऊंगा।
1: अच्छा।
2: हाँ सुनैना, सुनैना, मैं तुम्हारी इस बेपनाह मोहब्बत में हमेशा हमेशा के लिए खो जाना चाहता हूं।
1: हम भी
2: सुनैना,
1: सारी जिंदगी तुम्हारे प्यार में खोकर जीना चाहते हैं। अपनी एक एक सांस में तुम्हें बसा लेना चाहते हैं। शेखर, हमें तुम्हारा प्यार चाहिए, बस बस तुम्हारा प्यार।
2: हाँ सुनैना, हाँ, अब हमारा प्यार ही एक दूसरे के लिए जीने का मकसद होगा सुनैना।
1: और सिस्टर, शेखर की बेपनाह मोहब्बत को पाकर हम खुद को दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की समझ बैठे। शेखर और उसके प्यार पे हम घमंड करने लगे। लेकिन हमारा घमंड उस दिन टूट कर चकनाचूर हो गया जिस दिन शेखर के नाम एक रजिस्टर्ड चिट्ठी आई।
0: रजिस्टर्ड चिट्ठी?
1: अरे शेखर, तुम तो शाम को आने वाले थे ना?
2: आना तो शाम को ही था, लेकिन क्या करें, तुम्हारी याद सताने लगी तो चले आए। सुने ना, सुनो, मम्मी नजर नहीं आ रही है।
1: मम्मी तो बाजार गई है।
2: बाजार गई है? थैंक गॉड, लगता है भगवान भी हमारे साथ है।
1: क्या मतलब तुम्हारा?
2: अरे पगली, मतलब भी समझ जाओगी, मेरे पास तो आओ।
1: अरे अरे, ये क्या कर रहे हो शेखर? छोड़ो ना हमें। अरे छोड़ो ना, क्या कर रहे हो शेखर? मम्मी आ जाएंगी।
3: पोस्टमैन।
2: इस पोस्टमैन को भी अभी आना था। सुने ना, अरे यार हंसकर चिढ़ाओ मत मुझे, जाओ जरा जाकर देखो पोस्टमैन क्या लाया है।
1: ठीक है बाबा, जाते हैं जाते हैं। जी कहिए।
3: शेखर बाबू के नाम रजिस्ट्री है।
1: हाँ तो लाइए, हमें दे दीजिए।
3: ये लीजिए और यहां अपने दस्तखत कर दीजिए।
1: ठीक है शेखर, तुम्हारे नाम रजिस्ट्री है।
2: क्या कहा, मेरे नाम रजिस्ट्री है? सुनैना, इस लेटर का मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जानती हो इसमें क्या है? इसमें मेरी नौकरी का लेटर है।

0: सच?
1: सुनैना सुनैना सुनैना, फटाफट खोलकर इसको पढ़ो प्लीज। क्या लिखा है इसमें?
0: अरे शेखर, ये तो अंग्रेजी में है।
1: अरे अंग्रेजी में है तो क्या हुआ, पढ़ो ना।
0: लेकिन लेकिन हमें तो अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती।
1: सुनै ना प्लीज, मजाक छोड़ो और जल्दी से पढ़ो लेटर में क्या लिखा है।
0: नहीं शेखर, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में हमें अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती।
1: क्या कह रही हो सुनै ना, तुम्हें सचमुच अंग्रेजी नहीं आती?
0: हाँ, तो इसमें इतनी चौंकने वाली बात क्या है शेखर? तुम्हें तो मालूम है हम गांव के स्कूल में पढ़े हैं, वो भी 8वीं क्लास तक। क्या हुआ शेखर, तुम इतने खामोश क्यों हो गए?
1: मैं खामोश नहीं हुआ हूं सुनैना, मैं अपनी किस्मत को कोस रहा हूं।
0: किस्मत को कोस रहे हो? क्यों? मैं कम पढ़ी लिखी हूं इसलिए।
1: हाँ, सुनैना, हर इंसान समाज सोसाइटी और यार दोस्तों में अपनी वाहवाही सुनना चाहता है, लेकिन जब मेरी सोसाइटी और मेरे दोस्तों को पता चलेगा कि तुम अनपढ़ जाहिल और गवार हो, तो उन सबके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अब तक जो लोग तुम्हें और तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मुझसे जलते थे, कल को वही लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे बेइज्जत करेंगे। कहेंगे कि मैंने दहेज के लालच में तुम जैसी अनपढ़ गवार और जाहिल लड़की से शादी कर ली।
0: शेखर, अगर मैं कम पढ़ी लिखी हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे नहीं पढ़ाया, तो मैं क्या कर सकती थी?
1: अगर ऐसा था तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी शादी तुम्हारी ही तरह किसी अनपढ़ गवार और जाहिल लड़के से करना चाहिए थी। उन्होंने मेरी जिंदगी में ये कलंक क्यों लगा दिया?
0: शेखर, क्या अनपढ़ होना कलंक होता है?
1: और नहीं तो क्या होता है? शादी करने से पहले तुम्हारे मां बाप को मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री तो देख लेनी चाहिए थी ना।
0: शेखर, गलती सिर्फ हमारे अम्मा बापू की नहीं है, गलती तो तुम्हारी तुम्हारी मम्मी की भी है। तुम्हें शादी से पहले पूछ लेना चाहिए था कि हम तुम्हारे बराबर पढ़े लिखे हैं या नहीं। अब तो शेखर कुछ नहीं हो सकता। हाँ शेखर, क्योंकि अब तो हमारी शादी हो चुकी है।
1: सुनै ना, मैं अपनी जिंदगी को हंस खेल कर जीना चाहता हूं, बोझ बनाकर नहीं। सुनै ना, मैंने भी अपनी जिंदगी के लिए कुछ सपने देखे हैं और उन्हें पूरा करना चाहता हूं, जो तुम्हारे साथ रहकर कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि समय रहते हम
0: ये तुम क्या कह रहे हो शेखर? अभी अभी तो हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की है और तुम अलग होने की बात कर रहे हो। नहीं शेखर, नहीं शेखर, ऐसा मत करो।
1: छोड़ो मुझे।
0: बोलो शेखर,
1: नहीं,
0: बोलो ना, तुम खामोश क्यों हो गए? तुम बोलते क्यों नहीं शेखर? बोलो ना शेखर,
1: क्या
0: बोलो
1: हुआ? अरे क्या हुआ
0: ना।
1: सुना ना
0: मम्मी,
1: शेखर, क्या हुआ सुनैना को? ये रो क्यों रही है? मम्मी, एक तो इस अनपढ़ जाहिल गवार को मेरे माथे मर दिया है, ऊपर से पूछ रही हो क्यों रो रही है? ये तू क्या कह रहा है शेखर? क्या कमी है इसके अंदर? अरे सुंदर है, सुशील है और घर के कामों में निपुण भी है। रही बात इसके कम पढ़े होने की, तो क्या हुआ, हमें इससे नौकरी थोड़ी करानी है? मम्मी, मैं इंजीनियर हूं और अब मेरी नौकरी भी कंफर्म हो गई है। अब मेरे पास अच्छी जॉब होगी, नौकर चाकर कोठी गाड़ी होने के साथ साथ मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। मेरी अलग सोसाइटी होगी जिसमें सुनैना कहीं भी फिट नहीं हो पाएगी। सोसाइटी के लिए उठने बैठने और बोलने के तौर तरीके आने चाहिए और वो सब इसे आते नहीं है। सोसाइटी में फर्राटेदार अंग्रेजी बोली जाती है और इससे तो अंग्रेजी का ए भी नहीं आता।
2: अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है तुझे बहू नहीं चाहिए, नुमाइशी गुड़िया चाहिए जो तेरी सोसाइटी वालों का मन बहलाए, क्लबों में जाए और बेढंगे कपड़े पहनकर, होटलों में शराब पीकर, गैर मर्दों की कमर में हाथ डालकर नाचे गाए। बेटा, ये सब तेरी सोसाइटी में होता।

0: होगा, हमारे परिवार में नहीं।
1: तुम कुछ भी कहो मम्मी, पर मैं एक अनपढ़ गवार जाहिल के साथ रहकर अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकता।
0: तो ठीक है, तू मेरी बात भी कान खोल कर सुन ले। मेरे जीते जी सुनैना कहीं नहीं जाएगी, सुनैना इसी घर में रहेगी और वो भी तेरी बीवी बनकर।
2: सुनैना, क्या क्या सपने देखे थे तूने, क्या क्या अरमान थे तेरे, सब के सब टूट के चकनाचूर हो गए। जो शेखर तुझे देखकर निहाल हो रहा था, तेरी खूबसूरती के गुण गाए नहीं थक रहा था, तुझसे कभी अलग ना होने की कसमें खा रहा था, वही शेखर आज तुझसे नफरत करने लगा है। नफरत आज पूरे 2 हफ्ते हो गए उसने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और ना ही तुमसे बात की। नहीं नहीं नहीं, अगर अगर शेखर ने हमसे बात नहीं की तो क्या हुआ, हम शेखर की नफरत को प्यार में बदल देंगे। हाँ, हमें पूरा यकीन है शेखर फिर हमसे पहले जैसा प्यार करने लगेंगे। हाँ, ये तेरा भ्रम है सुनैना, शेखर को तुझसे नफरत हो गई है। हाँ सुनैना, शेखर तुझसे नफरत करने लगा है, शेखर को तुझसे नफरत हो गई है। नफरत नफरत नफरत, नहीं नहीं नहीं, शेखर शेखर हमसे नफरत करते हैं तो क्या हुआ, हम तो शेखर से नफरत नहीं करते, हम तो शेखर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। शेखर की खामोशी और उदासी हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शेखर शेखर यही तो चाहते हैं कि हम उनकी जिंदगी से निकल जाएं, तो निकल जाएंगे उनकी जिंदगी से। हाँ, हम आज अभी इसी वक्त शेखर का घर छोड़ देंगे और इतनी दूर चले जाएंगे जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। हम जा रहे हैं शेखर। हाँ, जब अपनों ने ये टुकरा दिया तो अब इस दुनिया में हमारा कोई वजूद नहीं रह गया। किसके लिए जीना है, क्यों जीना है? नहीं नहीं, अब हमें जीना ही नहीं है, इसलिए हम अपना अस्तित्व ही मिटा देंगे, अपनी जान दे देंगे। शेखर ने हमसे मुंह मोड़ लिया तो हम जीकर करेंगे भी क्या, किसके सहारे जिएंगे? अपने घर जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब अम्मा बापू के लिए भी हम पराए हो चुके हैं, इसलिए हम कहीं नहीं जाकर इस संसार से चले जाएंगे, इस संसार से चले जाएंगे।

0: तो तुमने इतनी छोटी सी बात को लेकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था?
1: सिस्टर, ये बात आपके लिए छोटी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो मर जाने वाली बात है।
0: बेटी सुने ना, अनपढ़ होना सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि बहुत सी लड़कियों की समस्या है। हाँ बेटी, किसी भी समस्या से समझौता करना या हार मान लेना सिर्फ कायरता ही नहीं बुजदिली भी होती है। अनपढ़ होने के इस कलंक को धोकर समाज में अपनी एक नई पहचान बनाओ।

0: मान सम्मान हासिल करो और दिखा दो शेखर को कि तुम क्या नहीं कर सकती हो, ताकि और लड़कियां भी तुमसे प्रेरणा लेकर तुम्हारा अनुसरण करें बेटी।
1: लेकिन लेकिन सिस्टर, ये सब कैसे हो पाएगा?
0: क्यों नहीं हो पाएगा बेटी, इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, बस इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत होती है। हाँ सुने ना, तुम अगर चाहो तो सब कुछ हो सकता है। सोचो जरा, तुम्हारे शेखर ने तुम्हें इसीलिए तो ठुकराया ना, क्योंकि तुम कम पढ़ी लिखी हो। सकता है शेखर की नफरत तुम्हारी कामयाबी का दरवाजा खोलना चाहती है।
1: सिस्टर, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी।
0: मतलब यही है सुने ना, कि तुम अपने कम पढ़े लिखे होने की इस कमी को शेखर की चुनौती मानकर स्वीकार करो। सोच लो, तुम्हें हर हाल में आगे की पढ़ाई करके शेखर के सामने खुद को साबित करना है।
1: सर, सिस्टर,
0: शेखर को दिखाना होगा कि गांव की लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। हाँ, क्या हुआ बेटी, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों आ गए?
1: खुशी के आंसू है सिस्टर, खुशी के आंसू।
0: ओह
1: सिस्टर,
0: हाँ,
1: आज आपने हमारा मनोबल बढ़ाकर हमारी बुझती हुई जिंदगी को फिर से रोशन कर दिया। सिस्टर, आपके स्नेह और सहानुभूति ने हमारे अंदर जो आत्मविश्वास पैदा किया है, उसने हमारे अंदर जीने की चाह पैदा कर दी है।
0: बहुत बढ़िया।
1: सिस्टर,
0: हाँ
1: हाँ, हम आगे की पढ़ाई पूरी करके अपने अनपढ़, जाहिल और गंवार होने के कलंक को धोना चाहते हैं,
0: वाह,
1: ताकि फिर कोई शेखर किसी अनपढ़ सुनैना का तिरस्कार ना कर सके, उसे आत्महत्या के लिए मजबूर ना कर सके। लेकिन लेकिन सिस्टर
0: लेकिन लेकिन क्या सुने ना,
1: सिस्टर, हमारे पास तो न रहने के लिए घर है और न पैसा, फिर हम अपनी आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे सिस्टर?
0: तुम अपने रहने और खाने की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब कोई कुछ अच्छा करने का मन बना लेता है ना, तो ईश्वर भी उसके रास्ते के सारे कांटे चुन लेता है, उसके सामने खड़ी बाधा की हर दीवार को ढा देता है। सुने ना बेटा, तुम मेरे साथ इस चैरिटी होम में रहोगी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, खाने पीने और पहनने ओढ़ने और रहने का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। सुने ना, बस तुम्हें पढ़कर आगे बढ़ना होगा।
1: सच सिस्टर, आप सच कह रही हैं?
0: हाँ बिल्कुल सच सुने ना, तुम्हें आगे मैं पढ़ाऊंगी, तुम्हें मैं अनपढ़ जाहिर और गवार सुनैना से पढ़ी लिखी सुनैना बनाऊंगी, तुम्हें फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगी। हाँ सुने ना, तुम्हारे आगे पढ़ने के फैसले को सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आज से ही तुम्हारे पढ़ने की व्यवस्था करवाती हूँ।
1: हाँ सिस्टर, सिस्टर, आपका नाश्ता लगा दिया है, कर लीजिए।
0: और तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें नाश्ता नहीं करना है क्या?
1: हम बाद में कर लेंगे सिस्टर।
0: बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं?
1: ऐसी कोई बात नहीं है सिस्टर, वो क्या है ना, हम अपनी स्टडी कर रहे हैं।
0: अरे हाँ, तुम्हारे तो एग्जाम होने वाले हैं ना
1: जी सिस्टर।
0: बेटा, पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखो। मैंने देखा है कि तुम पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना भी भूल जाती हो। चलो पहले नाश्ता कर लो, फिर पढ़ लेना, और बैठो यहाँ पर।
1: जी सिस्टर।

0: सुनैना, तुम अभी तक पढ़ाई कर रही हो?
1: बेटी, रात के 2 बज रहे हैं, सुबह तुम्हारा पेपर भी है। चलो अब सो जाओ, वरना सुबह को सोती रह जाओगी।
2: जी ठीक है सिस्टर। हे भगवान, तूने जिस तरह हाई स्कूल इंटर

0: बीए में हमारी लाज रखी है, उसी तरह बीएड की परीक्षा में भी हमें अच्छे नंबरों से पास कराना, क्योंकि क्योंकि भगवान, यही तो हमारा और सिस्टर लीजा का ख्वाब है। सुनैना,
1: कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? मैंने सुना पेपर काफी टफ आया था।
0: हाँ सिस्टर, पेपर तो काफी टफ था, लेकिन हमने सॉल्व कर दिया।
1: तुम्हारा पेपर तो हो ही गया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम पास भी अच्छे नंबरों से हो जाओगी।
0: जी सिस्टर, अपनी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की है, बाकी क्या होगा ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा।
1: ऐसा कुछ भी नहीं है सुनैना, तुम्हारा रिजल्ट जैसे पहले रहा है वैसा ही अब रहेगा। तुम अच्छे ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी, ये मेरा यकीन है सुनैना।

0: पूरे 10-11 साल हो गए, पता नहीं सुनैना कहाँ और किस हाल में होगी, पता नहीं वो इस दुनिया में होगी भी या नहीं। बेटा बेटा शेखर, तूने सुनैना के साथ ठीक नहीं किया।
1: मम्मी मैं तो पहले से ही परेशान हूं, ऊपर से तुम और सुनैना के घर वाले मुझे दिन रात कोसते रहते हो, मुझे ताने मारते रहते हो। अरे क्या मैंने उससे कहा था कि वो घर छोड़कर चली जाए? सुनैना को मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने उसे।
0: बेटा बड़ा मन कर रहा है सुनैना को देखने का, अगर वो देखने को मिल जाती तो शायद मैं चैन से मर सकती।
1: देखने को तो तभी मिलेगी ना जब उसका कोई पता ठिकाना होगा। पता नहीं कौन सी खो में घुसकर बैठ गई, अगर वो शहर में होती तो कहीं ना कहीं टकराती जरूर। खुद तो चली गई इस घर को छोड़कर, साथ में मेरा जीवन भी नरक बनाकर चली गई।
2: अरे अरे सुनैना सुनैना बेटा सुनो तो सही।
3: हे भगवान हे भगवान, लगता है तूने हमारी प्रार्थना सुन ली। क्या हुआ सिस्टर, हमारा रिजल्ट आ गया?
2: हाँ बेटा तुम्हारा रिजल्ट आ गया और तुम पास भी हो गई हो सुनैना।
3: सिस्टर सच में हम पास हो गए?
2: हाँ बेटा हाँ। पर ये क्या, तुम रो क्यों रही हो?
3: सिस्टर पता नहीं क्यों आज अचानक शेखर की याद आ गई।
2: शेखर की याद आ रही है?
3: जी सिस्टर, शेखर से अलग हुए आज पूरे 11 साल हो गए। इन 11 सालों में कितना कुछ बदल गया।
2: हाँ सुने ना,
3: हमारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और अब हमें टीचर बनने का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। मगर इतने सालों में कभी भी कहीं भी हमारी शेखर से मुलाकात नहीं हुई। पता नहीं कैसे होंगे वो और मम्मी जी।
2: बेटी हो सकता है शेखर इस शहर में ही ना हो, उसका ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया हो, बहुत सी बातें हो सकती हैं बेटा। वरना ये शहर इतना बड़ा भी नहीं है कि कहीं कोई किसी मोड़ पर किसी से टकराए ना। फिर भी अगर तुम्हारा मन है शेखर से मिलने को तो बेटा तुम किसी भी दिन उसके घर जाकर देखाओ, हो सकता है तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए।
3: नहीं सिस्टर नहीं, अब हम शेखर से कभी नहीं मिलेंगे। सिस्टर प्लीज लीव दिस टॉपिक। हाँ अरे हाँ सिस्टर, आप तो हमें कोई गुड न्यूज सुनाने वाली थी।
2: हाँ बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मैंने अपने कॉलेज के मैनेजमेंट से तुम्हारी नौकरी की बात की थी।
3: सच?
2: और उन्होंने तुम्हारी नौकरी के लिए हाँ भी कर दी है सुने ना। अगले महीने हमारे यहाँ एक टीचर रिटायर्ड हो रही है, उसकी जगह तुम्हें वहाँ टीचर रख लिया जाएगा।
3: ओ सिस्टर ओ, हम सचमुच टीचर बन जाएंगे, वो भी इंग्लिश।

0: बोलने और पढ़ाने वाली टीचर।
1: बिल्कुल। और अब सुनैना, तुम अनपढ़ गवार सुनैना नहीं रही, तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें टीचर बना दिया, और वो भी कॉन्वेंट स्कूल की टीचर, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली टीचर। क्योंकि अब तुम फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकती रही हो, अंग्रेजी में लिख पढ़ और पढ़ा भी सकती हो।
0: थैंक्स गॉड, थैंक्स, यू आर ग्रेट सिस्टर। ये सब आपकी मेहनत और मार्गदर्शन का नतीजा है। आप हमें ना बचाती, पढ़ने के लिए प्रेरित ना करती, तो शायद आज हम जीवित भी ना होते, और अगर जीवित भी होते तो अनपढ़ गवार ही होते।
1: बेटी, मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था, बाकी सब तो तुम्हारी अपनी मेहनत का ही परिणाम है। सुने ना, आज तुम उन लड़कियों के लिए मिसाल बन गई हो जो निराशा के घोर अंधकार में जी रही हैं, जिनको लगता है कि वो शादी के बाद कुछ नहीं कर सकती। ऐसी लड़कियों के लिए अब तुम आशा की किरण बनोगी, सुने ना।
0: यस सिस्टर, यस। अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे।
1: वाह वाह।
0: हमें उन लड़कियों के लिए बहुत कुछ करना है जो ख्वाब तो बड़े बड़े देखती हैं, पर उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उनके पास साधन नहीं होते और ना कोई मार्गदर्शक। ऐसी लड़कियों को हम कुंठित नहीं होने देंगे सिस्टर। हम उनके मार्गदर्शक बनके उनके ख्वाबों को पूरा करेंगे, उनके ख्वाबों को पंख देंगे, पंख देंगे।
1: सुनैना, मेरा आशीर्वाद, मेरी सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो और बेसहारा लड़कियों का सहारा बनो।
0: थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच।
2: आ गया मेरा प्यारा बेटा अभिषेक। लाओ अपना बैग मुझे दे दो और तुम जल्दी से बाइक पर बैठ जाओ।
3: पापा, आपने तो कहा था कि आज आप मेरी मैडम से मिलोगे, तो क्या आप मेरी मैडम से नहीं मिलोगे?
2: ओह सॉरी बेटा, मैं तो भूल ही गया था। चलो मिलवाओ अपनी मैडम से।
3: चलिए पापा, आइए, अंदर आइए। पापा, यही है मेरी मैडम।
2: सुनैना, तुम?
3: पापा, आप मेरी मैडम को जानते हैं?
0: हाँ अभिषेक, तुम्हारे पापा तुम्हारी मैडम को जानते हैं। क्या हुआ शेखर, मुझे यहाँ देखकर शॉक्ड हो गए? लगता है एक अनपढ़ जाहिल और गंवार लड़की को कॉन्वेंट स्कूल की टीचर के रूप में देखकर तुम शायद यही सोच रहे होगे कि ये सब मिरेकल, ये सब चमत्कार कैसे हो गया। मिस्टर शेखर, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अनपढ़ गवार सुनैना, जिससे तुम्हें सिर्फ इसलिए नफरत हो गई थी क्योंकि वो तुम्हारी सोसाइटी की किसी दीवार के फ्रेम में फिट नहीं हो पा रही थी, वही सुनैना आज इस मुकाम तक कैसे पहुंच गई? क्यों मिस्टर शेखर, यही सोच रहे हो ना?
2: सुनैना, तुम्हारे तीर की तरह नुकीले शब्दों को सुनकर यह प्रतीत होता है कि तुम मुझसे आज भी नफरत करती हो। और हाँ, करना भी चाहिए, क्योंकि मैं हूं भी नफरत के लायक। लेकिन सुनैना, तुम्हारे घर छोड़कर चले जाने के बाद मैं पल भर के लिए चैन की नींद नहीं सो पाया हूं। तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अभिषेक को जन्म देने के बाद मेरी पत्नी मर गई। मम्मी ने अभिषेक को पाला पोसा। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया तुम्हें, आजकल मम्मी बहुत बीमार रहने लगी हैं।
0: और आगे कुछ मत बताओ शेखर, क्योंकि अभिषेक से हमें सब कुछ पता चल गया है कि वो कौन है, किसका बेटा, कहाँ रहता है, और इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अभिषेक ने हमें ये नहीं बताया कि मम्मी जी बीमार हैं।
2: सुनैना, मैं अपने किए पर इस तरह शर्मिंदा हूं कि तुमसे घर चलने को भी नहीं कह सकता।

0: तुमसे गुजारिश करना चाहूंगा। सुनैना, मम्मी बहुत बीमार हैं और वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। अगर हो सके तो तुम एक बार घर आकर मम्मी से मिल लो। हो सकता है तुमसे मिलने के बाद वो ठीक हो जाए।
1: शेखर, हम इतने भी सेल्फिश नहीं कि जो मम्मी हमें अपने घर की देहरी के अंदर लाई उनको ही भूल जाएं। मम्मी जी ने तो हमेशा हमें लाड़ दुलार दिया, इसलिए हम उनसे मिलने जरूर आएंगे।

0: अरे अभिषेक, पानी पानी दो बेटा। अरे ये अभिषेक कहाँ चला गया? अरे कितनी देर से मैं इससे पानी मांग रही हूं, पर मेरी ये सुनता ही नहीं है। अभिषेक, अरे बेटा मुझे पानी दे दे, मेरा दम घुट रहा है। अरे
1: मम्मी जी, ये लीजिए पानी।
0: अरे ये आवाज, ये हाथों का स्पर्श, मुझे मुझे ऐसा क्यों क्यों लग रहा है कि
1: दादी,
0: अरे
1: पहचानो कौन है?
0: कौन है?
1: मम्मी जी, हम आपकी सुनैना, आपकी सुनैना।
0: अरे अरे अरे अरे सुनैना, अरे मेरी बहू कैसी है तू? कहाँ रही इतने दिनों तक?
1: मम्मी जी, हम बहुत अच्छे हैं और जहां भी हैं बहुत खुश हैं।
2: दादी, ये तो मेरी मैडम है, स्कूल में मुझे पढ़ाती हैं।
0: अच्छा, सुनैना तू टीचर बन गई बेटी?
1: जी मम्मी जी,
0: वो भी अंग्रेजी स्कूल की
1: जी मम्मी
0: टीचर?
1: जी, मम्मी जी, अब हम फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। हम इंग्लिश में पढ़ना, लिखना और बोलना भी सीख गए हैं। अब हम अनपढ़ गवार और जाहिल नहीं है मम्मी जी।
0: फिर तो तूने ये साबित कर दिया कि कोई भी इंसान बेकार नहीं होता है। अगर उसे मौका दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकता है बेटा।
1: जी मम्मी जी, मम्मी जी, स्कूल के अलावा हम गांव की उन लड़कियों को भी पढ़ाते हैं जो पढ़ना तो चाहती हैं पर उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं, ताकि उनका भी अपना कोई वजूद हो, उन्हें कोई अनपढ़ गवार होने का ताना ना मार सके, उनका जीवन बर्बाद ना कर पाए।
0: ये तो तू बहुत अच्छा करती है बेटी। ईश्वर तुझे और ऊंचाइयों तक ले जाए, तू खुश रह बेटी।
1: मम्मी जी, सब आपका आशीर्वाद है। अच्छा मम्मी जी, अब हम चलते हैं। और हाँ, आप हमारे चैरिटी होम आ जाइएगा। हम आपका अच्छे से इलाज ही नहीं करवाएंगे, बल्कि हम खुद आपकी देखभाल करेंगे।
0: ठीक है बेटी, खुश रह खुश रह।
3: सुने ना, अब तुम आई हो तो घर में अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर रुक कर चली जाती तो।
1: फिर कहना एक दिन रुक कर चली जाना, और उसके बाद कहना तुम्हारे बिना घर सूना सूना है। तुम्हें अभिषेक और मम्मी का वास्ता, मेरे लिए ना सही, मम्मी और अभिषेक के लिए ही सही। तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ।
3: हाँ सुनैना, तुमने तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या सोच रही हो सुनैना? सुनैना, आई लव यू, आई लव यू सो मच।
1: बट मिस्टर शेखर, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू।

अभी आपने सुना गुप्त फिल्म से ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही शीर्षक से कुछ गीत। आज का शीर्षक है सनम। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोटवाल की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे मन भावन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजे हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडस टैग जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:05 हुए हैं।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
6: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
5: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
6: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
7: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
6: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
8: से नो टू प्लास्टिक।
9: अरे भाई कोई 100 नंबर डायल करो, 100 नंबर डायल करो भाई साहब, जल्दी जल्दी।
10: 100 पे नहीं, 108 लगाओ, 108
9: नहीं, 112 लगाओ।
11: अरे भाई इसकी जान चली जाएगी, आप लोग एक ही नंबर बताओ, बार बार कंफ्यूज मत करो।
9: अरे भाई एक ही नंबर पर सारे काम, 112 लगाए, तत्काल पुलिस बुलाए, फायर एम्बुलेंस की सर्विस तुरंत पाए।
12: हेलो 112।
13: नमस्कार 112 यूपी,
12: गांधी समाधि रामपुर पर एक्सीडेंट हो गया है।
13: कृपया अपना शुभ नाम बताइए।
12: सुनील।
13: एम्बुलेंस के साथ साथ आपको पुलिस और फायर की भी जरूरत है?
12: नहीं सर, सिर्फ एम्बुलेंस की।
13: आपको सहायता शीघ्र भेजी जा रही है, डायल 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
14: तो सुना आपने, अब 112 पर मिलेगी आपको जीवन रक्षा संबंधी हर आपातकालीन सेवा। SMS करें या कॉल, ईमेल भेजें या 112 इंडिया मोबाइल ऐप पर मिलेगी आपको तुरंत सहायता। अब सिर्फ एक ही नंबर याद रखें, 112, और समझदारी से काम लें।
15: मम्मी मम्मी कहाँ हो, जरा एक ग्लास पानी तो पिला दो, आज तो थक गया स्कूल से आते आते।
16: अभी लाई।
15: अरे ये क्या शोर तो इतना मचा रहे थे, और ये आधा गिलास पानी भी नहीं पिया, क्या करूं इस बचे हुए पानी का।
16: तो क्या हुआ मम्मी, जितना पीना था पी लिया, बाकी फेंक दो, कौन से पैसे लगे हैं, पानी है, कोई सोना थोड़ी है।
15: पानी का मोल समझ मेरे बच्चे, अगर हम इसी तरह पानी बर्बाद करते रहे तो आने वाले समय में तरस जाएंगे एक बूंद पानी के लिए, और तब समझ आएगी पानी की कीमत।
17: जी हाँ, जल बचाएं और बचाएं अपने कल को, बूंद बूंद से भरती गागर, पानी का प्रयोग जरा संभल कर, पानी अर्थात

0: भी आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम।

सभी सुनने वालों को शाजिया परवीन का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला नगमा लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फिल्म संगम, फरमाइश आप सबकी। डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, श्रीमती सुनीता बोकोलिया, संजय अनिल मीनू बोकोलिया, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे।

प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और सरोजनी कुंती साहू। सरगुजा मैनपाट से सोनिया, सोनम, रेशमा और आदिबा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन, सरफुद्दीन, कुमारी वली।

भंजन उत्तर प्रदेश से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार एवं इनका समस्त परिवार। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित व मोहित। जरूर वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहेब बड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे और कार्तिक युवराज। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। बेरड़ी से राजेश सोनी।

ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद्र डांगी ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत शिवम सुखलाल अमरपाल ऋषिपाल सिद्धार्थ और यश मालियान सरदना मेरठ से अनिल जैन जैन साहब संयम जैन मुस्कान जैन और मास्टर जीवियम हटोत बाजार लाहौत से कमलनाथ पटेल राकेश कुमार पटेल समीर पटेल राजकुमारी पटेल जतुका किशनपुर से आलम दिलकश शबाना नाज रिजवान राही इमरान राजा आलम शेख शबाना आलम चांदनी नाज सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर मोहम्मद वकील राही छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही शाहीन फातिमा अदनान खान और अनु खान पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमश खत्री रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री पुणे खराड़ी से

आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गमाड़कर राही, श्रीमती सरिता गमाड़कर प्रिंस एकांश गमाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गमाड़कर, श्वेता सुमित गमाड़कर, ध्वनि गमाड़कर उर्फ परी, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गमाड़कर, प्रणीता गमाड़कर और लाडला टुक टुक गमाड़कर, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया शोएब खान, नावेद खान, सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, पुणे से पंकज बाड़ोदे, आर्या प्रियंका, अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर यूपी से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल मिस्त्री, रूमा मंजू, प्रियंका शीतल, पूजा, कविता, आशु गौतम, जामरूनता अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, कुमारी साध्वी जोशी, परभणी हुन और गणेश हरगांवकर, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साइदा रानी और हिना कौसर, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जेतेक बिरक और मीका बिरक, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, जय कुमार, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा।

और पूजा परिहार, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, मिखाइल मुजावर, जैनब मुजावर, लेवाखेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाऊ विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो उषा सोरना खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी, बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म लगान से ये गीत।

बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मूड़त, पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार मुख्तार अंसारी और असद अंसारी, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, ग्राम गुरावा पोस्ट किल्लोद एमपी से नंदलाल राजपूत, राजू राजपूत, मनुका बाई, नंदनी बाई रुद्र राजपूत, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर से सुरिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रतीशा संधु और मैक्स, शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहांत से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, इनकी पुत्रवधु हैं निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार, कासिम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश खत्री, नूरुमीना, इरफान मीना कासिफ,

मीना, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को।

उपमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और रसीद वारसी। ज़िला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान।

सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, पूनावले पुणे से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा, कोल्हापुर से तुषार कुंडे, प्रसिक कांबले, एकता कांबले, मेघना कुरुणे, उत्कर्षा कांबले, अरुण यलगुरकर, हाथ कणंगले, और इन्हीं के साथ हैं अतुल गौतमी, धम्मदिना, अरुण काले और एडी कांबले। लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी, डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा, नाज मंजिल महसोल सीतामणी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख और चीना शेख, क्वाद बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर, नूर महल महसोल से हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, सबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू, जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय सैनी, आंचल आकांक्षा, आकाश, विक्की सैनी, छवि, दक्ष, देवव्रत सैनी, मानवी, रुद्र, मझोली से खमानी सिंह, हीरावती देवी और इनका सभी सैनी परिवार। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

सहारनपुर से सोनाली नारंग और आशा नारंग, वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार, कोटवा नारायणपुर चंदन नगर सातारा से सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति वाघमारे, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे और श्रमेण वाघमारे, विजय चेहवाण, तेजस्विनी चेहवाण, अंकिता चेहवाण, अनिकेत चेहवाण, माया चेहवाण, ये सारे फरमाइश करता हैं हमारे कोल्हापुर से। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रैयांश ठाकुर, कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर इशिता साहनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी, डॉक्टर सोनम और अफजाल मलिक, मोहल्ला मजार चांदशामिया जिला रामपुर से मोहम्मद रमजान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, फौजिया रोशनी, शाइना काजल, अनमता और आशुभाई मंसूरी, गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खां, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और इनका समस्त डागला परिवार। ये सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत।

और अब कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत फिल्म जिस देश में गंगा रहता है से फरमाइश आप सबकी सौराष्ट्र राजकोट से जगदीश गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी फ्रेंड्स कलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा इंद्रजीत कौर बेबी मनमीत मनविंदर सिंह पांधा जी एस राम गड़िया जनकपुरी सहा

पठानपुर से जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, पर्ल डी कैस्ट्रो, विलिस डी कैस्ट्रो, रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमधाड़े, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जोहरी, अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर और रुद्रा रामेकर, इनके साथ हैं रुचिका रामेकर और सारा समस्त रामेकर परिवार, लदावली से अजीत कसाना, माया देवी, ऋदिक और आदित्य कसाना, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

0: इसके साथ ही आज का गीत आपके नाम अब संपन्न हुआ। हमें रहेगा आपके फरमाइश का इंतज़ार। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है गीत आपके नाम airrampur@gmail.com। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9410087876। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है गीत आपके नाम, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या 244901। इसके साथ ही शाजिया परवीन को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
1: ईमेल फरमाइशे गीत आपके।
0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा

0: ये दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्याय के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। काराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। उससे पहले एक जरूरी संदेश।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: आशा।

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अब से थोड़ी देर यानी 1:15 पर सुनिए कार्यक्रम नात कव्वाली। कलाकार हैं शाहिदीन साबरी व साथी। कुमकुम आप सुनेंगे आज दोपहर 1:30 पर। आज दोपहर 2:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम आप सुनेंगे आज शाम 5:00।

युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे आज शाम 5:15 पर। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे आज शाम 6:10 पर। आज शाम 6:20 पर सुनिए किसानों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। इसमें आप सुनेंगे चर्चा, विषय है वीबी ग्राम जी योजना, बरसात में सब्जियों की देखभाल, कार्यक्रम लोक मंजरी, फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम, कृषि संकेत और मौसम का पूर्वानुमान। प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की है। समय याद रखिए आज शाम 6:20 पर। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे आज शाम 7:00। आज शाम 7:31 पर सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं अपूर्व भारद्वाज। अनुरोध गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल आप सुनेंगे आज रात 8:00। आज रात 9:30 पर सुनिए स्पोर्ट्स राउंडअप। प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की है। और हेलो रामपुर सजीव फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 10:00। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: और भी आज़ादी भारत की अलामत है अपना तिरंगा भी अहिंसा के निशान में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इलाकाई खबरें अनुप्रसारित की जाएंगी।
1: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जदीद इंतजामी तरबियत के लिए 464 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 22 एकड़ से ज्यादा रकबे पर बनाए गए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एकेडमी के जदीद तरीन नए कैंपस

0: प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET 2026 आज लखनऊ के मुख्तलिफ मराकज पर दूसरे दिन भी मुनक्किद हो रहा है। कल 4 जुलाई तक होने वाले इम्तिहान के लिए रियासत के मुख्तलिफ जिलों और दूसरी रियासतों से भी लोग लखनऊ आए हैं। इंतजामिया ने इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए

अभी आप सुन रहे थे नात कव्वाली। कलाकार थे शाहिदीन साबरी व साथी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुमकुम।

नमस्कार सखियों, कुमकुम कार्यक्रम के इस मनोरंजक अंक में आप सभी का स्वागत है। और एक थकान भरे दिन में शब्दों की राहत लिए मैं हूं आपकी सखी दीपशिखा। सखियों, थकान भरा दिन हमने इसलिए कहा क्योंकि गर्मी इतनी है कि जरा सा काम करने में पसीना आ जाता है और दोगुनी थकान महसूस होती है। वैसे बारिश हो जाने से उन लू के थपेड़ों से राहत ज़रूर मिली है जो यूपी में राजस्थान का एहसास दिला रहे थे। वैसे अपनी बढ़ती इच्छाओं को पूरा करने के चलते हमने ही एक हरे भरे संसार को रेगिस्तान जैसा बना डाला है। भीषण गर्मी, खून जमा देने वाली ठंड, अचानक मौसम में परिवर्तन, ये सब डीफॉरेस्टेशन यानी वनों की बहुत ज़्यादा कटाई के कारण ही हो रहा है और आज के समय में ये एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है वन महोत्सव। यह महोत्सव इस साल भी 1 से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है। तो सखियों, ये जो महोत्सव है, आप सोच रही होंगी कि इस ही समय क्यों मनाया जाता है, तो इसकी भी एक खास वजह है और वह ये कि हमारे देश में मानसून लगभग जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होता है, इसलिए इस समय लगाए गए पौधों के जीवित रहने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बिना किसी देरी के आप भी चुन लीजिए कोई बढ़िया सा पेड़ या पौधा अपने घर के गार्डन या छत पर लगाने के लिए और बन जाइए इस वन महोत्सव का हिस्सा। लेकिन पौधों का चुनाव ज़रा संभल कर कीजिएगा क्योंकि कुछ पौधे देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं पर नुकसान भी बड़ा करते हैं, जैसे रबर प्लांट या रनिंग बैम्बू यानी बांस का पौधा। इनकी जड़ें मोटी और काफ़ी गहराई तक फैलने वाली होती हैं जिस कारण ये अंडरग्राउंड वायरिंग और पाइपलाइन में रुकावट डाल सकती हैं। वहीं कुछ लोग अपनी खाली पड़ी ज़मीन में यूकलिप्टस का पौधा लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं ताकि उसकी लकड़ी बेचकर मुनाफा कमा लें। लेकिन इस पेड़ को लगाने से ज़मीन बंजर हो सकती है और आसपास के एरिया का अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे गिर सकता है। इसलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना ज़रूरी है और इसके लिए आप किसी जानकार की मदद भी ले सकती हैं क्योंकि मदद लेने से राह आसान हो जाती है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक महिला अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती है पर रकम ना होने की वजह से या फिर किसी डर की वजह से वे अकेले उसे शुरू नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में वे अपनी सोच वाली महिलाओं का एक ग्रुप या समूह बनाकर एक व्यवसाय शुरू कर सकती है और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी भारत का सहकारिता मंत्रालय ऐसे अनेक स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद कर रहा है ताकि वह बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन पाए जहां गांव की महिलाएं छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर नए नए बिजनेस जैसे हैंडीक्राफ्ट, अचार पापड़ बनाना, दूध का उत्पादन आदि की शुरुआत कर रही हैं। वहीं बड़े बड़े शहर में लोग मिलकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं जिसमें सब लोग मिलकर पैसे जमा करते हैं और बिना किसी बिल्डर के अपने लिए खुद सस्ते और अच्छे फ्लैट बनाते हैं। सखियों, सरकार इन स्वयं सहायता समूहों को अनेकों सुविधाएं प्रदान कर रही है जैसे डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण आदि। इतना ही नहीं, इन समूहों द्वारा बनाए सामान को बेचने के लिए शहरों में विशेष एग्जीबिशंस और सरस मेले भी लगाए जाते हैं। सखियों, कोऑपरेटिव यानी सहकारिता में बहुत शक्ति होती है और इसी सहकारिता की शक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता
दिवस, जो हमें ये संदेश देता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो सफलता भी सबकी होती है और खुशियाँ भी सबकी होती हैं। और अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के को शुरू करने के बारे में सोच रही हैं तो ये बहुत आसान है। बस आपके पास कम से कम 10 लोगों का समूह होना चाहिए जो साथ मिलकर सोसाइटी या समिति का नाम और काम करने के नियम तय करते हैं। इसके बाद सभी मेंबर्स के आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ और नियमों की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करके आवेदन किया जाता है। सरकारी जांच के बाद समिति को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है और फिर बैंक खाता खोलकर काम शुरू किया जा सकता है। सखियों, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़कर बहुत सी महिलाओं की जिंदगी बदली है। उनके द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम विदेशों तक एक्सपोर्ट हो रहे हैं और उन चीज़ों को देखकर लोग कल्पना कर रहे हैं उन जगहों की जहाँ वह बनी है, उस प्राकृतिक सुंदरता की जो वहाँ पर है। फिलहाल तो यहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, घने घने बादल आए हुए थे और अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि शायद बारिश भी हो रही हो। तो हम उन पहाड़ी वादियों में तो नहीं जा सकते, लेकिन इस गीत के माध्यम से उसकी सुंदरता को ज़रूर महसूस कर सकते हैं।

0: सखियों प्राकृतिक सुंदरता सबका ध्यान खींचती है, फिर बात चाहे पर्यावरण की हो या फिर किसी चेहरे की। तो अपनी त्वचा की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए केमिकल मुक्त प्रसाधनों का उपयोग कैसे करें, ये बता रही हैं श्रीमती अंशु नागर एक वार्ता के माध्यम से।
1: फैशन की खूबसूरती ट्रेंड में कई लोग नेचुरल ब्यूटी की चाहत रखते हैं, लेकिन कई बार धूप, धूल, मिट्टी, प्रदूषण के कारण स्किन का ख्याल रखना काफी मुश्किल टास्क लगने लगता है। आमतौर पर चेहरे का निखार बनाए रखने के लिए ज्यादातर महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। फेस को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाने के लिए कई तरह के फेस पैक, फेस मास्क, फेस वॉश, ब्यूटी क्रीम नहीं चूकते हैं लगाने से। लेकिन बता दें, चारकोल बेस्ड प्रोडक्ट भी इन्हीं में से एक है। चारकोल का इस्तेमाल स्क्रब, क्लिंजर, नहाने के साबुन जैसी कई चीजों में किया जाता है। चारकोल एक नहीं बल्कि सभी स्किन प्रॉब्लम को दूर करने में, नेचुरल ब्यूटी बरकरार रखने में सक्षम है। आइए हम आपको बताते हैं किन चारकोल प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं। चारकोल को स्किन के लिए बेस्ट क्लिंजर माना जाता है। ये फेस के पोर्स की गंदगी साफ करके ब्लैक हेड्स को जड़ से खत्म करने का भी काम करता है, बल्कि फेस पिंपल्स, एक्ने की समस्या निजात दिलाने में भी मदद करता है। कई बार प्रदूषण के चलते डर्ट पार्टिकल्स फेस पर चिपक जाते हैं, उनके कारण चेहरे पर इन्फेक्शन, रैशेस, रेडनेस और कील मुहासे की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में स्किन को प्रदूषण फ्री रखने के लिए आप चारकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल पोर्स के टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा ऑयल को साफ करने का बेहतरीन नुस्खा है। चेहरे के पोर्स में जमी गंदगी और बैक्टीरिया व एक्स्ट्रा ऑयल को खींच कर निकालना चारकोल की खासियत होती है। इसीलिए चारकोल को मैग्नेट यानी चुंबकीय गुणों वाला भी कहा जाता है। ऐसे में चेहरे को साफ रखने के लिए पहले चारकोल बेस्ड फेस वॉश से चेहरे को धोना न भूलें। चेहरे को चमकदार और फेयर बनाने के लिए चारकोल बेस्ड क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फेस को गहराई से साफ करके त्वचा के रंग में निखार लाने का काम करती है। एक्टिवेटेड चारकोल को ब्यूटी वर्ल्ड में बहुत बाद में लोकप्रियता मिली। कुछ सालों पहले तक इसके उपयोग के बारे में ज्यादातर कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। आज आपको मार्केट में एक्टिवेटेड चारकोल युक्त फेशियल क्लींजर, शैम्पू, साबुन, स्क्रब सब मिल जाएंगे। लेकिन एक्टिवेटेड चारकोल को इतना फेम क्यों मिला है? असल में माना गया है कि ये स्किन से बैक्टीरिया और गंदगी बाहर निकाल सकता है। यही कारण है कि मार्केट में मौजूद फेस मास्क में से ज्यादातर लोग एक्टिवेटेड चारकोल वाले फेस मास्क को ही चुनना पसंद करते हैं। दरअसल कई लोग चारकोल की तुलना कोयले से करने लगते हैं, मगर हम आपको बताते हैं कि चारकोल कोयला न होकर लकड़ी और नारियल की शेल से बना बारीक पाउडर है, जिसे एक्टिवेटेड चारकोल भी कहा जाता है। ऐसा हम क्यों कहते हैं, आइए आपको बताएं। एक्टिवेटेड चारकोल को तैयार करने के लिए चारकोल को कुछ तापमान पर गर्म किया जाता है। इसकी वजह से चारकोल के अंदर छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। इन छेदों की वजह से एक्टिवेटेड चारकोल की सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। अपनी इसी क्षमता के कारण वही केमिकल को और टॉक्सिन या विषैले तत्वों को सोखने में सक्षम हो पाता है। भले ही ये चारकोल एक प्रकार का है, लेकिन यह आउटडोर ग्रिल या तंदूर में इस्तेमाल होने वाले चारकोल से काफी अलग है। एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल क्लिंजर, फेस वॉश, स्क्रब, साबुन निर्माण में किया जाता है। असल में एक्टिवेटेड चारकोल से स्किन पर होने वाले फायदों पर बहुत कम वैज्ञानिक रिसर्च की गई है, इसीलिए चारकोल से होने वाले फायदे ज्यादातर व्यक्तिगत अनुभव पर ही निर्धारित है, न ही किसी खोज वैज्ञानिक आधार पर। एक्टिवेटेड चारकोल से शरीर में बैक्टीरिया और टॉक्सिन को सोखने की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए कुछ स्किन एक्सपर्ट मानते हैं कि चारकोल फेस मास्क स्किन से अशुद्धियों को बाहर निकालने का काम करता है। लोगों के अनुभव के आधार पर दावा किया गया है कि चारकोल फेस मास्क स्किन की गंदगी और बैक्टीरिया को हटाकर स्किन को हेल्दी और क्लीन करने में मदद करता है। चारकोल फेस मास्क हफ्ते में एक बार या फेस पैक लगाकर आप तमाम स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। वही अगर आप स्किन ऑयली है तो

0: हफ्ते में 2 बार चारकोल फेस मास्क और फेस पैक का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह बताना भी उचित होगा कि चारकोल फेस मास्क में किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल्स नहीं पाया जाता। यह एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। इसके साथ ही यह चेहरे को डिटॉक्सिफाई भी करता है और चेहरे से झुर्रियां भी कम करता है। फेस पर टैनिंग, ऑयल, पिंपल, एक्ने की समस्या हो जाती है, ऐसे में चारकोल बेस्ड प्रोडक्ट स्किन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अपने मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण चारकोल चेहरे को प्रदूषण और ऑयल फ्री करके नेचुरल ब्यूटी बरकरार रखने में मदद करता है। बरसाती मौसम में अक्सर कीड़ों के काटने की वजह से सूजन और खुजली की समस्या हो जाती है। लोगों ने ऐसा बताया है कि एक्टिवेटेड चारकोल किसी कीड़े के काटने पर डंक को बाहर निकाल सकता है और चारकोल को अगर घाव पर लगाया जाए तो वह कीड़े के काटने से फैलने वाले जहर को सोख कर उसके प्रभाव को खत्म कर देता है। देखिए दोस्तों, है ना कमाल का मैग्नेटिक एक्टिव चारकोल। अब हम बात करते हैं पॉल्यूशन से बचाव की। चारकोल का मास्क स्किन से टॉक्सिन को बाहर निकालता है और स्किन के ऑयल को कंट्रोल करता है। इस मास्क को इस्तेमाल करने से स्किन साफ और हेल्दी रहती है। चारकोल मास्क स्किन में सीबम को कंट्रोल करता है जो मुहासे और ब्रेकआउट की समस्या से निजात दिलाता है। यह मास्क स्किन की गहराई तक सफाई करता है और स्किन में चमक करता है, स्किन को कूल करता है। चारकोल मास्क आपकी त्वचा को गर्मी से कूल रखता है, साथ ही स्किन में चमक भी लाता है। चारकोल्स में एंटी फंगल और जीवाणुरोधक गुण भी होते हैं जो स्किन की रंगत में निखार लाने में असरदार साबित होता है। अगर आप वर्किंग हैं और आप लंबे समय तक काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है तो स्वाभाविक है मौसम की मार आपके चेहरे पर पड़ती है। सूरज की सीधे संपर्क में आने के स्किन ड्राई और डल हो जाती है। ऐसे में चारकोल मास्क स्किन को हेल्दी बनाने के साथ ही सूरज की हानिकारक किरणों के साइड इफेक्ट से भी बचाता है। आपका चेहरा नेचुरल ग्लो करने लगता है। बता दें कि पॉल्यूशन के साइड इफेक्ट से स्किन को बचाने में चारकोल से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया में एक्टिवेटेड चारकोल के नुकसान पर बहुत सी सीमित रिसर्च किए गए हैं। ऐसी ही स्थिति चारकोल फेस मास्क की भी है। आमतौर पर यह मास्क सुरक्षित दिखाई देते हैं, हालांकि इनके ज्यादा इस्तेमाल करने पर स्किन रूखी, लाल और सेंसिटिव भी हो जाती है। पहली बार चारकोल मास्क का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि यह प्रोडक्ट का पैच टेस्ट जरूर करें। पैच टेस्ट के लिए कोहनी के भीतरी हिस्से के स्किन पर थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाकर देखें। अगर लगाने के कुछ घंटे बाद ही स्किन के किसी किस्म की खुजली या लालिमा नहीं दिखाई दे तो आप संभवतः यह प्रोडक्ट स्किन पर लगाने के लिए एकदम सुरक्षित हैं। जब आप मार्केट में चारकोल मास्क खरीदने जा रहे हैं तो हमेशा उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और अपने स्किन टाइप्स का ख्याल रखना ना भूलें। जैसे अगर स्किन ऑयली है तो आप चारकोल मास्क खरीदें जिसमें क्ले मौजूद हो। क्ले स्किन पर मौजूद एक्स्ट्रा तेल को सोखने में मदद करती है। ये उन रोम छिद्रों में भी साफ कर सकती है जिसमें गंदगी भर जाने से एक्ने, पिंपल, मुहासे निकल आने का खतरा रहता है। अगर स्किन ड्राई है तो ऐसे चारकोल मास्क को चुनें जिसमें स्किन को नमी देने वाले तत्व हों, जैसे हायलुरोनिक एसिड, जैतून का तेल, जुजुबा ऑयल। अगर स्किन सेंसिटिव हो तो उसे ऐसे मास्क को कभी नहीं खरीदना चाहिए जिनसे बनने वाले फ्रेग्रेंस, ड्राई डाई, पैराबेस या अन्य केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो। यह स्किन पर रिएक्शन करके उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। चारकोल मास्क बनाने वाले विभिन्न ब्रांड अपनी विभिन्न वैरायटी से अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल निर्माण करते हैं। इसे खरीदने से पहले काफ़ी सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि आप स्किन टाइप्स के हिसाब से सही प्रोडक्ट को खरीद पाएं। एक्टिवेटेड चारकोल में न सिर्फ स्किन को फायदा पहुंचाने की क्षमता होती है बल्कि इसमें कई समस्याओं में भी फायदा पहुंचाने की क्षमता होती है। दोस्तों, यह था हमारा कमाल का प्रोडक्ट एक्टिवेटेड चारकोल। आशा करती हूँ आज की इस चर्चा में मैं आपको एक्टिवेटेड चारकोल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे पाई जो कि आपकी रोजमर्रा की जीवन शैली में काम आ सके। नमस्कार।
1: अभी आपने

सुनी केमिकल मुक्त प्रसादन विषय पर श्रीमती अंशु नागर की वार्ता। वैसे सखियों, ये जो मौसम बदल रहा है, बारिश गर्मी, इसमें सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, और आप ऐसा कैसे कर रही हैं ये जानने के लिए हमने फ़ोन पर बात करी एक सखी से। आइए आपको सुनवाते हैं।

0: नमस्कार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते मैम।
0: क्या नाम है आपका? रमा
1: रमा चंद्र
0: जी, कैसी चल रही है जिंदगी?
1: ठीक चल रही है मैम?
0: लेकिन मौसम जो है वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। आपने भी महसूस
1: यस
0: किया
1: मैम
0: होगा कि गर्मी से राहत तो मिली, बारिश हुई, लेकिन
1: जी।
0: उमस बहुत बढ़ गई है। आपको
1: यस
0: क्या
1: मैम,
0: लगता है?
1: यस मैम, बढ़ी गई है उम्र तो जी।
0: अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप हाउसवाइफ हैं या कामकाजी हैं?
1: आई एम अ टीचर मैम।
0: मौसम है इतना खतरनाक बन गया है जिसकी वजह से ना बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। अब
1: यस
0: आप
1: मैम,
0: बाहर जाती हैं, काम करती हैं। अच्छा, बच्चे हैं आपके, ये बताइए।
1: यस मैम, एक बेटा है,
0: अच्छा, बेटा है, कितना बड़ा है?
1: बेटा अभी नर्सरी में एडमिशन कराया है
0: अच्छा, उसका एडमिशन कराया है तो देखिए
1: जी
0: स्कूल भी
1: मैम।
0: जाने लगा होगा।
1: यही थोड़ी दिक्कत आती है जब मौसम चेंज होता है तो बच्चों
0: जी
1: की केयर ज्यादा बढ़ जाती है, करनी पड़ती है उनकी केयर।
0: बिल्कुल, तो बस आज
1: यस
0: हमारा
1: मैम,
0: भी यही विषय है कि
1: मैम
0: समय ये जो मौसम है, जब उमस भी है, गर्मी भी है और बच्चे भी हैं, खुद भी बाहर जाना है कामकाज के लिए, ऐसे में आपने और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल कैसे रखती है? आपका क्या तरीका है?
1: मैम, हम एक तो उनके कपड़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि कपड़े गीले नहीं पहने वो बिल्कुल भी।
0: जी
1: कपड़े उनके सूखे रहने चाहिए, ड्राई रहने चाहिए उनके कपड़े। और खाने के लिए, पीने में भी, खाने पीने में भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उबाल कर दिया वाटर को।
0: जी
1: और मैम फ्रूट्स वगैरह भी इस टाइप से देने होते हैं मौसम के हिसाब से।
0: जी आपने सही कहा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बच्चे जो हैं, भाई ये मौसम ही ऐसा है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके की चीजों की डिमांड करते हैं कि
1: यस
0: आज
1: यस
0: हमें
1: यस,
0: मैगी खानी है, आज हमें
1: ऐसी
0: कुछ
1: चीजों को
0: फास्ट फूड
1: अवॉइड
0: खाना
1: करना
0: है।
1: पड़ता है मैम। इस टाइम में ऐसी चीजों को,
0: हाँ तो
1: बाहर की चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना पड़ता है।
0: हाँ तो घर में ही आप उनकी ख्वाहिशें पूरी करती हैं कुछ
1: यस यस
0: बना
1: यस
0: के।
1: यस यस यस, यही जी
0: को भी भाई बाहर जाना है, गर्मी का मौसम है, तो अपना एक हम कहते हैं ना कि सेल्फ केयर रूटीन भी होता है। तो आपका
1: यस।
0: सेल्फ केयर रूटीन क्या है?
1: बाहर निकलने से पहले मैम एक तो छाता और अपना रेनकोट, ये दो चीजें बहुत जरूरी लेके चलते हैं हम, क्योंकि इस टाइम में पता होता नहीं है किस टाइम बारिश हो जाए। किस अब बच्चे के लिए भी रेनकोट ले रखा है।
0: अच्छा, और अब सेहत का ख्याल रखने के लिए आप क्या करती हैं?
1: एक तो सबसे पहले मैम हम बाहर की चीज तो खाते ही, पैसे भी नहीं लेते हैं बाहर की चीज तो। सुबह को नाश्ता बनाते हैं, जो नाश्ता बेटे को पसंद होता है अधिकतर वही बनता है। हम अपना तो बाद में देखते हैं, पहले उन्हीं का देखते हैं फिर अपने लिए बनाते हैं। अगर लगता है यही ले जा सकते हैं हम जो बेटे के लिए बनाया, तो वही ले जाते हैं
0: अच्छा, तो किस
1: लंच
0: तरह
1: में।
0: का आप जो सुबह का जो नाश्ता होता है वो किस तरीके का होता है?
1: ज्यादातर
0: अच्छा,
1: ना सूजी का उन्हें पसंद है, सूजी की चीजें, तो उन सूजी की चीजें ही बनाते हैं। और सूजी का एक चीला बनता है, उसमें हमें खीरे का यूज करने भी मिल जाता है, टमाटर का भी यूज करने मिल जाता है, हेल्दी चीजें भी डल जाती हैं उसमें, और पेट भराव भी हो जाता है, उससे पेट
0: और
1: भी भर
0: खाने
1: जाता है
0: में
1: बच्चे
0: भी
1: का।
0: जो है वो सुपाच्य है कि वो जल्दी से
1: सुपाच्य जी मैम,
0: पच
1: जी
0: भी
1: जी दही
0: जाता है।
1: वगैरह भी उसमें डल जाता है, तो
0: अच्छा,
1: इसलिए उसका यूज करते हैं। पोहा बना लेते हैं, पोहा में भी मूंगफली के दाने डलते हैं, वो हेल्दी फूड्स में आता है।
0: खाना जो बनाने का तरीका है या जिसे खाने का तरीका है वो क्या रहता है आपका?
1: मैम मॉर्निंग में हम ऐसे करते हैं कि दाल चावल, अगर हमें लगता है टाइम है तो दाल चावल दोपहर में खाए जाने वाली चीज हम सुबह में बना लेते हैं, दोपहर तक बस चलता है दोपहर का खाना। फिर रात में और नया जो खाना बनाना होता है रात में बनाते हैं।
0: अच्छा, तो आप जो है वो ताजा भोजन ही इस्तेमाल करती हैं
1: यस यस यस, ताजा ही भोजन इस्तेमाल करते हैं मैम
0: कि एक
1: जी
0: महिला जो होती है उसके लिए उसके बाल, उसकी स्किन बहुत
1: जी
0: ज्यादा
1: बाल
0: इम्पोर्टेंट
1: स्किन,
0: होते हैं।
1: यस
0: तो
1: मैम
0: आप अपनी जो बालों की और हम कहें कि त्वचा की सेहत का ख्याल रखने के लिए क्या स्पेशल करनी है इस मौसम में?
1: मैम हमने एक पेस्ट बना रखा है, उसमें ना चावल का आटा होता है
0: जी
1: उसको लिया और उसमें टमाटर और खीरा और दही ऐड किया, उस टाइप का पेस्ट बना के फ्रिज में स्टोर करके रख लेते हैं कुछ। उसे फेस पे लगा के थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं और 15 मिनट बाद हमें उस फिर धो देते हैं
0: एक सलाह जो आप हर
1: जी।
0: माँ को देना चाहेंगी किस मौसम में वो भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे उसके लिए, तो क्या होगी वो सलाह?
1: फर्स्टली तो मैम सफाई रखे, सेकेंडली अपने फ्रूट्स जो खाना है उनका ध्यान रखे कि वो साफ सुथरे हों और हेल्दी हों। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं थोड़े, क्योंकि गर्मी है इस टाइम, ज्यादा तो ले नहीं सकते ड्राई फ्रूट्स। मखाना होता है हमारा, उसको फ्राई करके ले सकते हैं, क्योंकि वो गर्म नहीं होता, वो ठीक होता है, नॉर्मल होता है, नाश्ते में वो ले सकते हैं, चने ले सकते हैं। और तीसरी सलाह मैम, कपड़ों का ध्यान रखें, कपड़े नहीं रहें गीले, गीला रहेगा तो इससे इन्फेक्शन होने का डर रहेगा, इसलिए कपड़ों के सुखाने का पूरा ध्यान रखें।
0: रमा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे सुझाव

दिए कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सखियों देखिए, कुछ हमारी सखियाँ ऐसी हैं जिनके बच्चे जो हैं वो अब थोड़े बड़े हो गए हैं, कॉलेज गोइंग हो गए हैं, तो ऐसे में वो सोचती हैं कि चलो घूमने जाना है तो किसी की राह क्या देखनी, अकेले ही चलते हैं। तो अगर आप भी सोलो ट्रैवल करने के बारे में सोच रही हैं तो आज की सोलो ट्रैवल टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। तो हमारी पहली टिप तो यही है कि आप जहाँ कहीं भी घूमने जा रही हैं उस जगह के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। वहाँ पर घूमने की कौन कौन सी जगह हैं, वहाँ पहुँचने के साधन कौन कौन से हैं, कितना समय लगता है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में, ताकि आप दिन की शुरुआत ऐसे समय से करें कि सनसेट से पहले अपने होटल वापस आ जाएं। टिप नंबर 2, होटल की बुकिंग एडवांस में कर लें। और हाँ, बुकिंग करते समय उसके रिव्यूज़ और रेटिंग हमेशा ध्यान से चेक कर लें, ताकि आपको सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई समस्या ना हो। टिप नंबर 3, पैकिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि लगेज आप ही को उठाना है, तो थोड़ा आसान करें अपने इस काम को और इंजॉय करें घूमने को, सामान थोड़ा कम ही रखें। टिप नंबर 4, अपने साथ कैश कम लेकर जाएं और सारे पेमेंट्स कार्ड से या फिर किसी पेमेंट ऐप से करें, ताकि आपको कैश की ज़्यादा देखभाल ना करनी पड़े। और हाँ, 2 सिम ज़रूर लेके जाइएगा, जिससे कि अगर नेटवर्क चला जाता है एक सिम का तो आपकी कनेक्टिविटी बनी रहती है। फिलहाल हमें आपसे विदा लेनी होगी, अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपनी सखी दीपशिखा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: It provides access to both the union budget and the state budget, making governance more transparent and accessible. Under the leadership of our Prime Minister, all government ministries have been brought together under the digital parliament. It enables citizens to stay informed about the parliamentary proceedings and consequently debates and discussions from across the country.
1: The Unique Identification Authority of India, UIDAI, has enabled free email updates in Aadhaar directly through the Aadhaar app. This move is effective from the 1st of July for a period of 6 months. The Ministry of Electronics and IT informed that within 2 days of the new service available on the Aadhaar app, over 2.5 lakh people have updated their email address. The ministry said linking email with Aadhaar helps in receiving real-time email notifications whenever an Aadhaar authentication request is executed. So far, over 4 million people have updated their mobile numbers using the new Aadhaar app. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. India has stepped up its humanitarian assistance to earthquake hit Venezuela under Operation Amistad. Sharing pictures of the ongoing medical relief efforts on social media, the Ministry of External Affairs said the Army Field Hospital continues to provide medical care to affected communities in Venezuela. The Indian Embassy in Venezuela has said India's humanitarian relief efforts in the South American nation have received widespread acclaim from the public for its professionalism and quality of service. Venezuela's acting President Elcy Rodriguez has declared 7 days of national mourning as the death toll from the powerful earthquakes that struck the country on the 24th of June rose to 2,595, with more than 12,000 people injured and 189 buildings destroyed. Two powerful earthquakes measuring 7.5 and 7.2 magnitude struck north of Caracas last week, leaving widespread devastation. In Ukraine, 27 people have been killed and 90 others were injured in massive drone and missile strikes by Russia on capital Kiev. Damage was recorded in 30 locations across Kiev, mainly residential buildings and civilian infrastructure. Russia's Defense Ministry said in a statement, the deadly bombardment on Wednesday night was in response to Ukraine's long-range strikes on its civilian infrastructure. Ukraine's increasingly frequent and large-scale attacks on Russia, described by President Volodymyr Zelensky as a 40-day blitz, have primarily targeted oil refineries, triggering a fuel crisis in Russia, more than 4 years after the war between Kiev and Moscow began. At least 40 people were killed and 8 others injured after a passenger coach plunged into a deep ravine on the Shirani-Zob highway in Pakistan today. The accident took place in the Danasar area near the border of Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. According to the Medical Emergency Response Center, 40 bodies have been recovered from the crash site. The injured have been shifted to the trauma center in Zob for treatment. The Inter-Meteorological Department has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and West Madhya Pradesh till tomorrow. It has also predicted thunderstorms accompanied by lightning over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbh. More from our correspondent.
2: According to IMD, heavy to very heavy rainfall is expected over Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Gangetic West Bengal, Karnataka, Jammu and Kashmir, Ladakh, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Telangana and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Chhattisgarh, coastal Karnataka, East Madhya Pradesh, East Rajasthan, Himachal Pradesh, Keralam, Mahi, Uttarakhand and Vidarbha. For the day, the weather agency noted that thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds is likely to prevail over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, Rajasthan, Andaman and Nicobar Islands, Gujarat and Jharkhand till tomorrow. Meanwhile, the Met Department has said that Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya will experience hot and humid conditions till Monday. With Soumya Sharan, this is Vishnu P.S. for Akashvani News, Delhi.
1: Heavy rain continued in several parts of Maharashtra today, while Mumbai witnessed rain for the fourth consecutive day. The Indian Meteorological Department has issued an orange alert for Mumbai for the next 3 days, with more than 150 millimeters of rainfall recorded in parts of the city during the last 24 hours. The Brihanmumbai Municipal Corporation has kept its emergency teams on alert. With continuous downpour in the metro city, waterlogging was reported from low-lying areas. Central and Harbour Railway services were delayed by 10 to 15 minutes. Western Railway services remained normal. Heavy rain also continued in the Konkan region. In Ratnagiri district, an average of 69 mm rainfall was recorded during the last 24 hours. Water levels in major rivers have risen and the Jagburi River in Kher Taluka in Ratnagiri district has reached 4.9 meters, close to its warning level of 5 meters. Authorities are monitoring the situation. Meanwhile, as a precaution during the active monsoon season, the 5 battalion of the National Disaster Response Force has pre-positioned rescue teams across vulnerable districts in Maharashtra and Goa. Teams equipped with flood rescue equipment and trained personnel have been deployed to ensure a quick response to any rain-related emergencies. With Nivedita's report, Anuja Kumar, AIR News. In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
4: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
5: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
6: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
4: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में जिसे विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
3: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कारकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
8: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
3: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
9: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
10: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
11: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0

0: से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।

0: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
1: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
0: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
1: श्रोताओ, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओ, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
0: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
1: श्रोताओ, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
0: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है।
1: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप हैं। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
0: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते।
1: जी
0: धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
1: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है,
1: जी
0: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए, और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता
3: है ना साथियों? अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ।
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यहीं हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आधिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
7: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
7: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
7: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
6: मामा जी, मामा जी।
8: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
6: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
8: ये तो बहुत अच्छी बात है
6: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
8: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
6: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
8: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
6: अच्छा, भोज वृक्ष।
8: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
6: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
8: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
6: अच्छा।
8: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
6: ये किस भाषा में है?
8: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने, ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
6: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
8: हाँ हाँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
6: अच्छा।
8: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना, इसको उकेरना भी कहते हैं।
6: अच्छा।
8: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के

0: पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे, जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी।
3: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
5: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई

0: मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस, वहीं खड़े रहो। शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा, वाह। और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए। कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
3: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के

0: सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
1: अलख निरंजन।
2: ए साधु बाबा।
1: अब अच्छा,
2: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
1: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं
2: क्या?
1: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
2: है?
1: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
2: अच्छा,
1: हाँ,
2: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है। बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: और श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। इन्हीं मीटर्स पर शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अब से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारती मुंबई की प्रसारण सेवा जारी रहेगी। मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती की स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं, और बताइए आज किस सखी से बात हो रही है?

0: अरे नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना, वैसे मैं बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हुई अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है, तो बताइए हर्षा जी क्या करती हैं आप?
1: देखिए वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ,
0: जी
1: मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ। मैं इंग्लिश हिंदी मराठी में ट्रांसलेशन करती हूँ।
0: जी, ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया। ये
1: जी
0: उन्हीं के लिए संभव है जो ये दो तीन भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी जी
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है।
0: जी
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
0: जी जी
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया, तो
0: जी
1: मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं।
0: जी रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
1: रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल, और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए अगर फिलोसफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
0: ये तो बहुत सटीक बात की आपने, और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात करके।
1: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए,
0: जी
1: वो मैं सुनना चाहूंगी।
0: जी जी तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: आते

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आलिया बानो बोल रही हूँ, गुजरात से। हाँ
0: आलिया बानो गुजरात से? जी आलिया बानो, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: टंकी नवा के पड़ती हूँ और घर पर ही रहती हूँ, और घर के जो काम होते हैं ना छोटे मोटे वो सब करवा देती हूँ।
0: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है कहीं घूमने फिरने, आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
1: हाँ जाती हूँ ना परिवार के साथ ही।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है,
0: हाँ वो
1: मुझे
0: तो
1: दिखाई
0: है
1: नहीं देता है ना।
0: जी, ये तो सहयोग
1: हाँ
0: परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये
1: हाँ
0: मुझे जी
1: मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है, मेरी दीदी है ना तो मेरी अम्मी, वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है मुझे सच्चे काल, मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ, मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ जाना
0: जी
1: है कैसे जाना है, मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना कुछ काम करना होता है तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं, यानी कि आप कदम गिन लेती हैं, या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाएं तरफ ये है दाएं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
1: नहीं मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है,
0: जी
1: मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ना
0: जी
1: ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ, हमारा
0: अच्छा
1: एक माले का घर है ना वहाँ कर रही हूँ, तो
0: जी
1: मैं
0: जी
1: नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ।
0: अच्छा, मतलब आप पहली
1: चल
0: मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर
1: हाँ
0: पाती हैं ये सब?
1: अब थोड़ा आप कर लेती हूँ, एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है किस तरह जाना है किस तरह आना है तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं, आप इसको किस
1: बहुत
0: तरह से
1: खुश,
0: लेती हैं?
1: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, वैसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे है उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ
0: जी
1: लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ, कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ सहेलियों के साथ घूमती है तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ
0: जी
1: ही क्या हो रहा है, लेकिन
0: जी
1: फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती, मैं ऐसा
0: देखिए
1: सोचती हूँ कि ऊपर वाला जिस हाल में रखे उस हाल में ले
0: जी
1: लेना
0: जी
1: चाहिए।
0: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है
1: हाँ
0: फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। आपकी बातें सुन के
1: हाँ
0: हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए, अंदाज फिल्म का, अंदाज
0: अंदाज फिल्म
1: फिल्म है
0: का
1: ना।
0: जी
1: हाँ आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मुझे दिलकश मुलाकात का।
0: बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से। आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ,
0: क्या
1: एक
0: बात
1: शायरा
0: है
1: हूँ
0: जी।
1: जी, एक कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरें कशिश, मेरा पेन
0: जी,
1: नेम है लहरें,
0: पेन नेम है
1: जो
0: आपका लहरे।
1: लहरें, और मेरी किताब जो प्रकाशित हुई है उसका नाम है लहरें कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी,
0: जी
1: थोड़ा बहुत लिखती थी। शुरू में चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू।

0: किया।
1: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
0: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
1: जी।
0: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना वो अध्याय एक जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
0: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस हैं,
1: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
0: जी, मुंबई की नहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
1: ये बात
0: क्या मैं सही बोल रही हूँ?
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो
1: जी
0: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ?
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
1: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हों, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए।
0: जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
1: जी,
0: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यूं दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे ये लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है किनारा भी तुझमें, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही
0: प्यारा।
1: हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी, और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
1: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोकराव देशमुख है। मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं खाना बनाने का काम करती हूँ
0: अच्छा, यानी टिफिन
1: घर में।
0: सर्विस।
1: हाँ, घर में खाना बनाने को जाती। मैं रोटी ही बनाती सिर्फ। 4-5 घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे
1: हाँ,
0: जाके।
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती, फिर
0: अच्छा,
1: बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर
1: हाँ,
0: देती हैं कि
1: सब
0: आप
1: जॉब करने
0: जाकर।
1: वाले हैं ना यहाँ पे,
0: जी
1: टीचर
0: जी
1: है तो टीचर क्या ही सब काम करती मैं।
0: जी और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो
1: नहीं
0: जाती हैं।
1: रुके।
0: जी
1: हाँ, बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का। थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी,
0: जी
1: उतनी कमाते बस। ज्यादा करके भी अपने तबीयत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही रहते हैं। माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए। हाँ, तो भाई की ही रहती मैं।
0: तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और
1: खुशी
0: सकारात्मक
1: के साथ
0: सोच रख के
1: गुजरते।
0: आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती हैं। और
1: मैं मेरी सहेली के नाम लेती।
0: जी ले लीजिए।
1: हाँ, बबीता ठाकुर और एक शहना शेख है।
0: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन
1: हाँ
0: सा
1: हाँ
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना।
0: चलिए तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आ रहा है अभी, गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी, देखिए प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत पसंद है लेडी, और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
0: जी, हम आपकी खुशी
1: बयां
0: को
1: नहीं कर सकती।
0: जी आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, किससे बात हो रही है
1: हेलो
0: हमारी?
1: जी, मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ, भोपाल से। जी
0: सुशीला महेश्वरी, भोपाल से।
1: मैं
0: जी सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो
1: जी
0: पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ, मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद हैं आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी, विविध भारती से
1: जी,
0: ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विवि भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं। जी
0: जी, तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म,
0: जी,
1: ये
0: बहुत
1: वाला
0: ही
1: गाना सुनना है मुझे।
0: जी, बहुत सुंदर गीत है। तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते। किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, शहर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ, एक तरह से गृहिणी हूँ।
0: तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादातर।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ मैं
0: जी
1: जिंदगी में।
0: जी तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेजे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे,
0: कहाँ से बात कर रही हैं वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ,
0: वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी?
1: 7।
0: 7th की।
1: हाँ,
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो
1: हाँ
0: सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती हैं?
1: हाँ,
0: क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है।
0: कौन सा?

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही है विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं?
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजय जी, मैं ये जानना
1: हाँ?
0: चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका क्या अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया। जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए,
0: जी ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
1: और
0: की।
1: इतना उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ, मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
0: क्योंकि आप
1: और
0: टीचर।
1: उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो
0: जी,
1: अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई।
0: हाँ,
1: नहीं, ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं,
0: जी,
1: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख
1: हाँ।
0: और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
1: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं।
0: जी
1: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं, और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं,
0: जी
1: इतना तोड़ डालते हैं कि ताउम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते।
0: जी
1: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं, लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है।
0: जी
1: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें।
0: जी, यही हम जानना चाहते हैं, और हमारे सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप बताना चाह रही है ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
1: हाँ, नहीं ठीक है। तो मेरा मानना है, हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख।
0: जी,
1: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, और न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है, तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा।
0: जी, यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए।
1: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा, और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं।
0: जी बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
1: ममता फिल्म का, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
0: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, शांति
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: राजपूत से दी,
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर से।
0: जी शांति जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: ठीक है जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल
1: कुछ
0: रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ, घर ही
0: जी
1: रहते हैं, कुछ
0: जी
1: नहीं।
0: हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउस वाइफ हैं, लेकिन हाउस वाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आपको?
1: और मैम, मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता
1: हाँ
0: रहता है।
1: मैं, हाँ मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से, वो सुनती रहती, काम भी करती रहती
0: हाँ,
1: हूँ।
0: तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना
1: हाँ जी,
0: जी। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, निकाह पिक्चर का
0: चलिए सुनते
1: जी।
0: हैं आपकी पसंद
1: हाँ
0: का ये गीत।

0: हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।
1: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी ना मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा। वो उस अंधेरे की आदी थी, वो इसे जानती थी, वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तानकर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली अल्हड़ चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहां तक एक पगडंडी पहुंचती थी। यहां लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल अस्पताल जैसे सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हां, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर यह उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहां की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहां पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करते। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती। किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती, और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी मां को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां मां बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हां, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी।

दांत पिलकाती रहती है उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहां वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहां मुंह छुपाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आंच होती है।

नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर श्रृंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाती। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

0: चकमक सारे दो तारे नौ तारे सौ तारे चकमक सारे हर तारा है शरारा।
1: नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता उर्मिला मंदोदरी अहिल्या द्रौपदी कुंती गांधारी राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य संगीत और आकर्षण की स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा, इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा, रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक, प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती, राग रंग में मन नहीं लगता, तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागो थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगे, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ, दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहां धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाठ बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अनमने

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फल ही रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

वो इस वक्त आकाश की याद में है, बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरजते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में, हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा, तो चंदा के बिना आकाश कैसा? वे प्रेम में थे या उनके साथ पूरी प्रकृति ही प्रेम

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहां जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में, वो सोचने लगता है। स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भ्रम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब, कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है, कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझकर थोड़े ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है। प्रेम निस्सीम है, निस्सीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है। उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है,
कभी लगता है उसका मन सही कहता है, अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। उनके पास बातों का खजाना था, कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता, उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वहीं ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहां से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वही दोनों लहूलुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं? वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दानगी छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई मां अपनी बेटी को यह किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी, वहीं से जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान, सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई, पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी

के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रहीं, फिर कहानी में लौट आईं, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हों। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी। उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उग आता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। शाम के 5 बजे हैं मीडियम वेव और एफएम पर अब हमारी दूसरी सभा के प्रसारण एक साथ आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम। आश्रम कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। श्रोतों, तपती गर्मी से झुलसती धरती, धूल से सने पेड़ पौधे और पसीने से बेहाल लोग, और अचानक आसमान में काले घने बादलों का डेरा जमा लेना, ये एक ऐसा दृश्य है जिसे देखकर हर कोई खुश हो जाता है, हर एक का दिल बाग बाग हो उठता है। बादल और बरसात का रिश्ता सिर्फ भूगोल की एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये धरती और आसमान के बीच का एक बेहद खूबसूरत प्रेम पत्र है। जब आसमान में मटमैले स्लेटी और गहरे काले बादल उमड़ते घुमड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जादूगर अपनी जादुई चादर फैला रहा हो। ठंडी हवा के झोंके जब इन बादलों का पैगाम लेकर आते हैं तो मानो पूरी कायनात एक सुर में गा उठती है।

आप सुन रहे कार्यक्रम आज शाम अखिलेश सक्सेना के साथ। श्रोताओं, बरसात से पहले बादलों का आना किसी उत्सव की तैयारी जैसा होता है। बेसब्री से इंतजार होता है बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक का, जो कि दिल में एक अजीब सा रोमांच भर देती है। हवा की गति तेज हो जाती है, जो हमें ये बताने आती है कि तैयार हो जाओ, बरखा रानी आने वाली है। बारिश से ठीक पहले एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है, जैसे पूरी प्रकृति सांस रोककर उस पहली बूंद का इंतजार कर रही हो। महक धरती की और मयूर का नाच, यानी कि जैसे ही बादलों का सब्र टूटता है, आसमान से अमृत की बूंदें टपकने लगती हैं। और बारिश की पहली बूंद जब सूखी धरती पर पड़ती है, तो उससे उठने वाली सौंधी खुशबू दुनिया के किसी भी महंगे परफ्यूम को मात दे सकती है। ये महक बताती है कि धरती की प्यास बुझ चुकी है। बरसात आते ही प्रकृति का रूप पूरी तरह बदल जाता है। पेड़ों के पत्ते धुलकर एकदम हरे भरे और चमकदार हो जाते हैं। बागों में मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं और मेंढकों की टर टर पानी के संगीत में अपनी धुन मिलाने लगती है। बच्चे घरों से बाहर निकलकर पानी में कागज की नाव तैराने लगते हैं और बड़ों का मन चाय पकौड़ों की तरफ खींचा चला जाता है। बादल और बरसात का हमारे मूड से बहुत गहरा नाता है। किसी के लिए ये रोमांस और कविता का मौसम है, तो किसी के लिए पुरानी यादों की खिड़की खोल देता है। खिड़की पर टपकती हुई बूंदों को देखना और बैकग्राउंड में कोई धीमा संगीत सुनना इंसान को एक अलग ही सुकून की दुनिया में ले जाता है। किसान भाइयों के लिए तो ये बादल सीधे आसमान से बरसता हुआ सोना है, जिससे उनकी फसल को जीवन मिलता है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बादल और बरसात हमें ये सिखाते हैं कि हर कड़कती धूप के बाद ठंडक और हर मुश्किल के बाद खुशहाली निश्चित है। ये मौसम हमें जिंदगी को खुलकर जीने और प्रकृति के इस अनमोल उपहार के प्रति आभार व्यक्त करने का मौका देता है। तो अगली बार जब खिड़की के बाहर बादल गरजें, तो सब काम छोड़कर बस कुछ पल उस झमाझम बरसते पानी को देखिएगा और महसूस कीजिएगा कि प्रकृति हमसे कितनी मोहब्बत करती है।

तो श्रोताओं, मानसून का आगमन हो चुका है। वो बात अलग है कि आज दिन में उमस ज्यादा रही रामपुर के आसपास, लेकिन मानसून का आगमन हो चुका है। आनंद लीजिए इस बरसात का और खुश रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। आज का आज शाम कार्यक्रम समाप्त करने की अब अखिलेश सक्सेना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज शाम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। अब सुनिए युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्ते आदाब गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी तरुणा जोगेश
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त खुशी।
0: आशा करते हैं चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए और दिल में लिए एक नई उमंग आप सभी सुन रहे होंगे हमारा आज का कार्यक्रम। तो चलिए हमेशा की तरह आप करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत आज के सवाल के साथ। तो साथियों, हमारा आज का सवाल है, मानव शरीर में किस हड्डी को फ्लोटिंग बोन कहा जाता है?
1: दोस्तों सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, मानव शरीर में किस हड्डी को फ्लोटिंग बोन कहा जाता है?
0: और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर और आज अपलोड किए गए सवाल के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने अपने जवाब। सवाल का सही जवाब और सही जवाब देने वाले अपने सभी श्रोता साथियों के नाम हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में।
1: दोस्तों आज दिन है शुक्रवार और आज के शुक्रवार में हम आपके लेकर आए हैं आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट कार्यक्रम चिट्ठी आई है। तो जो भी हमारे श्रोता साथी अपने प्यारे प्यारे लेटर्स के माध्यम से हमसे अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं, वे हमें अपना प्यारा प्यारा लेटर भेज सकते हैं मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
0: अच्छा खुशी, कहते हैं अगर बदलाव लाना है तो शुरुआत खुद से करनी चाहिए, लेकिन क्या हम सब ने कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की एक छोटी सी आदत हमारी धरती के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है?
1: हाँ तरुणा, हम आज बात कर रहे हैं उस प्लास्टिक बैग की जिसे हम कुछ मिनटों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह हमारी धरती पर सैकड़ों साल तक अपना असर छोड़ जाता है।
0: बिल्कुल, जरा कल्पना कीजिए साथियों, अगर धरती माँ हमसे कुछ कह पाती तो शायद वो यही कहती कि मुझे इस प्लास्टिक बैग के बोझ से आज़ाद कर दो।
1: और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बदलाव के लिए किसी बड़े अभियान की नहीं, बस एक छोटी सी आदत की ज़रूरत होती है। जब भी घर से निकलें अपने साथ कपड़े या जूट का थैला लेकर निकलें।
0: तो दोस्तों आज का हमारा विषय सिर्फ एक दिवस मनाने तक सीमित नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी सोच और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल, और यही छोटी सी आदत धीरे धीरे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, इसलिए हर साल 3 जुलाई को प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है।
0: तो आइए आज प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर हम सब अपने आप से एक वादा करें, प्लास्टिक बैग को कहेंगे ना, कपड़े का थैला अपनाएंगे हाँ,
1: स्वच्छ पर्यावरण बनाएंगे, धरती माँ का मान बढ़ाएंगे। साथियों अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के उस पार है आपके लिए बहुत कुछ खास।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार आप फिर से जुड़ गए हैं अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी से। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट कुछ खास है आज के ओर और जानते हैं कि आज का दिन क्यों है इतना खास।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
3: साथियों, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते बनाते हैं। और जब बात महिला सशक्ति

0: करण, शिक्षा और समान अधिकारों की हो तो एक नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, डॉक्टर हंसा मेहता। आज उनकी जयंती पर आइए उनके प्रेरणादायक जीवन को याद करें।
1: 3 जुलाई 1897 को गुजरात के सूरत में जन्मे डॉक्टर हंसा मेहता एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद, लेखिका और महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक थी।
0: उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की और आगे इंग्लैंड में पत्रकारिता एवं समाज शास्त्र का अध्ययन किया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी और कई बार जेल भी गईं।
1: लेकिन उनका योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं रहा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने एक ऐतिहासिक बदलाव कराया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में पहले लिखा गया था, ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। डॉक्टर हंसा मेहता ने इस पर आपत्ति जताई और इसे बदलकर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ताकि महिलाओं और पुरुषों दोनों के समान अधिकार स्पष्ट रूप से सुनिश्चित हो सके।
0: वे भारत की संविधान सभा की सदस्य भी थीं और महिलाओं की शिक्षा, समान अधिकार और सामाजिक सुधार के लिए जीवन भर कार्य करती रही।
1: उन्होंने भारत के सह शिक्षा वाले विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव भी प्राप्त किया, जब वे महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा की कुलपति बनी।
0: उनका विश्वास था कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि समाज को बदलने की शक्ति भी देती है। शायद यही कारण है कि आज भी उनका जीवन हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समानता, शिक्षा और मानव अधिकारों में विश्वास रखता है।
1: तो आइए डॉक्टर हंसा मेहता की जयंती पर हम सब शिक्षा, समानता और मानवता के मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लें, जिनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो साथियों आइए आप सुनते हैं हंसा मेहता जी के इन्हीं विचारों पर आधारित एक गीत।

0: दोस्तों, ये था हमारा सेगमेंट कुछ खास है आज।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के अपने स्पेशल सेगमेंट कार्यक्रम चिट्ठी आइए का। तो दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे लेटर्स का जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ में मौजूद हैं अवधेश कुमार गौतम जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम चिट्ठी आइए में।

0: तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट चिट्ठी आइए का। तो चिट्ठी आई है सेगमेंट में, हमें सबसे पहली चिट्ठी प्राप्त हुई है पुराना गंज रामपुर से भास्कर और बाला देवी जी की ओर से। ये लिखते हैं, अवधेश सर जी को और साथ ही तरुणा जी और खुशी जी को भी हमारा नमस्कार। हमें कार्यक्रम 30 जून 2026 को भारत के गलियारे से इमारतें बोलती हैं में कांगला किला और घुमकड़ी में मरीना बीच की जानकारी नतांश जी और मेघा ठाकुर जी ने प्रस्तुत की, बहुत पसंद आई। और कल का फेसबुक लाइव मौसम आम नव्या जी और भारती जी का काफी अच्छा लगा।
1: धन्यवाद खुशी और धन्यवाद तरुणा। और सबसे पहले सभी सम्मानित श्रोताओं को नमस्कार और धन्यवाद, इतनी अच्छी अच्छी अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी दुआएं, अपना प्रेम पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचाने के लिए। पहली चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है पुराना गंज रामपुर से भास्कर और बाला देवी जी की तरफ से। आप बहुत समय से रामपुर आकाशवाणी के साथ जुड़ी हुई हैं और काफ़ी टाइम से हमारा जो युववाणी कार्यक्रम है उसकी भी नियमित श्रोता हैं। और आपने कल का प्रोग्राम सुना और जिसके अंतर्गत फेसबुक लाइव सेगमेंट प्रसारित हुआ जिसका टॉपिक था मौसम आम और उससे जुड़ी हुई यादें। आपने वो प्रोग्राम सुना, नियमित रूप से आप कार्यक्रम को सुनती हैं, आपको फेसबुक लाइव का सेगमेंट काफ़ी पसंद आया और जो युववाणी के प्रेजेंटर्स हैं उनकी प्रस्तुतियाँ भी आपको काफ़ी पसंद आई हैं जिनका नाम आपने अपने पत्रों में मेंशन किए हैं। भारत के गलियारे से इमारतें बोलती हैं सेगमेंट भी आपको बहुत पसंद आया, घुमक्कड़ी के अंतर्गत मरीना बीच पर जो जानकारी थी वो भी आपको काफ़ी पसंद आई है। युववाणी कार्यक्रम सुना आपने और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक पहुँचाई, इसका आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आगे भी यही कामना है कि आपके विचार, आपका स्नेह पत्रों के माध्यम से हम तक नियमित रूप से पहुंचते रहेंगे और पत्रों को पढ़ने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले पत्र की ओर रुख करते हैं।
0: सर, हमें अगला पत्र भेजा है नानका रामपुर से कलन ठेकेदार और वसीम ठेकेदार जी ने, और ये लिखते हैं, कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारा आदाब। आकाशवाणी रामपुर के सभी कार्यक्रम अच्छे जा रहे हैं। सोमवार को संत कबीरदास जी पर चर्चा में बेहद पसंद आई। आफताब साहब और कशिका मैडम द्वारा कबीरदास जी के दोहे का उच्चारण अच्छे से किया गया। हम अपने बच्चों को भी कार्यक्रम सुनवाते हैं जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि हो। ऐसे कार्यक्रम की हमारे युवा समाज को विशेष जरूरत है। हमें काम से फुर्सत नहीं मिलती इसलिए चिट्ठी नहीं लिख पाते। आज मौका मिला तो चिट्ठी लिख रहे हैं। आदाब।
1: बेहद खुशी हुई कि आज आपकी चिट्ठी हम तक पहुंची और इस चिट्ठी में आपके विचार भी हम तक पहुंचे हैं। ये चिट्ठी है नानकार रामपुर से कल्लन ठेकेदार जी और वसीम ठेकेदार जी की तरफ से, जो कहते हैं कि आप युववाणी कार्यक्रम नियमित सुनते हैं लेकिन वक्त न होने की वजह से चिट्ठी नहीं लिख पाते हैं। आपने सोमवार को जो संत कबीर दास जी पर चर्चा प्रसारित हुई थी युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत वो काफ़ी पसंद आई है और जो भी इसके प्रेजेंटर्स थे उनकी भी आपने सराहना अपने पत्र में लिखकर भेजी है और आशा करते हैं कि इस मंच के माध्यम से उन सभी प्रेजेंटर्स और पूरी युववाणी टीम तक ये सराहना आपकी ज़रूर पहुंच रही होगी। आप नियमित रूप से कार्यक्रमों को सुनते हैं, युववाणी कार्यक्रम आपने सुना और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक भेजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अगली चिट्ठी देखते हैं हमारे किस श्रोता साथी की तरफ से हम तक पहुंची है।
0: इसी क्रम में हमें अगली चिट्ठी प्राप्त हुई है इरफान खान पीडब्ल्यूडी वाले और शाहिदा परवीन जी की ओर से, थाना 3 ऊंची मस्जिद से। ये लिखते हैं, युववाणी कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, सभी कार्यक्रमों तथा सर अवधेश कुमार गौतम साहब का दिल से शुक्रिया। साथ ही इन्होंने कई सारे प्रेजेंटर्स के नाम भी शामिल किए हैं, मैडम मोनिका कुमार, मैडम इकरा शाहिद, मैडम शिखा जायसवाल, मैडम हुमा सलीम, मैडम फरहीन समद, मैडम तरुणा जोगेश, मैडम फातिमा खान, मैडम कशिका अग्रवाल, मैडम मेघा ठाकुर भारती, मैडम नव्या अग्रवाल, मैडम खुशी, मैडम उमा यादव, सर असरार मियाँ, सर नतांश अग्रवाल, सर स्वास्तिक मिश्रा, सर हर्ष, सर आफताब, सर हिमांशु वर्मा।
1: आप हमारे आकाशवाणी रामपुर के नियमित श्रोता और बहुत पुराने श्रोता तो हैं ही, और साथ के साथ आप युववाणी कार्यक्रम के भी बहुत पुराने श्रोता हैं और बहुत ही डेडिकेटेड श्रोता हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में पहुंचती है और इसी प्रकार आज युववाणी कार्यक्रम में भी आपके पत्र हम तक पहुंचे हैं। ये पत्र हमें कुछ टाइम पहले ही मिल गया था, लेकिन हम पिछली बार के अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हम आपके पत्र को शामिल कर रहे हैं। आपने 26 मई से लेकर जो पूरा हफ्ता था उसके जो कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या गया है पूरी डिटेल हम तक पहुंचाई है, और युववाणी कार्यक्रम की जो पूरी टीम है उसके नाम भी आपने अपने पत्र में मेंशन किए हैं और कार्यक्रम की आपने सराहना की है। आप नियमित रूप से कार्यक्रमों को सुनते हैं, युववाणी कार्यक्रम आपने सुना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी आपने इस पत्र के माध्यम से हम तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार इरफान खान जी, और आशा करते हैं कि आगे भी आपकी प्रतिक्रियाएं इसी तरह पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचती रहेंगी और पत्रों को पढ़ने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
0: पत्रों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। आइए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, कंटिन्यू करते हैं हमारा चिट्ठियों का सिलसिला और पढ़ते हैं हमारी अगली चिट्ठी जो कि आई है अमरोहा से, बहारुल हसन सिद्दीकी की, मोहम्मद आलम सिद्दीकी की, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी की और यासीन अंसारी जी की।
1: अमरोहा नई बस्ती से हमें ये चिट्ठी प्राप्त हुई है बहारुल हसन सिद्दीकी जी की तरफ से, और साथ में है आलम सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी जी और यासीन अंसारी जी। आपकी चिट्ठी तो हम तक पहुंची है, लेकिन आपसे ये बात हमें कहनी है कि जो आपकी चिट्ठी है वो फ़ोटो की फॉर्मेट में है और ये वही लगभग साल भर पुराना फ़ोटो है जिसमें एक भी अक्षर नहीं बदला है। शिकायतें भी कब की पूरी हो चुकी हैं लेकिन वही शिकायतें लिखी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी हैं जो युववाणी कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। इसलिए बहारुल हसन सिद्दीकी जी, आपसे ये गुजारिश है या आग्रह है कि आप कार्यक्रमों को सुने और जो कार्यक्रम आप सुने उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेजें। ये फ़ोटो आप बार बार ना भेजें। आपने चिट्ठी भेजी फिर इसका हम आभार प्रेषित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे से हमें अपडेटेड प्रतिक्रिया आपकी प्राप्त होगी। अगली चिट्ठी हमारे किस श्रोता साथी की तरफ से प्राप्त हुई है?
0: इसी क्रम में हमें अगली चिट्ठी प्राप्त हुई है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर जी की ओर से। ये लिखते हैं, आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप तरुणा जी, खुशी जी और अवधेश जी, अखिलेश जी? हम सब आपके रेगुलर लिसनर्स हैं, सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चिट्ठी आई है, फेसबुक लाइव आदि हमारे फेवरेट सेगमेंट्स हैं। एक गुजारिश है आपसे, कोई गजलों का प्रोग्राम, शामे गजल और फरमाइश वाला प्रोग्राम फिल्मी संडे शुरू कीजिए, मेहरबानी होगी। बाकी सब ठीक है, धन्यवाद।
1: आप भी हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और नियमित श्रोता हैं। नियमित रूप से आप कार्यक्रमों को सुनते हैं, युवाणी कार्यक्रम को भी आप सुनते हैं, और आपकी जो प्रतिक्रिया है पत्रों के माध्यम से हमें हर बार प्राप्त होती है, और इसी प्रकार आज भी आपके आपका जो पत्र है वो हम तक पहुंचा है। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी और साथ में हैं सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। आप अपने पत्र में कहते हैं कि आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं और युववाणी के सभी सेगमेंट्स आपको पसंद आते हैं। हेलो फ्रेंड, चिट्ठी आई है, फेसबुक लाइव सभी आपके फेवरेट सेगमेंट्स हैं। आपने जैसे अपने पत्र में गुजारिश की है कि गजलों का प्रोग्राम शामे गजल और एक फरमाइशी वाला प्रोग्राम फिल्मी संडे शुरू किया जाए। आपकी जो फरमाइश है इस पर बिल्कुल गौर किया जाएगा और संभावनाएं तलाशी जाएंगी, संभव हुआ तो ऐसा ज़रूर किया जाएगा। फिलहाल के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि फरमाइशों के हवाले से हमारे पास फ़ोन इन सेगमेंट के अंतर्गत भी आप फरमाइशें अपनी दे सकते हैं, और फेसबुक लाइव जो महीने का आखिरी फेसबुक लाइव होता है उसमें फेसबुक पर कमेंट्स के माध्यम से भी आप अपनी फरमाइशों का जो गीत आप सुनना चाहें वो भेज सकते हैं। और गज़ल के हवाले से जो मंगलवार का दिन होता है उस दिन गज़लों का ही प्रसारण किया जाता है, हालांकि वो फरमाइशी नहीं होती है लेकिन गज़लों का प्रसारण उस दिन होता है। तो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें अभी भी कार्यक्रम के अंदर शामिल हैं, बाकी जो आपकी फरमाइश है उस पर ज़रूर आगे जब कभी तब्दीली होगी कार्यक्रम में तो ज़रूर इस पर विचार किया जाएगा। आपने हम तक अपनी प्रतिक्रिया भेजी इस पत्र के माध्यम से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।
0: साथियों, हमें इंतज़ार है आपकी प्यारी प्यारी चिट्ठियों का। भेजिए हमें चिट्ठी इस व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल नंबर है patramila@rampur.gmail.com। तो दोस्तों, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आइए दोस्तों, पढ़ते हैं हमारी अब अगली चिट्ठी। हमें किसने भेजी है? हमें अगली चिट्ठी आई है सिहोरा बिजनौर से। हमें भेजी है चांदनी रानी जी ने और ये लिखती हैं, आपको मेरा सलाम, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप तरुणा जी और खुशी एंड अवधेश गौतम जी। मैं आपकी रेगुलर लिसनर हूँ, सभी युववाणी के सेगमेंट पसंद आते हैं, एक कमी है बस, कोई फरमाइश प्रोग्राम शुरू कर दीजिए व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर, मज़ा आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लिसनर जज युववाणी प्रोग्राम से प्लीज़ गौर कीजिए, शुक्रिया।
1: ये चिट्ठी हम तक पहुंची है सिहोरा बिजनौर से चांदनी रानी जी की तरफ से। आप अपनी चिट्ठी में कहती हैं कि आप युववाणी कार्यक्रम की रेगुलर लिसनर हैं और युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी सेगमेंट्स प्रसारित होते हैं वो आपको सभी पसंद आते हैं। आपने भी फरमाइश की है कि कोई फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर आधारित, और आपका कहना है कि इससे जो लिसनर्स हैं और ज़्यादा जुड़ेंगे। आपने सबसे पहला तो आपका पत्र भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार, और युववाणी कार्यक्रम सुनने के लिए, नियमित रूप से सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। जो आपकी फरमाइश, जो आपकी इच्छा आपने इस पत्र में लिखकर भेजी है, वो जब प्रोग्राम में कोई संशोधन होगा, प्रोग्राम के जो फॉर्मेट में कभी चेंजेस होंगे, तो ये देखा जाएगा कि ये चीज़ संभव है या नहीं। फ़िलहाल के लिए, जैसे कि पिछले पत्र में भी हमने बताया कि फरमाइशों के लिए हमारे पास फ़ोन इन सेगमेंट है हेलो फ्रेंड्स, जिसमें आप अपनी फरमाइशा गाना बता सकते हैं और यहाँ से आपका गाना प्ले कर दिया जाएगा। और साथ के साथ जो महीने का आखिरी फेसबुक लाइव होता है वो भी फरमाइश आधारित है, जो कि फेसबुक पर आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने गीतों की फरमाइश भेज सकते हैं और आपका गीत कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। जो भी आपकी इच्छाएं आपने अपने पत्र में लिखकर भेजी हैं, ये भविष्य में संभावनाओं पर निर्भर करेगा और आशा करते हैं कि ऐसा संभव हुआ तो ज़रूर कोशिश की जाएगी। आपने कार्यक्रम को सुना और अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चांदनी रानी जी।
0: साथियों, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी प्यारी प्यारी चिट्ठियों का, और इसी के साथ चलिए अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, कंटिन्यू करते हैं अपना चिट्ठी पढ़ने का सिलसिला और हमें अगली चिट्ठी प्राप्त हुई है आसरा जी की ओर से, अंगूरी बाग रामपुर से। ये लिखती हैं, युववाणी कार्यक्रम का प्रत्येक अंक ज्ञान, मनोरंजन और सकारात्मक संदेशों से भरपूर होता है। विशेष रूप से मेघा सक्सेना, फातिमा खान, मेघा ठाकुर, आफताब खान, तरुणा और स्वास्तिक जी की प्रस्तुतियां हमें बहुत पसंद आती हैं। आप सभी का आत्मविश्वास, प्रस्तुति शैली और मधुर आवाज श्रोताओं के दिल को छू जाती है। आप सभी का हर कार्यक्रम सुनने का इंतजार रहता है। आकाशवाणी रामपुर की पूरी टीम को इस शानदार कार्यक्रम के लिए ढेरों बधाइयां एवं शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी इसी तरह उत्कृष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहें और श्रोताओं का मनोरंजन व मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद।
1: ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है आसरा जी की तरफ से, अंगूरी बाग रामपुर से। आप अपने पत्र में कहती हैं कि युवाणी कार्यक्रम का प्रत्येक अंक ज्ञान, मनोरंजन और सकारात्मक संदेशों से भरपूर होता है, और आपने युवाणी के कुछ प्रेजेंटर्स के नामों का भी जिक्र किया है जिनकी प्रस्तुतियां आपको काफ़ी पसंद आती हैं। और आप कहती हैं कि ये जो प्रस्तुतियां हैं वो आपको बहुत पसंद आती हैं, आपके दिल को छू जाती हैं और हर कार्यक्रम को सुनने का आपको इंतज़ार रहता है। और साथ के साथ इन सराहनाओं के साथ आपने कार्यक्रम की पूरी टीम के लिए ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं अपने इस पत्र के माध्यम से। आसरा जी, आपने युवाणी कार्यक्रम को सुना, युवाणी कार्यक्रम के सभी प्रेजेंटर्स की हौसला अफजाई की और इस पत्र के माध्यम से कार्यक्रम की बेहतरी के लिए आपने अपने विचार और शुभकामनाएं भी इस पत्र के माध्यम से प्रेषित की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और इसी के साथ हम अपनी सभी युववाणी के श्रोताओं का धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं और इस वादे के साथ अनुमति लेना चाहूँगा मैं अवधेश कि आगे जब भी आपसे मुलाकात होगी चिट्ठी आई है सेगमेंट में, आपकी तरफ से ढेरों चिट्ठियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। इसी के साथ अवधेश गौतम को दीजिए अनुमति और आपके साथ बने रहेंगे खुशी और तरुणा।
0: तो साथियों, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट चिट्ठी आई है।

0: तो साथियों, अब वक्त है प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव का। चलिए जानते हैं आज के सवाल का सही जवाब और साथ ही जानेंगे कि हमारे किन किन श्रोता साथियों ने आज के सवाल का सही जवाब दिया है। तो साथियों, आज का सवाल था, मानव शरीर में किस हड्डी को फ्लोटिंग बोन कहा जाता है? और इसका सही जवाब है हायोइड बोन।
1: सही जवाब देने वाले श्रोता साथी हैं आप सभी, अजीत कसाना, दिनेश वर्मा, हीरामणि वर्मा, जॉन डे कैस्ट्रो, सुदर्शन शाह, पुंजाजी नवकर, नानक खन्ना, उत्तम सिंह झंगेल, अशोक सिंह, अनिल बी गोटके, रवि कुमार राहुल, अनिल बी गोटके, रवि कुमार राहुल, फागुराम यादव, राम कुमार रेवर, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, आकाश रस्तोगी, नेमीचेन गदवीर, गजानन येले दरियापुर, बीएल धाकर, सुरेश जायसवाल, शाहजी बोटके, विथल सुरोशे, दीपेश वर्मा, आर्यन राज, सिद्धार्थ गोंडाने, मोहम्मद जाहिद अली, शेख मूसा, नंदन कुमार सिंह, मुजफ्फर अली खान, धर्मेंद्र छिपा, बलवंत कुमार वर्मा, हाजी गफ्फार खान, नारायण लाल साहू, मीरा सिंह, रवि रस्तोगी, बबलेश पनवार, नजमुल हुडा जावेद, लाल मोहम्मद अंसारी, जाकिर मंसूरी, राधेश्याम पांडे, राजू मिगलानी, जगदीश धाकर, इरशाद अहमद, राष्ट्रपाल गजबिये, नवी हसन अब्बासी, गुरमीत सिंह मीता, सुरेश गगनेजा, मोहम्मद यासीन, विनोद मुन्नत, विजय सिंह महोबिया, नवाबुद्दीन, शाहनूर नूर अंसारी, निसार सलमानी, देवशंकर तामूरिया, विमल सक्सेना भारती, बीपी गौतम, विजय सुरालकर, मोहम्मद यासीन अंजन, धीरज भाई रावरी, पीएस यादव, मिसबा शमशी, रियासत हुसैन सिद्दीकी, अनोखे लाल, मोहम्मद वाखर फरीदी, चौधरी राजवीर सिंह, प्रवीण चौहान, आशा बिसाराई, अब्दुल गाफुर, दुर्गरम साहू, अनोखे लाल।
0: तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या 244901।
1: आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com।
0: इसके अलावा आप हमें WhatsApp पर भी संदेश भेज सकते हैं। WhatsApp नंबर है 9410087876। तो दोस्तों, इसी के साथ अब दीजिए तरुणा जोगेश
1: और अपनी रेडियो दोस्त खुशी को इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम की 6 बजने को हैं अब समाचार होंगे।

0: भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप इस समय सुन रहे हैं हमारे आज की दूसरी सभा के प्रसारण। श्रोताओं आपको बता दें आज रात 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंड अप। व्हाट्सएप फरमाइशी मैसेजेस पर आधारित फिल्मी नगमों का प्रोग्राम होगा गीत गाता चल रात्रि 8 बजे। शाम 7:31 पर आज आप सुनेंगे अपूर्व भारद्वाज की गायी कुछ गजलें, कार्यक्रम रहेगा सुगम संगीत। शाम 7 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत जिसमें आज आप सुनेंगे शुजात हुसैन खां का राग गौड़ सारंग में गायन। समय याद रखिए आज शाम 7 बजे। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत जिसमें आज आप सुनेंगे बीवीजी राम जी योजना और बरसात में सब्जियों की देखभाल विषय पर चर्चा। साथ ही साथ फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा लोकमंजरी।

0: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।
1: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
2: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
1: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
2: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
3: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष, हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
2: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
4: से नो टू प्लास्टिक।
5: जल के बिना है मुश्किल जीना, दुर्लभ हुआ स्वच्छ जल पीना, सबकी प्यास बुझाता पानी, पानी है तो है जिंदगानी।
6: जरा सोचिए, जब धरा पर रहेगा जल, तभी तो बचेगा आने वाला कल। जल की बचत, कल की सुरक्षा।

सड़क के नियमों का पालन कीजिए, वाहन की गति नियंत्रित रखिए, ध्यान रखिए, घर पर आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग जरूर करें।

अगर आपको बिना फाटक की रेलवे लाइन पार करनी हो तो पहले बाईं ओर देखिए, फिर दाईं ओर देखिए और फिर बाईं ओर देखिए, तब रेल की पटरी पार कीजिए। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

अभी आपने सुना आनंदराज आनंद और अमृता फडणवीस की आवाजों में गीत फिल्म वेलकम टू द जंगल से, और लीजिए सुनिए खान साहब को फिल्म धुरंधर 2 में।

फिल्म धुरंधर 2 के संगीत के साथ चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। अब सुनिए किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब भैया बहनों को आपकी बहन दीपा
1: और आपके भैया जसविंदर की
0: राम राम, राम। और सुनाओ जसविंदर भैया, क्या हाल चाल है तुम्हारे?
1: दीपा बहन, हम ठीक हैं और हम उम्मीद करते हैं जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं ना, वे भी सब ठीक होंगे और समय रहे तो जो भी काम है वो अपने कर रहे होंगे।
0: बिल्कुल भैया।
1: दीपा बहन देखो, आज सबको पता ही है कि आज है महीना को पहले शुक्रवार, और पहले शुक्रवार को जैसा कि सभी जानते ही हैं हमारा एक विशेष कार्यक्रम जाता है
0: लोक मंजरी।
1: जी, फरमाइशी लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम होता है, और अगर हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम में अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो हम उन्हें बता दें कि वो किस तरह से जुड़ सकते हैं। अगर उन्हें सीधे फोन करके अगर हमारा कोई लोकगीत रसिया या नौटंकी सुनना है उन्हें, तो वो डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। नंबर है उसके लिए 0595-23-24-326। और दीपा बहन, अगर वो SMS के माध्यम से हमें मैसेज करके अगर कोई चीज सुनना चाह रहे हैं तो उसके लिए नंबर है 94-100-8787-6। नंबर एक बार फिर कंफर्म कर लें हमारे किसान साथी, फोन करने के लिए नंबर है 0595-23-24-326, और SMS के लिए जो नंबर है वो है 94100-8787-6। और दीपा बहन देखो, हम लोक मंजरी कार्यक्रम तो अपने किसान साथियों को सुनवावेंगे ही, लेकिन बासर पहले कर लें कुछ बात।
0: हाँ भैया, बरसात को मौसम आते ही ना भैया, गांव देहात की रौनक जैसे अलग ही हो जाती है। खेतन में हरियाली दिखाई देने लगती है, मेड़न पर घास उगन लगती है, किसान भाई सुबह शाम अपने खेतन में मेहनत करते नजर आने लगते।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव नई उम्मीदन के साथ बढ़ रहा है।
1: दीपा बहन, बरसात केवल मौसम को बदलाव न लाता है बल्कि खेती किसानी में भी नई शुरुआत लेकर आता है। जय समय होता है जब किसान भाई खरीफ की फसलों के साथ साथ सब्जियों की खेती पर भी विशेष ध्यान देते हैं।
0: बिल्कुल भैया, गाँव के बुजुर्ग भी कहते हैं कि बरसात की हर बूंद खेत के लिए अमृत समान मानी जाती है, लेकिन समय पर देखभाल न करी जाए ना तो पानियों कई बार परेशानी को कारण बन जाता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने दीपा बहन, इसीलिए मौसम के साथ साथ खेती जो खेती के तौर तरीका है ना, उनमें भी थोड़ा बदलाव करना जरूरी होता है। समय पर अगर सही निर्णय हमारे किसान साथी ले लेना तो जो उनकी मेहनत है वो सफल बन सकती है।
0: बिल्कुल, आजकल देखो जा रहे हो ना कि भैया किसान भाई केवल पारंपरिक खेती तक सीमित ना है, सब्जियों की खेती, फल उत्पादन, पशुपालन और दूसरी गतिविधियों के माध्यम से वो अपनी आय बढ़ाने को प्रयास कर रहे हैं।
1: अब किसान नई तकनीकन के साथ साथ जो सरकारी योजनाएं हैं ना दीपा बहन, उनकी जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं, और जैसा खेती को अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनाने में सहायता मिल रही है उन लोगों के लिए।
0: जसविंदर भैया, आज के कार्यक्रम में हम दो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। पहलो है बरसात के मौसम में सब्जियों की देखभाल, और दूसरों है विकसित भारत, रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन, यानी कि भैया पता है बीबी।
1: हाँ बिल्कुल, हम समझ गए आपका कहना चाह रही हैं, जो एक योजना है बीबीजी रामजी योजना।
0: हाँ भैया,
1: और दोनों जो विषय है ना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी हैं। हम आपको बता दें दीपा बहन, सबसे पहले बात है खेत में पानी को उचित निकास। यदि बारिश को पानी लंबे समय तक खेत में भरो रहे ना तो पौधन की जड़ें प्रभावित हो सकती हैं और कई प्रकार की समस्याएं जो हैं वो पैदा कर सकती हैं।
0: हाँ भैया, सबसे पहले बात करते हैं बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती की। इस मौसम में किसान भाइयों को किन किन बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए?
1: सबसे पहली बात हम आपको बता दें दीपा बहन, जय हम अपने किसान साथियों को बता रहा है जो तरीका जो है ना, जो हमारे किसान साथी हैं अपनी जो सब्जियों की खेती हैं उनमें छोटी क्यारियां बनावें, ऊंची क्यारियां बनावें, ताकि जो अतिरिक्त पानी है ना वो आसानी से बाहर निकल जाए।
0: हाँ भैया, कई किसान भाई पहले से ही ऊंची क्यारी बनाकर सब्जियों की खेती करते हैं ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल जाए,
1: जो तरीका बहुत उपयोगी माना जाता है। और जिसके साथ ही खेत की जो नियमित निगरानी है ना वो भी बहुत जरूरी है, ताकि कहीं पानी अगर जमा होने की स्थिति बने ना तो समय रहे तो उसे हटाओ जा सके।
0: हाँ भैया, बरसात के मौसम में खरपतवार भी बहुत तेजी से बढ़ते दिखाई देती है,
1: तो बाकी ले तो देखो दीपा बहन, समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए हमारे किसान साथियों के लिए। इससे जो पौधा है ना उनको पर्याप्त पोषण भी मिल जाता है और उनकी जो बढ़वार है वो भी अच्छी बनी रहती है।
0: बिल्कुल भैया, कई किसान भाई बताते हैं कि बरसात के समय कीट और रोगों के खतराओं बढ़ जाते हैं।
1: किसान भाई अगर नियमित रूप से अपनी फसल को निरीक्षण कर लें तो जो कोई भी प्रकार को पौधन पर रोग या कीट के लक्षण दिखाई दे ना, तो बाकी तुरंत ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही उचित प्रबंध करें।
0: हाँ जसविंदर जी, सब्जियों की अच्छी पैदावार के लिए पौधन के बीच उचित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी मानूंगा।
1: उचित दूरी रहन से जो हवा होती है ना और धूप होती है बाको अच्छो संचार हो जाता है, जिससे जो पौधे होता है ना बस स्वस्थ बने रहते हैं और रोग फैलने की जो संभावना है वो भी कम हो जाती है।
0: बरसात को मौसम जितना लाभकारी है ना उतनो ही सावधानी की जरूरत पड़ती है भैया। समय पर अगर देखभाल न करी फसल की तो वाय हम बेहतर न बना सकते।
1: बिल्कुल सही बात कही हमने आपने दीपा बहन। और अब आगे की बात में हम थोड़ी सी बात कर लेना, जैसे आपने बात करी ना सब्जियों की देखभाल से जुड़ी जो अन्य महत्वपूर्ण बातन के साथ साथ एक और बात पर आपने बात करी ही। भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन यानी के बीबीजी रामजी योजना की जानकारी को, तो बाकी बारे में हम अपने किसान साथी में बात कर लें।
0: बरसात के मौसम में किसान भाई बड़ी मेहनत से सब्जियों की खेती करते लेकिन समय रहते देखभाल ना करी जाए तो मेहनत को पूरा लाभ ना मिल पाते।
1: दीपा बहन, इस मौसम में नियमित रूप से अगर खेत को निरीक्षण करें हमारे किसान साथी तो ये सब समस्याओं से बच सकते हैं। बारिश के बाद पौधन की स्थिति ये भी देख लेनी चाहिए, जहां आवश्यकता हो ना वहां पर समय रहते सुधारात्मक जो कदम है उनको उठाना चाहिए हमारे किसान साथी।
0: हाँ भैया, कई बार लगातार वर्षा होने से पौधन की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, ऐसी स्थिति में किसान भाई क्या करें?
1: देखो दीपा बहन, सबसे पहले तो जो देख लेना चाहिए कि खेत में कहूं पानी तो ना रुक गो है। अगर पानी रुक गो है तो बाकी उचित निकास को प्रबंध जरूर कर लेना चाहिए। जाके अलावा कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही फसल को अगर प्रबंधन हमारे किसान साथी करें तो अच्छो मानो जाता। बिना जानकारी के किसी भी दवा को प्रयोग न करना चाहिए हमारे किसान साथी को।
0: आजकल किसान भाई मोबाइल के माध्यम से मौसम की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो कोई दिक्कत तो ना है।
1: अगर भारी वर्षा की संभावना होती है ना तो पहले से ही पता चल जाती है हमारे किसान साथी उनको। तो किसान साथी जो है वो अपने खेत की जो नालियां होती हैं या फिर जो पानी निकासी की व्यवस्थाएं होती हैं उनको आसानी से साफ सफाई कर लेते हैं और उनकी तैयारी पहले से कर लेते हैं।
0: हाँ भैया, जैसे लौकी, तुरई, करेला और खीरन जैसी बेल वाली सब्जी है ना, इस मौसम में काफी खेत अच्छी पैदावार मिलती है।
1: सही कही आपने दीपा बहन। देखो ऐसी फसलों को सहारो देनो लाभदायक मानो जाता है। अगर बेलें जो है ना वो जमीन पर फैल जाएं तो बासा क्या होता है कि एक तो धूप उनको अच्छी से ना मिल पाती है, दूसरी बात यह है कि जो उनके फल होते हैं वे भी बहुत अच्छी गुणवत्ता के उनको प्राप्त न हो पाते हैं।
0: हाँ भैया, खेत की साफ सफाई को इस मौसम में विशेष महत्व मानो जाते हैं।
1: खेत में जैसे गिरे हुए सड़े गले फल होता ना या रोगग्रस्त जो पत्तियां होती हैं या फिर खरपतवार होते हैं उनको अगर समय समय पर हमारे किसान साथी हटा लेना तो कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं।
0: हाँ जसविंदर भैया, जैविक खेती अपनाने वाले किसान भैया भी अब सब्जियों की खेती को काफी रुचि दिखा रहे हैं।
1: देखो दीपा बहन, जो दूसरी बात करी ना हमने कि ग्रामीण रोजगार गारंटी मिशन, तो हम आपको बता दें कि दीपा बहन जय योजना को उद्देश्य ग्रामीण रोजगार परिवार को अवसर उपलब्ध कराना है, गाँव में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना और आजीविका को मजबूत बनाने की दिशा में सहयोग देना होता है।
0: हाँ भैया, गांव में कई लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी योजनाओं की जानकारी उन्हें कहां से मिल सकती है।
1: दीपा बहन, इसके लिए तो देखो ग्राम पंचायत हैं या विकास खंड कार्यालय हैं और संबंधित विभाग से भी संपर्क करो जाता है। वहां देखो जो पत्राचार है बाकी माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध जो कार्य है ना उनकी भी जानकारी प्राप्त करी जा सकती है।
0: हाँ, कई बार जानकारी के अभाव में लोग योजनाओं को लाभ न उठा पाते।
1: बिल्कुल सही बात कही दीपा बहन, जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे परिवार होता ना उनको समय समय पर सरकारी विभागों द्वारा सूचनाएं पर ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन सी सूचनाएं हमारे क्षेत्र में आ रही हैं या कौन कौन सी जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन हमारे क्षेत्र में चल रहा है। हाँ, अगर उन्हें सही जानकारी हुई ना तो आसानी से वहां को लाभ ले सकते हैं।
0: बिल्कुल, गांव को विकास तभी संभव है जब खेती के साथ साथ रोजगार के अवसरों बढ़ते हैं।
1: देखो दीपा बहन, ये तो ही कुछ बात हमारी मतलब बरसात में सब्जियों की देखभाल और बीबीजी रामजी योजना पर कुछ जानकारी। और जैसे कि हमने कार्यक्रम के प्रारंभ में अपने किसान साथियों को बताई ना कि आज महीना को पहलो शुक्रवार है। हम देख रहे हैं कि आज आपके हाथ में बहुत सारे पत्र हैं।
0: हाँ भैया,
1: और देखो हमारे जो कार्यक्रम लोक मंजरी है ना वो अब हम करते हैं प्रारंभ और देखते हैं कि कौन कौन से भैया हमसे जुड़ रहे हैं।
0: बिल्कुल।

0: दीपा बहन, देखो हमें बहुत सारे पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें आप एक एक करके पत्र पढ़ें, कौन कौन से श्रोताओं ने क्या का हमसे सुनने की फरमाइश भेजी है।
1: हाँ भैया, हमारे पास एक पत्र आओ ग्राम लटूरी भोजीपुरा बरेली से। हसमत अली, अजमत अली, शेख अली, अब्दुल हफीज, सरफराज, मुस्तफ़ा अली, निसार अहमद, नन्ने, इकबाल, इकरार, फारूक भाई, इसरार भाई व इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: दीपा बहन, एक जो पत्र हमारे हाथ में और है जो हमें मिल हुआ है, कस्बा उगहती बदायूं से लिखने वाले हैं धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, डीके हिटलर और इनके परिवार के सदस्य।
1: हाँ भैया, हमारे पास आओ है कार्यक्रम रोग मंदिर प्रस्तुत करने वाले को हमारे राम राम बोल रहे हैं जी।
0: राम राम हमारी तरफ से भी।
1: हाँ, लिखने वाले हैं हर प्रकाश, राजा राम, जितेंद्र सिंह, छुट्टन सिंह, राजेश, कांता प्रसाद, लवेश, नरपत सिंह, प्यारे लाल, करण और इनके परिवार के सभी लोग।
0: एक पत्र और इसी फरमाइश से संबंधित हमारे पास है दीपा बहन, भाटापारा छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हैं हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। इन सब ने फरमाइश भेजी है एक लोकगीत की जिसके बोल हैं, सासू तेरी एक न मानूंगी, और जिसको अपनी मधुर आवाज दी है लिपिका सक्सेना। तो आओ इनकी पसंद पसंद हैं
1: जो लोकगीत।

0: दीपा बहन, देखो अगली फरमाइश पढ़ने से पहले हमने किसान साथियों को बता दें कि जो भी अगर फोन करना चाह रहे हैं हमारे कार्यक्रम में, तो वे एक बार फिर से दोबारा हमारे फोन नंबर नोट कर लें। नंबर है 0595-232-4326। इस पर डायरेक्ट फोन करके अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। और जाके अलावा अगर SMS करना चाह रहे हैं तो बाकी नंबर एक अलग है, वो है 9410087876। और दीपा बहन, देखो हम देख रहे हैं आपके हाथ में एक फरमाइशी पत्र है।
1: हाँ भैया, हमारे लिए अगली फरमाइश लिख भेजिए। ग्राम बरईपुरा बहेड़ी बरेली से कृपा शंकर, ललित कुमार, योगेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह, हरी राम, राजा राम, हरि प्रसाद, हरचरण, जानकी, शिव हरि और परिवार के इनके सभी लोग।
0: एक पत्र और हमें मिलू है दीपा बहन, ग्राम सरकड़ा, तहसील फरीदपुर, जिला बरेली से। लिखन वाले हैं राजकुमार, शिवांक, कार्तिक, प्रिंस शिवम, प्रेम कुमार, अंकित राणा। लेकिन बासा पहले एक कोई श्रोता हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, आप देखना कौन है। हेलो,
2: हेलो
0: हाँ, कौन श्रोता कहाँ से बात कर रही हैं? रेखा अग्रवाल जी, आज आपने कार्यक्रम लोक मंजरी में फोन मिलाया है, कैसा लग रहा है आपको?
2: सर, आज मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो आज वैसे फोन मिलाने लगी।
0: अच्छा,
2: वैसे कब का बात आई प्रोग्राम?
0: ये प्रत्येक माह के पहले और चौथे शुक्रवार को लोक मंजरी कार्यक्रम हम प्रसारित कर रहे हैं, और ये बदलाव जो है
2: अच्छा
0: वो मई से प्रारंभ हो गए हैं।
2: अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था।
0: तो आपने मई से कार्यक्रम ही नहीं सुना होगा कृषि जगत पे।
2: तो पहले शनिवार को आते रहे प्रोग्राम।
0: जी, लेकिन अब कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है, और हमारा जो लोक मंजरी कार्यक्रम है वो महीने के
2: अच्छा,
0: प्रत्येक पहले और तीसरे शुक्रवार को आपको सुनने को मिलेगा।
2: पहले तीसरे शुक्रवार को जी
0: जी,
2: ठीक
0: तो आज आप क्या सुनना चाहेंगी?
2: है, कोई आप अपनी पसंद का सुनवा दीजिए, कोई भी लोकगीत।
0: चलिए, हम जो और श्रोताओं ने हमारे पास फरमाइश भेजी है, हम उसी में आपकी फरमाइश को सम्मिलित करते हैं। और ये जो फरमाइश हमारे पास भेजी है वो नौटंकी सुनने के लिए भेजी है, तो नौटंकी ही हम आप आज आपको सुनवाएंगे। और जी, तो लीजिए, आपके रेडियो सेट पर प्रस्तुत है ये नौटंकी।
2: अच्छा, नमस्ते सर।
0: नमस्ते।

द्रोणाचारी का ये संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर चिंता में पड़ गए। लाचारी ये थी कि उस समय अर्जुन श्री कृष्ण के साथ कहीं और चले गए थे और चक्रव्यूह को तोड़ने का भेद गुरु की कृपा से सिर्फ उन्हीं को मालूम था। धर्मराज को अफसोस में पड़ा देखकर अर्जुन का बेटा सुभद्रानंदन अभिमन्यु सामने आया और इस प्रकार बोला।

0: अभिमन्यु की ऐसी वाणी सुनकर भीम ने वज्र के समान अपनी गदा को घुमाते हुए कहा,
1: ओ मेरे भतीजे, आज द्रोण गुरु देखे युद्ध के नतीजे।

0: माँ सुभद्रा की आज्ञा पाकर अभिमन्यु आंधी तूफान सा चक्रव्यूह की ओर चल पड़ा।
1: बालक को रण भेज कर करता घर में मौज, कायर अर्जुन डर गया देख हमारी फौज कहाँ है।

रोको रोको इस लड़के को, इसको आगे मत जाने दो। यह तो अर्जुन से भी लगता जैसे भारी वीर, इसका बड़ा निशाना तीखा।

अभिमन्यु द्रोणाचार्य को परास्त कर चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। अभिमन्यु जीत सब दरवाजे, सात में द्वार पर पहुंचा है, उस फाटक पर

0: बचाओ।
1: मारो
2: मारो
1: मारो मारो
2: लड़के।
0: ओह, ये तो अधर्म युद्ध हो रहा है।
3: ये अर्जुन का बेटा अर्जुन के समान है।
1: जब तक इसके हाथों में तीर कमान है तब तक इसे जीतना नहीं आसान।
2: काट दो इसकी कमान,
1: ले लो इसकी जान।
0: ये अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है।

0: पापी जयद्रथ, तूने मेरा धनुष भी काट दिया। अच्छा तो मैं रथ के पहिए से युद्ध करूंगा। आ जा पापी, आ जा।
1: ले, तेरा पहिया भी काट दिया।
2: ओ दुशासन के बेटे, तू लक्ष्मण सुनो, अब तो अभिमन्यु

0: ले
1: अभिमन्यु मारा गया,
2: अभिमन्यु मारा गया, महाराज दुर्योधन की जय।
3: अभिमन्यु मारा गया ये खबर उसकी पत्नी उत्तरा के पास पहुंची। राजकुमारी उत्तरा विलाप करने लगी।

0: उसी समय अभिमन्यु के पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण भी आ गए। अपने बेटे की अधर्म पूर्वक मौत और बहु उत्तरा का विलाप सुनकर वीर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की,
1: तूने मारा निहत्था मेरे लाल को तो प्रण अब ये धारूंगा मैं, कल सूर्य अस्त के पहले ही पापी जयद्रथ तुझको मारूंगा मैं। यदि मेरी प्रतिज्ञा पूरी न हुई अपना तन आग में जारूंगा मैं।
0: दूसरे दिन श्री कृष्ण की कृपा से सूरज डूबने के पहले पापी जयद्रथ वीर अर्जुन के बाण से मारा गया। पिता ने पुत्र की मृत्यु का बदला चुका दिया। वीर अभिमन्यु की जय।
2: दीपा बहन, देखो अभी हमारे किसान साथी ने जो नौटंकी सुनी वीर अभिमन्यु, और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को जो पसंद जरूर आई होगी। और दीपा बहन देखो, पत्र तो हमारे पास बहुत सारे हैं जिनको हम शामिल करना चाह रहे हैं, लेकिन अब कार्यक्रम में बहुत अधिक समय ना है, तो जे पत्र तो रख लियो अगले कार्यक्रम तक।
3: हाँ।
2: अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे इनको, और आज को लोक मंजरी कार्यक्रम अब बस यहीं तक।

0: और भैया अब बात करते हैं कृषि संकेत की। आज हम किसान भैया बहनों के लिए गन्ने की खेती से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज को हमारा विषय है गन्ने में मिट्टी चढ़ाई एवं गन्ना बधाई को कार्य।
1: दीपा बहन देखो, जब समय गन्ना की जो फसल है वो बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, ऐसे में समय पर अगर मिट्टी चढ़ा दी जाए और गन्ना की बधाई को काम जो है वो अच्छी तरीके से कर दो जाए तो जो हमारी गन्ना की फसल है वो अच्छे से बढ़वार करती है और बेहतर उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्रियाएं मानी जाती हैं।
0: बिल्कुल भैया, कई किसान भाई जानना चाहते हैं कि गन्ने में मिट्टी चढ़ान को क्या महत्व होता है।
1: दीपा बहन देखो, हम आपको बता दें कि जो मिट्टी चढ़ान से पौधन की जो जड़ें हैं ना, उनको मजबूती मिलती है और साथ ही पौधे तेज हवा या वर्षा के कारण जो गिरन की संभावना होती है ना वो भी बहुत कम हो जाती है, यानी कि सुरक्षित हो जाता है, जिससे खेत में जो जल निकास की व्यवस्था है ना वो भी बहुत बेहतर बनी रहती है।
0: हाँ भैया, बरसात के मौसम में मिट्टी चढ़ाई को कार्य भी और अधिक जरूरी माने जाते हैं।
1: बिल्कुल, जैसा जो कहा होता ना दीपा बहन कि अगर समय पर हमारी जो मिट्टी चढ़ा दी है ना तो पौधन की जो पकड़ है ना वो मजबूत हो जाती है और उनकी बढ़वार भी अच्छी तरीके से बनी रहती है।
0: हाँ भैया, और अब गन्ना की बंधाई की बात करें तो इसको क्या का लाभ है?
1: दीपा बहन देखो, जब गन्ना की फसल ऊंची होने लगती है ना तो तेज हवा और बारिश के कारण उसमें गिरन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में जो गन्ना की पत्तियां होती हैं ना उनको उचित तरीका से अगर बांध दें और जो फसल है उसको एक दूसरे से जोड़ दें तो वो बासा फसल खड़ी रहती है और नुकसान कम होता है।
0: हाँ भैया, कई अनुभवी किसान भैया समय पर गन्ना की बंधाई करने की सलाह देते हैं।
1: दीपा बहन, बंधाई से खेत में चलनो फिरनो भी आसान हो जाता है। आप अगर चाहो तो मामा आसानी से उर्वरक दे सकते हैं और जो भी अन्य कृषि कार्य है ना उनको करने की भी सुविधा बनी रहती है।
0: हाँ भैया, मिट्टी चढ़ाई के समय खेत में खरपतवार की सफाई वो बहुत महत्वपूर्ण है भैया।
1: जैसा जो है खरपतवार नियंत्रण में रहता है और गन्ना के जो पौधा है ना उनको जो भी हम पोषक तत्व देते हैं वो सीधे और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं।
0: हाँ भैया, किसान भैया और इस समय फसल को नियमित निरीक्षण करते हैं जैसे उनकी खेती और अच्छी बने।
1: और अगर कहूँ कीट या रोग के लक्षण दिखाई देते ना तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर समय पर उचित प्रबंध भी हमारे किसान साथियों को इस समय कर लेना चाहिए।
0: बिल्कुल जसविंदर भैया, संतुलित पोषण और समय पर सिंचाई भी गन्ने की अच्छी बढ़वार के लिए जरूरी मानी जाती है।
1: दीपा बहन, मिट्टी चढ़ाई या फिर गन्ना बधाई, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और उचित सिंचाई, इन सभी कार्यों को अगर समय पर करने से अच्छी फसल तैयार हो जाती है ना तो जो हमारी बेहतर उत्पादन की संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है।
0: हाँ भैया, कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र में भी समय समय पर गन्ना उत्पादन किसानों को आधुनिक तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने दीपा बहन, किसान भाई नई जानकारी अपनाकर अपनी खेती को और अधिक लाभकारी बना सकते हैं। तो किसान साथियों, आज के हमारे कृषि संकेत में बस यहीं तक। और दीपा बहन देखो, अब हम अपने किसान साथियों को बता दें कि कल को

0: मौसम कैसो रहने की संभावना है। कल हम बात करें ना तापमान की, अधिकतम तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और वायुमंडलीय आर्द्रता की बात करें तो 62% रहने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और हवा की दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से रहने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। और दीपा बहन देखो, इस समय हमारे कुछ किसान साथी कुछ काम अपने फसलन के साथ साथ जो अपने पशु हैं ना उनमें भी करते हैं।
1: हाँ,
0: देखो मौसम बरसात को चल रहा हो और ऐसे में अगर अपने पशुओं की देखरेख अगर वे समय रहत करेंगे तो जो पशु से उत्पादन उनको मिल रहा हो ना वो अच्छो मिलने की संभावना,
1: और जो पशुओं में बीमारी आने को खतरा होता है बहुत
0: बिल्कुल बासव बचे रहेंगे। हाँ। तो जाके ले तो हमारे किसान साथी अपने पशुओं में टीकाकरण को उचित प्रबंध कर लें। अगर आसपास में जो गाँव में लग रहे हैं टीका और आपके यहाँ न लगे तो अपने जो विकास खंड है वहाँ जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। और जो मुफ्त में टीका लगते हैं दीपा बहन, तो अपने पशुओं में टीकाकरण को काम जो है वो समय रहते जरूर करा लें। और जाके अलावा एक बात को और ध्यान रखें हमारे किसान साथी, दीपा बहन देखो गर्मी तो पड़ी रही है आपने देखी, साथ में कभी कभी बीच में बरसात हो जाती है, तो हमारे जो किसान साथी हैं ना क्या करते हैं कि अपने पशुओं के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील ना रहते हैं।
1: हाँ,
0: देखत रहे कि उन्हें जो है पोखरन में तालाबन में पानी ना पिलावें,
1: बिल्कुल साफ सफाई को विशेष ध्यान रखें
0: और पशुशाला की भी साफ सफाई समय रहते करना चाहिए हमारे किसान साथियों को, ताकि जो उनके पशु हैं वो संक्रमण से बचे रहें और किसी प्रकार की कोई समस्या उनके पशुओं में देखने को ना मिले।
1: हाँ भैया, अब हमें समय बहुत ज़्यादा इजाज़त ना दे रहे, हम अपने भैया बहन से और बातें करें तो कल काका कार्यक्रम जाए भैया जो बता दो।
0: देखो दीपा बहन, कल के कार्यक्रम में चर्चा को विषय होएगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, और साथ ही सुनवांगे एक भेंट वार्ता पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का महत्व,
1: और भैया मनोरंजन कराएंगे लोकगीत के साथ,
0: और साथ ही सुनवाएंगे कृषि संकेत कार्यक्रम, और कृषि संकेत कार्यक्रम के अंतर्गत जो विषय रहेगा वो होगा नींबू वर्गीय फसलों की देखभाल, और साथ ही सुनवाएंगे मौसम को हाल। तो दीपा बहन जो तो हो हमारो आज को कार्यक्रम हमारे किसान साथियों को कैसो लगो हमें लिखनो ना भूलें। हाँ, पत्र लिखने के लिए हमारे कार्यक्रम को पतो हमारे किसान साथियों को बता दूं।
1: हाँ भैया, हमारे कार्यक्रम को पता है कृषि जगत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन है
0: 244901। और अब जय वादे के साथ के अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात अपने भैया जसमिंदर
1: और अपनी बहन दीपा को, देव अनुमति।
0: राम राम, राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे दीपा कुमारी और जसविंद्र सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

मीडियम वेव 376.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए शुजात हुसैन खां का राग गौड़ सारंग में गायन। बोल हैं घड़ी पल तुम बिन।

0: अभी आप सुन रहे थे शुजात हुसैन खां से राग गौड़ सारंग में गायन, बोल थे घड़ी पल तुम बिन। तबले पर इनका साथ दे रहे थे निसार हुसैन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
2: सामने हैं इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
3: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
2: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध,
1: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
2: जागिए और जगाइए,
3: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
1: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
2: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
4: से नो टू प्लास्टिक।
5: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
6: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
5: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
6: आपातकाल में साथ निभाए,
5: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
6: 112।
5: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
6: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
5: यदि चाहिए पुलिस सहायता
6: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
5: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
6: मिटाकर हर सस्पेंस को
5: डायल 112।
6: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
5: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
6: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
5: या फिर भेजें ईमेल always use 112 इंडिया मोबाइल ऐप।
6: जब घेरे कोई भी आपदा,
5: तुरंत मिले सहायता
6: डायल 112।
5: चिंता से पाएं छुटकारा,
7: पुष्पा झुकेगी नहीं,
8: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।
2: श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर, आपका अपना आकाशवाणी रामपुर। जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
3: जितना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए योग,
2: उतना ही अनिवार्य है स्वच्छ जल का प्रयोग।
1: बस करना होगा जल का सदुपयोग।
2: पानी बचाओ, जीवन बचाओ। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए अगली प्रस्तुति।
0: श्रोताओं, आपको याद दिला दें आज रात 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर रहेगा 0595-2324-326। सुनना ना भूलिए रात्रि 10 बजे हेलो रामपुर। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम, जो कि व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित होगा, गीत गाथा चल, रात्रि 8 बजे। सुनना ना भूलिए रात्रि 8 बजे कार्यक्रम गीत गाथा चल। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंड अप। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:19 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।
9: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
10: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
11: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाएं प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन। प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।
12: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
11: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने आज रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कल अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की पुलिस कस्टडी की रिमांड को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन में नवाचार और उत्कृष्टता का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनहितकारी नीतियां बनाई गई हैं, उन्हें जमीन स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
13: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत की आधारशिला बने, ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो कि पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा।
11: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम महोत्सव उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के अन्नदाता किसानों को 800 प्रजातियों के आम प्रदर्शित करने का मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बने।
12: हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए, ड्रोन और AI बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है।
11: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी को आज सुबह दिल का दौरा पड़ने पर लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। उन्होंने श्री चौधरी का उपचार कर रहे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की दूसरे दिन की परीक्षा आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की AI कैमरों से निगरानी की गई। एक रिपोर्ट।
14: प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन कल दोनों पालियों में पंजीकृत 8,07,636 परीक्षार्थियों में से 84.76% अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय UPTET परीक्षा के अंतिम दिन कल एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही प्रामाणिक माने। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
11: अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को आज लखनऊ में सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तर प्रदेश और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में PFRDA के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया।
15: यूपी का APY स्कीम में काफी बड़ा योगदान रहा है। अभी तक यूपी में 1,47,00,000 लोग जुड़ चुके हैं। अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो 9,25,00,000 से ज्यादा लोग इस APY स्कीम में जुड़ सके हैं। तो इस परसेंटेज से आप देख सकते हैं कि यूपी का काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि एक यूपी बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, तो यहाँ पर कवरेज काफी अच्छी रहती है। और इस साल हम आशा कर रहे हैं कि जितने भी कीर्तिमान अभी तक हमने यूपी में स्थापित किए हैं उस सबको तोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में जोड़ पाएंगे।
11: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि आधार को ईमेल से जोड़ने पर जब भी आधार प्रमाणीकरण की कोई रिक्वेस्ट पूरी होती है तो रियल टाइम ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ती है और सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है। एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में आज तड़के एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। हादसा कीलर मऊ गांव के पास उस समय हुआ जब सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के बाहर खड़े यात्री इसकी चपेट में आ गए। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मॉनसून सामान्य रहा। प्रदेश के कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाएं प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन। प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:31 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए अपूर्व भारद्वाज की गायी कुछ गजलें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अपूर्व भारद्वाज की गाई कुछ गजलें।

अपूर्व भारद्वाज की गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाथा चल कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। श्रोताओं, आज गीत गाथा चल कार्यक्रम में हम सुनवाएंगे आपकी पसंद के गीत आपके द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित। आपको मैसेज किस नंबर पर करना है, वो नंबर है 9410878786। लेकिन एक बात है, आपको मैसेज भेजना है और जिसका भी मैसेज यानी जिसकी फरमाइश पूरी हो जाए वो दोबारा मैसेज ना करें, क्योंकि नियमानुसार एक कार्यक्रम में एक श्रोता का यानी एक परिवार का एक बार ही मैसेज शामिल किया जाएगा। हाँ, अगर आपको धन्यवाद अदा करना है या कुछ भी कहना है तो वो आप हमें आपका पत्र मिला कार्यक्रम में दे सकते हैं। उसके लिए आप पता नोट कर लीजिए, आपका पत्र मिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है patramilaaiarrampur@gmail.com। तो आप भेजिए मैसेज, लेकिन मैसेज केवल एक ही भेजिएगा, कई सारे मैसेज मत भेजिए जिससे आपको परेशानी होगी, आपका मैसेज केवल एक ही बार शामिल होगा। आज का गीत गाता चल कार्यक्रम बहुत ही

अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके मनपसंद गीत आपको सुनवाए जाएंगे और ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि स्वरूप रहेगा हमारे बॉलीवुड दो शख्सियतों के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे बॉलीवुड की इंडस्ट्री की दो शख्सियत आज के दिन इस दुनिया को छोड़कर चली गई, जिसमें से एक हैं मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान और दूसरे सदाबहार हीरो रहे राजकुमार। जी हाँ, 3 जुलाई का दिन ऐसा दिन है जो ये शख्सियत हमसे दूर हो गई। तो सबसे पहला गीत अलका याग्निक की आवाज़ में, गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने और फिल्म है खलनायक। ये गीत आपने सुनना चाहा है और इस गीत को कोरियोग्राफ किया है सरोज खान ने, बहुत सुंदर गीत है, पसंद किया है आप सभी साथियों ने। ग्राम भोई नापार जिला बादोड़ छत्तीसगढ़ से देवनारायण साहू, कुमारी योगिता, कुमारी गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई साहू और त्रियांश कुमार साहू, ये पत्र हमारे मैसेज हमारे पास आया है। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजेंद्र सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया का ये मैसेज हमारे पास आया है। ग्राम लदावली कांट रोड मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी और आदित्य कसाना का। अनारकली बाजार जकराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवाया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव। अगला मैसेज है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरालकर, रतनमाला सुरालकर, आरती गौरी और आराध्या सुरालकर का। अगला मैसेज हमारे पास आया है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुमना अंसारी और आलिया अंसारी का। ये मैसेज है जरूड़ बरूड़ से बाबा साहब बड़ोदे, मीनाक्षी, रजनी कनीरे और इनके परिवार के लोगों का। अगला मैसेज है गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नहाटा, दीक्षा कुश मुड़त। ये मैसेज हमारे पास आया है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नौखेलाल वर्मा का। कोटवा नारायणपुर बावपट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश, प्रीति और नवनीत राय। ये मैसेज है भुचो कैन चिया बठिंडा पंजाब से परम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, दमन और अभिजोत का। मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदनी और अंजलि। ये पांडरकवड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से हमारे पास मैसेज आया अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे का। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर सरोज खान द्वारा कोरियोग्राफ किया हुआ अलका याग्निक की आवाज में फिल्म खलनायक का गीत।

श्रोताओं, ये भी कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित को स्टार बनाने के पीछे सरोज खान को बड़ी वजह माना जाता है। उनको माधुरी दीक्षित से बहुत लगाव था। 1988 में उन्होंने माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब के मशहूर गीत 1-2-3 को कोरियोग्राफ किया था, जिसके बाद माधुरी को पहचान मिली थी। कई गानों में माधुरी दीक्षित और सरोज खान ने काम किया। आखिरी बार सरोज खान ने माधुरी दीक्षित का गाना कोरियोग्राफ किया था वो थी फिल्म कलंक, जो कि साल 2019 में आई थी। इसका गाना था तवा हो गए, जिसको सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था, जिसमें माधुरी दीक्षित थी। तो आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद पर फिल्म कलंक का गीत श्रेय घोषाल की आवाज में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने, और पसंद किया है आप सभी ने। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंद्र चावला, शिव कुमार शर्मा और लोकेश जोशी। ये मैसेज हमारे पास आया है बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया का। चूड़ी लाइन मुंगेली छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इसहाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। अगला मैसेज है, यह हमें भेजा है राजमाता नगर बुलडाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार का। अगला मैसेज है हमारे पास गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुनोर सिंह, शुभदीप सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह का। कासगंज से मास्टर राधेश्याम शाक्य, ऋषभ जौली, मधु और इनके सभी साथी। अगला मैसेज हमारे पास आया है महसूल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, बेकरम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुगीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा का। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकत फरवीन। ये मैसेज है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। अगला मैसेज हमारे पास आया है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के का। अम्बेडकर चौक बाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े। ये मैसेज है बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम कर्मकर, सुनीता, हार्दिक प्राची और तनु कर्मकर का। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर बबलू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीवा और डॉक्टर दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिंगपुर बक्सर से राज एस जी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सैन और सुरेखा सैन। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। अगला मैसेज हमारे पास आया है ग्राम ढकिया केसरपुर पीलीभीत से एक ही राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, भगवान दास, बंदन लाल, रवि कुमार, नवनीत, किरण, संतोषी, प्रिया और गुड़िया चंचल का। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, निशा परवीन, मुन्ना भाई, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी। अगला मैसेज हमारे पास आया है बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरन निशा, शाविस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी का। ये थाना टीन रामपुर से हमें मैसेज भेजा है इकराम अली प्रेमी, फैजान, एहसान, इमरान और आसिफ भाई ने। सातर रोड भवाली से अजहर जहां, अमरीन, हिना, फरहीन, यमन, फारिया और सलमान का। बहुत दिनों बाद इनका मैसेज मिला है। तो आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद पर फिल्म कलंक का ये गीत श्रेय घोषाल की आवाज़ में। इस गीत को कोरियोग्राफ किया सरोज खान ने और ये उनका अंतिम कोरियोग्राफ किया हुआ गीत था।

0: आप सुन रहे कार्यक्रम गीत गाता चल, आपके अपने साथी अखिलेश सक्सेना के साथ।
1: तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी।
0: श्रोताओं, पहचाना आपने ये डायलॉग और ये आवाज़? जी हाँ, ये आवाज़ थी मशहूर अभिनेता राजकुमार की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। आज हम उनको भी याद कर रहे हैं और उनके दो ऊपर फिल्माए गए कुछ फिल्मी गीत आगे इस कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे आप ही की पसंद पर। हम आपको बता दें कि राजकुमार का असली नाम जो था वो था कुलभूषण पंडित। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1930 को बलूचिस्तान में हुआ था। इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया। उन्हीं के द्वारा अभिनीत फिल्म एक थी नीलकमल, जिसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया है रवि ने और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत को पसंद किया है आप सभी साथियों ने। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुनील सामग और अंजलि सुनील, इन्होंने लिखा है कि मैं पहली बार आपको ये मैसेज भेज रहा हूँ, पहली बार जुड़ा हूँ, आपका स्वागत है। अगला मैसेज हमें भेजा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर निर्मला विशाल नावकर ने, मलकापुर से नारायण इंगले सोपान ताडे और आशीष मुहकर। अगला मैसेज हमारे पास आया खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक अरोड़ा प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा का। अगला मैसेज है कोल्हापुर महाराष्ट्र से अतुल गौतमी धमदना अरुण काले एडी कामले का। अगला मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है इन्होंने, ये काफी सारे नाम हैं इन्होंने भेजा है और ये तो मेरे ख्याल से काफी सारे श्रोताओं के नाम इन्होंने इस लिस्ट में लिखकर भेजे हैं, जो कि लगभग 100 से ऊपर नाम है। और ये हमारे वही लिसनर्स हैं जो जगह जगह से अपने निवास स्थान से हमें मैसेज भेजते हैं, पत्र भेजते हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे, जिन्होंने भी ये मैसेज भेजा है कृपया आप अपना नाम, अपने परिवार का नाम अपने निवास स्थान से हमें भेजें। बहुत से साथी हैं जिनके नाम बोले भी जा चुके हैं। अगला मैसेज हमें भेजा है वड़ी खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। ये मैसेज है वारशाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर तेजस्वी चौहान माई इंदुरकर बेबी शौर्या श्रेयस अंकिता और अनिकेत चौहान, किवले गांव पुणे से अंकिता कांबले सरदार पुरकर विजय कांबले सदापुरकर और बेबी शौर्या और श्रेयस कांबले। अगला मैसेज हमारे पास आया है मौला हलवायान शिरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजदारानी और हिना कौसर का। ये ग्राम महेशपुर केम के हमारे साथी हैं जिनका मैसेज हम पढ़ चुके हैं। कृपया आप दोबारा मैसेज ना भेजें जिनकी फरमाइश पूरी हो चुकी है। श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि जिनकी फरमाइश और जिनके मैसेज, जिनके नाम इस प्रोग्राम में पढ़े जा चुके हैं, कृपया दोबारा मैसेज ना भेजें। अपने साथियों को भी मौका दें। गांधी समाधि रोड रामपुर से ये मैसेज आया है हाजी गफार खान रजिया खान सिमरन खान संदीप सक्सेना शहनाज बाबू अंसारी हबीब अहमद इदरीसी इरफान खान का। पक्केबाग से ये हैं पम्मी राजौरा कोठी अफसराला रामपुर से हमें ये मैसेज भेजा है रूमा खान बॉबी खान मदिया खान शुभान खान शबनम अब्बासी गुलफ शाह जीना तमान और शमा बिक्की ने। ये मैसेज हमारे पास आया है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी मनोहर भाई बागरी प्रभुलाल बागरी और इनके सभी साथियों का। बागरी मोहला रटलाई झालावाड़ राजस्थान से अगला मैसेज हम शोभा कपिल नैना सत्यनारायण फुंदी भाई और इनके सभी साथियों का। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद प्रकाश कुमार बबलू निषाद तरुण यादव श्रीनिका और श्रीनिजा। अगला मैसेज है हमें भेजा है सना बस से ये मैसेज हमारे पास आया है, ये जिन्होंने मैसेज भेजा है इनका भी हम फरमाइश पूरी कर चुके हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ये मैसेज हमें भेजा है इन्होंने। अगला मैसेज है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे और कार्तिक खर्चे का, साथ में परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी और इनके परिवार के लोग। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म नीलकमल का ये गीत, जो कि अभिनेता राजकुमार पर फिल्माया गया है।

ओले जी, आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में फिल्म दिल एक मंदिर है का गीत। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरबीत सिंह मीता, ये मेन रोड तेलारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और सुजाता पोहरकार का हमें मैसेज आया है। अगला मैसेज है बिलराम गेट कासगंज से, एम असलम सैफी, जयमनीषा बेगम, अकरम सैफी, जाहिद सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी और आवाद खान का। अगला मैसेज हमारे पास आया है साधो शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। सिद्धेश्वर नगर रेवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और शाबा रामटेके। अगला मैसेज है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का। अगला मैसेज है, ये भेजा है हमें तहसीलसवार पंजाबी कॉलोनी से त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय राठौर, विजय, विनय, विकास, आकाश, शिवांशी, प्रियंका और शिवाय राठौर का। अगला मैसेज है ग्राम पंचायत बैठैना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति और उनके साथी। अगला मैसेज हमें भेजा है गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल ने। ये मैसेज है गांव कलमंडी खुर्द, जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार और समस्त राजपूताना परिवार का। अगला मैसेज है फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया का। अगला मैसेज हमारे पास आया है गनभोला दातागंज बदायूं से इशरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान और अरहान खान ने भेजा है ये। अगला मैसेज है सब्जी मंडी कस्बा उसामा वार्ड नंबर एक बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल, संजय, अनमोल, अंश, करिश्मा, मुस्कान कश्यप का। अगला मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजने वाले हैं छत्तीसगढ़ महासमुंद से कलीम आसमाडोम, सलीम आसमाडोम, यूसुफ आसमाडोम और इनके सभी साथी। गंजडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमशुल कमर राही। और अगला मैसेज हमारे पास आया है, भेजने वाले हैं मौला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफा साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी और फौजिया रोशनी, साथ में इनके परिवार के लोग। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दिल एक मंदिर है का ये गीत।

श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम आगे और बढ़े कार्यक्रम को लेकर। आज का कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि हमारे मशहूर अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया को अलविदा कहेगा, लेकिन अपना अभिनय, अपना जो अदायगी की वो है मोहब्बत, वो हम सब पर छोड़ गए। हमारे दिलों पर आज भी राज करती है उनकी अदायगी। आज का गीत गाता चल कार्यक्रम समाप्त करने की अब अखिलेश सक्सेना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी हम व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल

0: निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिली इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
3: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट BMS इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारी

0: आलोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप। प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की है।
1: स्पोर्ट्स राउंडअप।
2: सभी खेल प्रेमियों को अवधेश गौतम का नमस्कार। स्वागत है आकाशवाणी रामपुर के खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप में, जहां हम बात करेंगे खेल जगत की विभिन्न गतिविधियों की। सबसे पहले बात आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की। 12 जून से इंग्लैंड की सरजमी पर शुरू हुआ 12 टीमों का यह महामुकाबला अब अपने अंतिम और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस साल का वर्ल्ड कप कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। शानदार शतक, रिकॉर्ड, दर्शक और दिल थाम लेने वाले मुकाबले। लेकिन सबसे बड़ी खबर कल रात लंदन के द ओवल मैदान से आई, जहां दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रनों से हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। इंग्लैंड की कप्तान नेट साइबर-ब्रंट ने चोट के बाद वापसी करते हुए 75 रनों की जाबाज पारी खेली और हीथ नाइट के साथ मिलकर चौथे क्रिकेट के लिए रिकॉर्ड 133 रनों की साझेदारी की। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम लोरेन बेल और चार्ली डीन की धारदार गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सकी और इस तरह इंग्लैंड इस पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए सीधे फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में इंग्लैंड का सामना किससे होने वाला है? पारंपरिक प्रतिद्वंदी और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को बड़े ही एक तरफा अंदाज में मात देकर यह साबित कर दिया कि उन्हें क्यों इस खेल का बॉस कहा जाता है। अब आगामी रविवार क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इन दो महारथियों के बीच खिताबी जंग होगी। लॉर्ड्स का मैदान पूरी तरह सोल्ड आउट हो चुका है और वहां अब बात करते हैं उस टीम की जिसके लिए करोड़ों भारतीय फैंस की धड़कने धड़क रही थी, हमारी वुमेन इन ब्लू। कहना पड़ेगा कि इस बार किस्मत और खेल दोनों ने हमारा साथ थोड़ा सा छोड़ दिया। भारतीय टीम का सफर ग्रुप स्टेज में ही खत्म हो गया। 28 जून को लॉर्ड्स के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया मैच करो या मरो का था। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अंत में लगातार 3 छक्के जड़कर एक जुझारू अर्धशतक जरूर बनाया और टीम को 170 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। स्मृति मंधाना और शेफ अली वर्मा ने भी अच्छी शुरुआत दी, लेकिन रन गति थोड़ी धीमी रही। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की धाकड़ बल्लेबाज एलिस पेरी और एशली गार्डनर ने अपनी क्लास दिखाई और 19वें ओवर में ही मैच भारत के हाथों से छीन लिया। साउथ अफ्रीका की बांग्लादेश पर जीत और ऑस्ट्रेलिया से हमारी हार ने भारतीय टीम के सेमीफाइनल के दरवाजे बंद कर दिए। इस वर्ल्ड कप ने हमें कई यादगार पल दिए हैं। ये पहला ऐसा महिला टी20 विश्व कप है जिसमें एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3-3 शतक देखने को मिले। इंग्लैंड की डेनी व्लाट हॉज, श्रीलंका की चमारी अटापट्टू और साउथ अफ्रीका की ताजमीन ब्रिट्स ने इस बार मैदान पर चौके छक्कों की वो बरसात की है कि फैंस झूम उठे। साथ ही आयरलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर 12 साल बाद अपनी पहली वर्ल्ड कप जीत दर्ज की, जो इस खेल की बड़ी ताकत को दिखाता है। अब सबकी नजरें टिकी हैं रविवार। एक तरफ होगी अजय मेजबान इंग्लैंड, जो अपनी धरती पर कभी भी वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं हारी है, और दूसरी तरफ होगी अजय दिख रही ऑस्ट्रेलिया टीम। लॉर्ड्स का मैदान गवाह बनेगा एक नए इतिहास का। भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में शुरू हुई 2026 की बहुप्रतीक्षित टी20 सीरीज 1 जुलाई 2026 बुधवार की वो शाम इंग्लैंड के चेस्टरली स्ट्रीट का ऐतिहासिक रिवरसाइड ग्राउंड, जहां बादलों की लुका छिपी के बीच भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थीं। यह सिर्फ एक सीरीज का पहला मैच नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। विश्व चैंपियन भारतीय टीम अपने नए कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में एक नए इरादे के साथ मैदान पर उतरी थी। टॉस हुआ और सिक्का गिरा कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं रही जैसी हमने उम्मीद की थी। इंग्लैंड की धारदार गेंदबाजी के सामने भारतीय पारी शुरुआत में ही पूरी तरह लड़खड़ा गई। क्रीज पर थे संजू सैमसन और दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज ईशान किशन, लेकिन दूसरे ही ओवर में जब स्कोरबोर्ड पर महज 6 रन टंगे थे, भारत ने अपने दोनों अनमोल विकेट गंवा दिए। सैमसन सस्ते में पवेलियन लौट गए और ईशान किशन बिना खाता खोले रनआउट का शिकार हुए। लेकिन कहते हैं कि असली चैंपियन वही होता है जो दबाव में बिखरने के बजाय निखरना जानता है, और ऐसा ही कुछ हुआ जब क्रीज पर आए युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर। इन दोनों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर ऐसा ताबड़तोड़ पलटवार किया कि चेस्टरली स्ट्रीट का मैदान चौकों और छक्कों की बारिश से भीग गया। अभिषेक शर्मा ने तो जैसे ठान लिया था कि वो आज किसी गेंदबाज को नहीं बख्शेंगे। उन्होंने मैदान के हर कोने में दर्शनीय शॉट खेले और महज 24 गेंदों में 59 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। उनकी इस विस्फोटक पारी में 4 गगनचुंबी छक्के और 6 शानदार चौके शामिल थे। इस पारी के दौरान उन्होंने T20 इंटरनेशनल में अपने 100 छक्के भी पूरे किए। वहीं दूसरी तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर ने बेहद सूझबूझ के साथ एंकर का रोल बखूबी निभाया। उन्होंने 47 गेंदों पर 68 रनों की एक बेहद परिपक्व पारी खेली। इन दोनों के बीच हुई 82 रनों की उस महत्वपूर्ण साझेदारी ने टीम इंडिया को संकट से निकालकर ड्राइवर सीट पर बैठा दिया। बीच के ओवरों में सैम करन और साकिब महमूद ने इंग्लैंड को मैच में वापस लाने की कोशिश जरूर की, लेकिन फिर मैदान पर आया द शिवम दुबे शो। आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने जो आतिशबाजी की उसने इंग्लैंड के खेमे में सच में खलबली मचा दी। दुबे ने महज 21 गेंदों पर 200 के तूफानी स्ट्राइक रेट से नाबाद 42 रन ठोक दिए, 3 आसमानी छक्के और 2 चौके। उनके इस ताबड़तोड़ फिनिश की बदौलत टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रनों का एक बेहद मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड की तरफ से साकिब महमूद 3 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कभी कभी मौसम इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। इससे पहले कि इंग्लैंड की टीम 190 रनों का लक्ष्य का पीछा करते उतर पाती, आसमान से बारिश की फुहार बरस पड़ी। भारी बारिश ने मैच में ऐसी बाधा डाली कि काफी इंतजार के बाद आखिरकार अंपायर्स को मैच रद्द घोषित करना पड़ा। नतीजा नहीं निकला जिसका मलाल हर फैन को है, लेकिन इस मैच ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी कि इस सीरीज में कोई भी टीम हार मानने वाली नहीं है। अब सबकी नजर टिकी है दूसरे T20 मुकाबले पर, जो शनिवार यानी कि कल मैनचेस्टर के ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। आज तारीख है 3 जुलाई 2026 और आज जन्मदिन है उस जादू स्पिनर का जिसने अपनी घूमती गेंदों से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाए। आज जन्मदिन है हमारे अपने भज्जी यानी कि हरभजन सिंह का। पंजाब के जालंधर से निकलकर एक आम सा लड़का कैसे क्रिकेट की दुनिया का टर्मिनेटर बन गया, इसकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। 1998 में जब 17 साल के हरभजन ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये स्पिनर आगे चलकर भारतीय क्रिकेट की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। शुरुआती संघर्ष के बाद उनका असली जादू दिखा साल 2001 में। 2001 की वो ऐतिहासिक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, स्टीव वॉ की अजय ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे पर आई थी जो लगातार 15 टेस्ट मैच जीत चुकी थी। पहले टेस्ट के बाद लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया हमें आसानी से रौंद देगा, लेकिन फिर ईडन गार्डन्स के मैदान पर भज्जी का वो तूफान आया जिसने क्रिकेट का इतिहास पलट कर रख दिया। हरभजन सिंह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। उन्होंने रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉन को लगातार 3 गेंदों पर आउट किया। उस पूरी सीरीज में भज्जी ने अकेले 32 विकेट झटके। वो सिर्फ एक सीरीज जीत नहीं थी, वो भारतीय क्रिकेट का पुनर्जन्म था और यहीं से उन्हें नाम मिला द टर्मिनेटर। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और फैंस उनके इस रद्द रूप से इतने खौफ में थे कि उन्होंने भज्जी को टर्मिनेटर कहना शुरू कर दिया। खासकर महान बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग के लिए तो भज्जी किसी बुरे सपने से कम नहीं थे, जिन्हें उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10 बार अपना शिकार बनाया। 2001 के बाद तो भज्जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेग स्पिनर अनिल कुंबले के साथ मिलकर उनकी जोड़ी ने दुनिया के हर कोने में भारत को जीत दिलाई, चाहे वो 2007 का पहला T20 विश्व कप हो या फिर 2011 का वो यादगार वनडे विश्व कप। हरभजन सिंह हमेशा टीम इंडिया के सबसे बड़े संकटमोचक रहे। पाकिस्तान के खिलाफ उनका वो एग्रेशन या 2011 विश्व कप जीतने के बाद मैदान पर तिरंगा लपेट कर रोते हुए भज्जी की वो तस्वीर हम सबके दिलों में आज भी छपी है। अगर हम हरभजन के आंकड़ों की किताब खोलें तो वो किसी भी लेजेंड को टक्कर देते हैं। 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट और 236 वनडे मैचों में 259 विकेट। T20 इंटरनेशनल में भी उनके नाम 25 विकेट दर्ज हैं। और हाँ, सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, भज्जी अपनी बल्लेबाजी से भी मैच का रुख पलटना बखूबी जानते थे। 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट शतक जड़ना इस बात का सबूत है कि वो एक सच्चे फाइटर थे। इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा IPL में भी भज्जी का जलवा हमेशा कायम रहा। मुंबई इंडियंस के साथ उन्होंने एक लंबा सफर तय किया, 10 साल तक टीम की धुरी बने रहे और कई बार IPL ट्रॉफी उठाई। बाद में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए भी उन्होंने अपनी उम्र को महज एक नंबर साबित किया। आईपीएल में 150 विकेट लेकर उन्होंने टी20 फॉर्मेट में भी अपनी बादशाहत कायम रखी। आज जब हरभजन सिंह कमेंट्री बॉक्स में हमें क्रिकेट का हाल सुनाते हैं तो उनकी आवाज में वही पुराना जोश और वही आक्रामकता झलकती है जो कभी मैदान पर हुआ करती थी। क्रिकेट के मैदान पर उनका वो जुनून बल्लेबाजों से आंखें मिलाना और विकेट लेने के बाद छाती ठोककर उनका वो ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन, ये सब भारतीय क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल सकते। हरभजन सिंह को उनके 46वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्सर जब हम भारतीय खेलों की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्रिकेट के मैदान, हॉकी की स्टिक्स या कुश्ती के अखाड़े आते हैं, लेकिन आज बात होगी पानी की उन लहरों की जिन्हें चीरते हुए भारत के दो वीर सपूतों ने ऐसा इतिहास रचा है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। आज का दिन भारतीय रोइंग के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। लक्ष्य और उज्ज्वल कुमार सिंह की जादुई जोड़ी ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर सका। स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न में चल रहे 2026 विश्व रोइंग कप 3 में हमारे इन जांबाजों ने मेंस लाइटवेट डबल्स स्कल्स इवेंट में भारत के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। ल्यूसर्न की वो खूबसूरत रोटसी झील जिसे दुनिया भर में रोइंग का मक्का कहा जाता है, आज वहां भारतीय तिरंगा सबसे ऊपर शान से लहरा रहा था जब विश्व के सर्वश्रेष्ठ रोअर्स के खिलाफ लक्ष्य और उज्ज्वल की नाव पानी में उतरी। लाइटवेट डबल स्कल्स कोई आसान रेस नहीं होती। इनमें खिलाड़ियों को न सिर्फ अपने शरीर का वजन एक तय सीमा में रखना होता है बल्कि गजब का स्टैमिना और दोनों साथियों के बीच एक परफेक्ट तालमेल का सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है। शुरुआत से ही इन दोनों ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। जैसे जैसे रेस आगे बढ़ी उनके चप्पुओं की हर एक स्ट्रोक पानी पर नहीं बल्कि उन सभी आकांक्षाओं पर वार कर रही थी जो भारतीय रोइंग को कमजोर मानती थी। आखिर के 500 मीटर का वो रोमांचक पल जब फेफड़े जवाब देने लगते हैं, मांसपेशियां दर्द से चीखने लगती हैं, जब इन दोनों ने अपनी स्पीड को जिस तरह से बढ़ाया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा था। उन्होंने दुनिया के दिग्गजों को पछाड़ते हुए फिनिश लाइन पार की और इतिहास रच दिया। यह सिर्फ गले में पहने जाने वाला एक सोने का मेडल नहीं है, यह उन तमाम रातों के पसीने का नतीजा है जब पूरी दुनिया सो रही थी और ये दोनों पानी पर अपनी नाव को और तेज भगाने की प्रैक्टिस में लगे हुए थे। भारत में रोइंग जैसे खेल कभी लाइमलाइट में नहीं रहे, लेकिन लक्ष्य और उज्ज्वल ने साबित कर दिया कि अगर सीने में आग हो तो किसी भी खेल में, दुनिया के किसी भी कोने में भारत का झंडा फहराया जा सकता है। और अब एक नजर खेल जगत की कुछ अन्य गतिविधियों पर। भारतीय टेनिस में सुमित नागल ने इंटारो ओपन 2026 का खिताब जीतकर अपने 2 साल के खिताबी सूखे को खत्म कर दिया। दीप्ति शर्मा महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 356 विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी और इसी के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया और साथ के साथ झूलन गोस्वामी का महारिकॉर्ड भी तोड़ा। भारत ने एवीसी पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 में बहरीन को 3-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अनिमेश कुजूर ने 65वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ 20.87 सेकंड्स में पूरी कर 2026 एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया और इसी चैंपियनशिप के अंतर्गत देव मीना ने 5.46 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर 2026 एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2026 में अभय सिंह और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी ने पुरुष युगल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। रामपुर जो हमेशा से अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, खेलों की दुनिया में भी किसी से पीछे नहीं है। खास तौर पर जब बात फुटबॉल की आती है तो यहाँ के युवाओं का जुनून और मैदानों की रौनक देखते ही बनती है। इस खेल को जिले में नई ऊंचाइयों पर ले जाने और उभरते हुए खिलाड़ियों को एक सही मंच प्रदान करने के पीछे कई समर्पित लोगों की कड़ी मेहनत छुपी है। हमारे साथ एक ऐसी ही अहम शख्सियत मौजूद है जो रामपुर के फुटबॉल के विकास और खिलाड़ियों के भविष्य को संवारने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अनीस अहमद, जो जिला फुटबॉल संघ रामपुर के सचिव हैं, और उनसे बात की है हमारे सहयोगी सुहेल जैदी ने।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुहेल जैदी। आज हम बात करेंगे अनीस अहमद साहब से, जो कि फुटबॉल संघ के सचिव हैं और 2008 में नेशनल कैंपिंग भी कर चुके हैं। इसके अलावा फुटबॉल के कोच भी हैं और प्रयासरत हैं कि फुटबॉल को ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, थोड़ा फीफा चल रहा है इस वक्त, फीफा के बारे में थोड़ा सा अनिश जी हमारे श्रोताओं को बताएं।
3: जी, फीफा वर्ल्ड कप जो कि 3 देशों में खेला जा रहा है, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में, और जिसमें कि अब राउंड 32 चल रहा है। तो पिछली बार जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 32 टीमें थीं, लेकिन इस बार फीफा ने टीमों की संख्या बढ़ाकर 48 कर दी। तो लेकिन दुख इस बात का है कि 48 टीमों में भी हमारा देश फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है, और हम चाहते हैं कि अब जो 2030 में वर्ल्ड कप हो उसमें हमारी इंडियन टीम भी फुटबॉल वर्ल्ड कप खेले। और इंडिया में बहुत क्रेज़ है फुटबॉल को लेके, बहुत सारे यूथ जो हैं फुटबॉल खेलना चाहते हैं, वो रोनाल्डो, मेसी, एम्बापे और अदर जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं उनकी तरह बनना चाहते हैं और उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ कमियां हैं हमारे देश में थोड़ी सी, जो अगर उन पे ध्यान दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इंडिया भी एक दिन ज़रूर फीफा वर्ल्ड कप में खेलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इंडिया में एक ही लीग होती है, आई लीग, जो कि सीनियर लेवल पे होती है। हमें चाहिए कि हमारे जो भी एसोसिएशन हैं, जो हमारे फेडरेशन हैं, उनको चाहिए कि वो ग्रास रूट से भी लीग शुरू कराएं, जिससे कि अपकमिंग फुटबॉलर्स पैदा हों इंडिया में। अंडर 12 है, 14 है, अंडर 17 है, 19 है, ये सारी लीग्स होंगी तो प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, और जिससे कि इंडिया की फुटबॉल ग्रास रूट से ही मजबूत होगी। तो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, सब तरफ उसका क्रेज है, और ख़ासकर यूथ लड़कों में तो बहुत ज़्यादा क्रेज है। वो बहुत अपनी अपनी टीमों को पसंद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा है, कोई पुर्तगाल को कर रहा है, कोई फ्रांस को कर रहा है, कोई मोरक्को को कर रहा है। तो इंडिया में बहुत सारे लड़के हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी एक दिन अच्छे फुटबॉलर बने। तो वर्ल्ड कप का ये माहौल है।

0: सिखाएं, फुटबॉल की जो बारीकियां हैं वो सिखाएं, उनकी स्किल्स पे हम मेहनत कराते हैं, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कराते हैं। तो हमारा प्रयास है, जिला फुटबॉल एसोसिएशन का मैं सचिव हूँ, तो उसके उस लेवल से भी और अपनी एक एकेडमी है, फुटबॉल एकेडमी है, उसके माध्यम से हम फुटबॉल रामपुर ज़िले में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि फुटबॉल ज़्यादा से ज़्यादा यूथ खेलें और नशे से बचें। मोबाइल का जो एक नशा है ये सबसे बुरा नशा है, इससे बच्चे बचें और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से बच्चे बहुत दूर हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे शहर के, हमारे जनपद जिले के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और उनके पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, और बच्चे बहुत सारे नशों में पड़ जाते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप उनको स्टेडियम में लाइए और कोई भी खेल है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि केवल फुटबॉल में, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, अदरवाइज बहुत सारे गेम्स हैं और बहुत सारे हमारे बच्चे स्टेट लेवल पे खेल चुके हैं, बहुत से बच्चे हमारे प्रोफेशनल जो इंडिया में क्लब हैं उनके ट्रायल दे रखे हैं उन बच्चों ने। तो हमारा प्रयास है और बाकी और लोगों का भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसी सपोर्ट मिलता रहा तो हम एक दिन इंशाल्लाह बहुत आगे ले जाएंगे रामपुर की फुटबॉल को। 300-400 बच्चे हमने 2 साल में फुटबॉल के तैयार कर दिए हैं, जिसमें से करीब 30 बच्चों ने स्टेट चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया है अपने मंडल मुरादाबाद की ओर से। कम से कम 15 बच्चे अलग अलग प्रोफेशनल क्लब, बेंगलोर FC है, इंटर काशी है और दिल्ली के बहुत से क्लब हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एकेडमी में एडमिशन देते हैं, उनके भी ट्रायल दिए हैं। तो ऐसी बच्चों में स्कोप बढ़ रहा है, हमारा प्रयास है और हम समझते हैं कि हम उसमें सफल भी हो रहे हैं और आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे, और उम्मीद है एक दिन हमारा देश अभी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलेगा और हमारे शहर का भी कोई बच्चा हमारी इंडिया टीम में ज़रूर होगा।
1: अच्छा, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से आपने फुटबॉल खेलना शुरू किया, किस उम्र से, कैसे आप नेशनल कैंप तक पहुँचे, हमारे श्रोताओं को बताएं इस बारे में।
0: देखिए, मैं शुरू से फुटबॉल खेलता था, लेकिन मैं जो खेलता था वो यहीं कहीं स्कूल में या कहीं मैदान में खेल लिया, हमारे पास कोई कोच नहीं था। उसके बाद शहीद आज़म स्पोर्ट स्टेडियम में पता चला, वहाँ एक कोच आए हुए हैं जनाब नूर हसन साहब, जो कि NIS पटियाला से करके आए थे और एक रामपुर के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे। तो जब हमें पता चला कि वो वहाँ कोचिंग दे रहे हैं, तो हम वहाँ उनसे प्रशिक्षण प्राप्त किया, उन्होंने बहुत मेहनत कराई, धीरे धीरे हम Under-16 के कम से कम 4 स्टेट खेले, उसके बाद Under-19 के स्टेट खेले, और Under-19 में मेरा सिलेक्शन पूरे मंडल से UP की टीम के कैंप के लिए हुआ, जो कि मैंने 21 दिन का कैंप बनारस में सिगरा स्पोर्ट स्टेडियम में किया, लेकिन मैं वहाँ इंजर्ड हो गया, इसलिए UP टीम में लास्ट डे मैं जगह नहीं बना पाया। पुलिस जोनल मैंने खेला 2 साल, पुलिस जोनल भी खेला, बाकी बहुत सारे क्लब्स टूर्नामेंट खेले, बहुत सारे प्रोफेशनल टूर्नामेंट खेले। उसके बाद 2021 में हमें फुटबॉल उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ की ओर से हमें ज़िले का फुटबॉल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, तो फिर ये देखा कि कैसे फुटबॉल को बढ़ाना है, जो काम हम नहीं कर सके वो कैसे हमें अपने रामपुर शहर के बच्चों से कराना है, तो उसी प्रयास को आगे लेकर हम चल रहे हैं, और उसी के तहत हमने एक फुटबॉल एकेडमी जिसका नाम रामपुर स्पोर्टिंग फुटबॉल एकेडमी है उसका गठन किया, जिसमें मैं समझता हूं कि पहले बैच में 40 बच्चे थे, उसके बाद दूसरे बैच में 90 बच्चे हो गए थे, उसके बाद करीब हम 130 बच्चों को एक साथ प्रशिक्षण दे रहे थे सुबह शाम में, और उसमें से हमारे बहुत से बच्चे इंटर यूनिवर्सिटी खेले जो सीनियर थे, बहुत से बच्चों ने राष्ट्रीय कैंप भी किए हैं, और मैं समझता हूँ बहुत से बच्चों ने करीब 20-22 बच्चे हमारे Under-16, Under-19, Under-20 में स्टेट चैम्पियनशिप में प्रतिभाग कर चुके हैं, जिसमें मैं अगर नाम आपको बताऊं तो मोहम्मद शुएब हैं, नमन मेहता हैं, अर्शलान हैं, अली जैदी हैं,

0: जान हैं, शेखर हैं, शेखर जूनियर हैं, शबाब खां गोलू हैं और आपके अयान सिद्दीकी हैं और बहुत से लड़के, मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे हैं जो कि स्टेट, ये सब बच्चे अंडर 14 के हैं जिन्होंने स्टेट फुटबॉल चैम्पियनशिप में प्रतिभाग किया। और इसमें शबाब खां गोलू का जो चयन है वो बेंगलोर FC की अंडर 14 कैंप के लिए हो गया था, लेकिन किसी वजह से वो वहाँ जा नहीं पाए। ये इस बात का भी मुझे बहुत दुख है कि वो एक अच्छी जो उनको रास्ता मिला था वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। बाकी हमारे बहुत से बच्चे अभी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, अंडर 12 से लेके अभी हमारे पास अंडर 17 तक के बच्चे हैं जिनको हमारी एकेडमी और ज़िला फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
1: क्या संदेश है खिलाड़ियों के लिए आपका, और ख़ासकर फुटबॉल को लेकर क्या लगता है आपको भविष्य में, क्या इसका खेल का कहाँ तक पहुँचेगा?
0: नहीं देखिए, फुटबॉल का तो यह है कि फुटबॉल एक ऐसा अकेला खेल है कि जो पूरी दुनिया में खेला जाता है। हमारा तो देश बहुत बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है, लेकिन जो छोटे छोटे मुल्क हैं जिनकी आबादी 5-10 लाख है, तो देखने में आया कि उनकी टीमें अभी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन हमें दुख भी होता है और इस अफसोस भी है कि हमारा इतना बड़ा मुल्क है और किसी से कम नहीं है, महान मुल्क है हमारा, लेकिन हमारी टीम फुटबॉल की उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन भविष्य बहुत सुनहरा है फुटबॉल का, और फुटबॉल केवल यूं ही नहीं खेली जाए कि वो आप किसी लेवल पे पहुंचे, ये आपका मानसिक शारीरिक और आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। फुटबॉल टीम वर्क है जिससे कि आप प्यार मोहब्बत सब कुछ सीख सकते हैं, कि स्कूल की तरह एक ऐसा खेल है फुटबॉल कि वो एक स्कूल की तरह आप अगर फुटबॉल खेलें तो डिसिप्लिन आपके अंदर इतना आ जाएगा, तो जो एक स्कूल में सिखाया जाता है मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा आप एक ग्राउंड में डिसिप्लिन सीख सकते हैं। तो मेरा संदेश यही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे आएँ, और कोई भी माँ के पेट से खिलाड़ी नहीं होता या सीख के नहीं आता। नेमार, मेसी, रोनाल्डिनियो, रोनाल्डो, एम्बापे, ये सब गरीब परिवारों से हैं और आज देखिए कि उनके कितने फॉलोवर्स हैं और वो किस तरह से फुटबॉल खेलकर कितना नाम कमा लिया है उन्होंने। तो कोई भी, मैं समझता हूँ निराश, कोई भी बच्चा निराश ना हो, अगर उसमें टैलेंट है तो ऊपर वाला भी उसका साथ देता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फुटबॉल कोच और फुटबॉल संघ के सचिव अनीस अहमद से ये बातचीत।
2: आकाशवाणी रामपुर के खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप में आज इतना ही। कार्यक्रम के अगले अंक में फिर से हाजिर होंगे खेल जगत की विभिन्न गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए अवधेश गौतम को दीजिए अनुमति।
3: स्पोर्ट्स राउंडअप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप, प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।
5: अरे अरे सुनो, एक्सीडेंट हो गया।
6: अरे अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट।
7: अरे भाई कोई 100 नंबर डायल करो, 100 नंबर, 100 नंबर डायल करो भाई साहब, जल्दी जल्दी।
8: 100 पे नहीं, 108 लगाओ, 108
7: नहीं, 112 लगाओ।
9: अरे भाई इसकी जान चली जाएगी, आप लोग एक ही नंबर बताओ, बार बार कंफ्यूज मत करो।
7: अरे भाई एक ही नंबर पर सारे काम, 112 लगाए, तत्काल पुलिस बुलाए, फायर एम्बुलेंस की सर्विस तुरंत पाए।
10: हेलो 112।
11: नमस्कार, 112 UP
10: गांधी समाधि रामपुर पर एक्सीडेंट हो गया है,
11: कृपया अपना शुभ नाम बताइए।
10: सुनील।
11: एम्बुलेंस के साथ साथ आपको पुलिस और फायर की भी जरूरत है?
10: नहीं सर, सिर्फ एम्बुलेंस की।
11: आपको सहायता शीघ्र भेजी जा रही है, डायल 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
12: तो सुना आपने, अब 112 पर मिलेगी आपको जीवन रक्षा संबंधी हर आपातकालीन सेवा। SMS करें या कॉल, ईमेल भेजें या 112 इंडिया मोबाइल ऐप पर मिलेगी आपको तुरंत सहायता। अब सिर्फ एक ही नंबर याद रखें, 112, और समझदारी से काम लें।
3: प्लास्टिक चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
6: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
3: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
6: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
13: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
6: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
14: Say no to plastic।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन कार्यक्रम हेलो रामपुर।

0: हेलो रामपुर कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। रात्रि के 10 बज चुके हैं और आपका इंतज़ार भी बेसब्री से जो था वो समाप्त हो गया है। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। किस नंबर पर आपको कॉल करना है नंबर सुन लीजिए, 0595-232-4326। इस पर आपको कॉल करना है। आज आपके साथ है आपका साथी अखिलेश सक्सेना। देखते हैं पहली कॉल किसकी है, आइए बात करते हैं। हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, लिस्टी फूकाबाद उत्तर प्रदेश। सर जी, कम से कम आपसे मेरी बात हो रही है, दो तीन साल बाद बात हो रही है। सर जी बहुत धन्यवाद आए उसके लिए।
0: जी क्या करते हैं आप?
1: मैं तो सर खेती बाड़ी करता हूँ सर जी।
0: आपकी तरह बारिश हो रही है?
1: हाँ सर जी, बारिश हो रही थी दो दिन से लगातार बारिश तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ घंटा दो तीन घंटा हुई थी बारिश, तो सर्दी गर्मी का रात मिल गया।
0: चलिए अच्छी बात है, बारिश मानसून आ चुका है, हो ही जाएगी। आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ सर जी, क्या कहना चाहता हूँ, आप जिन्हें प्रोग्राम करने आया करो तो आपसे कम से कम बताई नहीं, दो तीन साल बाद बात हो रही है। पहले आते थे तो आपका बहुत इंतजार रहता है, हमने सर जी आ गए तो मेरा।
0: चलिए अच्छी बात है, आपकी कॉल लग गई है और आप बहुत लकी हैं। इससे पहले कि कुछ डिस्टर्बेंस आए, आप सब अपनी पसंद का गीत बताइए, कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: तेरे नाम फिल्म का कोई सॉन्ग प्ले कर दीजिए, सब चलेगा।
0: ठीक है, हम आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म तेरे नाम का ये गीत। हाँ बताएं
1: सर। सबसे पहले आपके लिए गान डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्यों आप बहुत धन्यवाद आए इसलिए, और लखविंदर गुजर रहेंगे मध्य प्रदेश से, और अनुपम भट्टाचार्य जी यही है, और जिससे तो आप धन्यवाद सबको गान डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ठीक है, हम आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनेगा।
1: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हम तो वफा निभा रहे हैं आपके साथ, आपकी कॉल ले रहे हैं बराबर, और हमारे साथी बराबर कॉल कर रहे हैं 0595-2324-326 पर। आज मैं आपके साथ अखिलेश सक्सेना आपसे मुखातिब हूं। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम हेलो रामपुर, बात करते हैं अगले साथी से। हेलो,
1: हेलो रामपुर।
0: हाँ हेलो रामपुर, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम मिलक बुछुरा सा बड़ी मस्जिद के पास से रजा हुसैन बोल रहे हैं सर जी।
0: रजा हुसैन, बातें बाद में करेंगे आपसे, पहले आप ये बताइए कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गाने बोलो रहेंगे प्यार हो न जाए कहीं प्यार हो न जाए।
0: गीत आपने पसंद अच्छा किया है। ये बताइए रजा हुसैन क्या करते हैं आप?
1: हम खेती किसानी करते हैं, ऑटो भी चलाते हैं सर जी।
0: अच्छा, म्यूजिक का शौक है
1: जी? सर आपको मालूम है मेरे लेटर बराबर मिलते हैं, काफी समय से आकाशवाणी रामपुर पुराने
0: अच्छा,
1: में सोता हूं मैं।
0: आज आपसे ये पूछेंगे बॉलीवुड में किस हीरो को आप आदर्श मानते हैं, कौन सा हीरो आपको पसंद है? पुराने बात कर रहा हूँ, पुराने एक्टर्स में।
1: पुराने जैसे अमिताभ बच्चन है
0: जी,
1: और उनके साथ साथ ऋषि कपूर है।
0: आज हमने गीत गाता चल में एक पुराने एक्टर्स के ऊपर फिल्माए गए फिल्मी गीत सुनवाए थे आप सभी की पसंद पर, और आज उनकी पुण्यतिथि भी है। आपने प्रोग्राम सुना था?
1: सर मैं अपने इस टाइम धान बुवाई चल रही तो मैं खेत में था।
0: अच्छा अच्छा, आज राजकुमार की पुण्यतिथि है
1: जी। जी सर,
0: चलिए अच्छी बात है, आप पुराने गीतों को भी पसंद करते हैं, नए गीतों को भी पसंद करते हैं, हमारे केंद्र के कार्यक्रम भी सुन रहे हैं। तो आज हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत फिल्म बिच्छू से, सुनिएगा। हाँ बोल सकते हैं।
1: मेरा भाई साहिद हुसैन, छोटा भाई आदिल हुसैन, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मकसूद हुसैन, लाल मोहम्मद अंसारी, दोस्त आप और हम।
0: ठीक है, हम आपके और आपके दोस्तों की पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म बिच्छू का ये गीत, लीजिए सुनिएगा।
1: थैंक यू सर।

हेलो हेलो हेलो हेलो लगता है कॉल कट गई है। कोई बात नहीं, श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो रामपुर आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। सुनते रहिए और हमें कॉल करते रहिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0595 2324 326।

0: हेलो।
1: हाँ जी, हेलो रामपुर।
0: हाँ हेलो रामपुर
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जिला अमरोहा नई बस्ती से बाहर लसन सिद्दीकी बोल रहे हैं जनाब।
0: बाहर लसन सिद्दीकी जी, कैसे हैं? बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है।
1: हाँ, इस प्रोग्राम में आपके साथ काफी लंबा समय हो गया, तो हमने आपको आज मौका मिला तो बात हो रही है।
0: अच्छा जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे? पहले गीत बता दीजिए आप।
1: हाँ, जहाँ तक पसंद का सवाल था, फूल बने अंगारे की गाने था, गोरी कब से हुई जवानी गाने के बोलते।
0: अच्छा, गोरी कब से हुई जवान, फूल बने अंगारे की, बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया है। बहरुल भाई, गर्मी बहुत पड़ रही है, मानसून आ चुका है, तो आपकी तरफ क्या मौसम है?
1: देखिए, इस टाइम पर तो बादल हैं।
0: अच्छा,
1: परसों हुई थी
0: बिल्कुल।
1: अच्छा अच्छा,
0: इस बार मानसून थोड़ा लेट हुआ और गर्मी भी काफी पड़ी, और आप देख रहे हैं यूरोप में भी गर्मी काफी पड़ रही है। आप समाचार पत्रों में भी पढ़ रहे होंगे या न्यूज में देख रहे होंगे। ये जो मौसम चक्र गड़बड़ा गया है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप?
1: देखिए, हम लोग हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: पर्यावरण के बारे में जैसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो ज्यादा हरियाली।
0: तो आज आपको मौका मिला है, आप साथियों से इस रेडियो के

0: जिससे सारे मैसेज सबके शामिल भी हुए हैं, लेकिन क्या हुआ कि मैसेज इतने आते हैं, धीरे धीरे धीरे समय खत्म हो गया प्रोग्राम का और आपका मैसेज नहीं शामिल हो पाया। कोई बात नहीं, अगली बार शामिल होगा। और जब जब आपने ध्यान से प्रोग्राम सुना होगा तो ये भी पता होगा कि हमने जो आज का गीत गाता चल प्रोग्राम है, आप सभी की पसंद पर किन्हीं दो कलाकारों के ऊपर श्रद्धांजलि दी है हमने, बॉलीवुड के दो कलाकार हैं। जी हाँ जी हाँ, आज उनकी पुण्यतिथि है, बहुत ही अजीम शख्सियत थे दोनों। आज आपकी पसंद में हम आपको गीत सुनवा रहे हैं फिल्म फूल भरे अंगारे का, आली जैसे। हाँ बताइए।
1: जैसे मोहम्मद आलम सिद्दीकी हैं, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी हैं, पीटी अली सिद्दीकी, शिवान सिद्दीकी, नाविया सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासिन अंसारी, सुदेश जान, अतीफ सोफी, दानी सिद्दीकी, मेजबिर हुसैन से, इकराम प्रेमी का रामपुर सर, सोलापुर मुरादाबादी हैं, राशिद अंसारी, पागवाड़ा से मुजाहिद अंसारी और इरफान खान साहब हैं, थाना सिंह मोहल्ले।
0: ठीक है, हम आपके और आपके दोस्तों की पसंद पर फिल्म फूल वाले अंगारे का ये सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिएगा।
1: धन्यवाद।
0: ओके।

0: हेलो।
1: हेलो सर,
0: हाँ हेलो, रामपुर कौन बोल रहे हैं?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जिला रामपुर ग्राम नरवाली मस्जिद के पास शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ।
0: शबनम अब्बासी, काफी दिनों के बाद आपका कॉल लगा है हेलो रामपुर में, यानी कि हमसे जो बात हो रही है काफी दिनों के बाद हो रही है।
1: जी सर, ये बात आपने सही कही। और सर मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई।
0: चलिए कोई बात नहीं, जिंदगी में व्यस्तता तो लगी रहती है। आज सबसे पहले बताइए कौन सा गीत सुनेंगी, किस फिल्म का?
1: हम वो नहीं जो मतलब से याद किया करते हैं, हम वो नहीं जो मतलब से याद किया करते हैं, आपका प्यार आए ना आए हम आपको दिल से याद किया करते हैं सर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: सर फिल्म का नाम हमको तुमसे प्यार है, और गाने के बोल भी यही है हमको तुमसे प्यार है। सर दो नाम है।
0: हाँ बताएं।
1: समय समा परवीन, हाजी गफ्फर खान, शर्म सारू नूर अंसार।
0: चलिए आपकी और आपके जानने वालों की पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म हमको तुमसे प्यार है का ये गीत।
1: थैंक यू सर।

0: हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं जीशान वारसी बात कर रहा हूँ, सिंधौली मीरगंज जिला बरेली से।
0: सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी आप बात कर रहे हैं, कैसे हैं जीशान भाई?
1: सर मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताएं। आकाशवाणी रामपुर में सभी लोग कहते हैं।
0: आकाशवाणी रामपुर में सब बढ़िया हैं और हमारा बस गर्मी से जूझ रहे हैं क्योंकि आज उमस बहुत थी। आपकी तरफ मीरगंज में क्या हाल रहा?
1: सर आज बारिश, मीरगंज के आधी मीरगंज में बारिश हुई है और आधी साइड में बारिश नहीं हुई है।
0: अच्छा जी, अच्छा जी, बादलों की
1: अटकी कह सकते हैं कि खुदा की कुदरत है कि आधे मीरगंज में बारिश हुई और आधे में नहीं हुई।
0: यही तो मजा आता है बादलों की अटखेलियां में कि सामने बारिश पड़ रही होती है और हम नहीं भीग रहे होते, या हम भीग रहे होते हैं और सामने वाले सूखे होते हैं। ये एक अलग मजा होता है बादलों का मानसून के समय। आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सर आज मुझे गीत सुना है, फिल्म का नाम है नीलकमल और गीत के बोले हैं तुझको पुकारे मेरा प्यार। और इस गीत को सुनना चाहेंगे मेरे साथ अरूला मुरादाबाद से अयूब खान, चंदौली मीरगंज से इमरान शेख और बाकी आकाशवाणी रामपुर को सुनने वाले सभी दोस्त।
0: बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया है और ये राजकुमार जी पर फिल्माया गया है जो हमारे अभिनेता रहे हैं। और जीशान जी, आपको याद होगा अगर आपने गीत गाता चल कार्यक्रम सुना होगा रात्रि 8 बजे, तो हमने बताया था कि आज अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि भी है।
1: बिल्कुल सर, मैंने पूरा प्रोग्राम सुना था और आपने जो बीच बीच में जो जानकारियां दी थी राजकुमार जी पर, वो बहुत ही अच्छी लगी।
0: हाँ, कुछ ऐसा ही प्रयास रहता है कि आपकी पसंद भी शामिल हो जाए और कुछ जानकारी मिल जाए और प्रोग्राम इंटरेस्टिंग बन जाए, ये हमारा प्रयास रहता है, हमारे साथियों का। आपको पसंद रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपका इंतजार रहता है, आपके पत्रों का, आपका पत्र मिला कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल सर,
0: ठीक है, हम आपकी और आपके दोस्तों की पसंद पर फिल्म नीलकमल का ये गीत सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिएगा।
1: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो रामपुर, आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से, और आप करते रहिए कॉल। हमारा नंबर है 0595-2324-326। लेकिन एक गुजारिश है, जिन साथियों का कॉल शामिल हो चुका है, वो गीत सुन चुके हैं, कृपया दोबारा कॉल ना करें, अपने साथियों को मौका दें। आपके परिवार में और दूसरे साथी जुड़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। बात करते हैं अगले साथी से। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ हेलो रामपुर
1: जी। हेलो रामपुर। नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर।
0: छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं आप सतीश जी, कैसा मौसम है? उम्मीद है इस समय शायद बारिश हो रही है वहाँ पर।
1: सर जी हमारे यहाँ बारिश तो सर कल से हो रही है और अभी सुबह से भी हुई सर, अभी 4 बजे से बारिश नहीं हो पा रही है अभी। बढ़िया,
0: कोई बात नहीं, मानसून आपके मध्य प्रदेश में पूरा छाया हुआ है चारों ओर, और आपका छिंदवाड़ा भी इससे अछूता नहीं है, और अगर बारिश रुक गई तो कोई बात नहीं, कुछ देर में रात में बारिश फिर आ जाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा सर क्यों कल से चालू सर, अभी थोड़ा रात मिल गई।
0: जी जी, आपके मध्य प्रदेश में इंदौर, जबलपुर, भोपाल ये सब मानसून से छाया है, आच्छादित है इस समय, बहुत अच्छा मौसम है मध्य प्रदेश का। आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: सर जी आप मुझे सुनो दीजिए, फिल्म का नाम है सर हम आपके हैं कौन।
0: अच्छा, कौन सा गीत?
1: इसका गीत है सर दीदी तेरा देवर दीवाना है राम गुड़ियों को डाले जाना, ये वाला गीत सुनना सर जी।
0: बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया है। सतीश जी हमारे केंद्र के कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं?
1: सर जी आपके केंद्र के कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी, इसमें मेरे को सबसे फेवरेट लगता है सर आपका हेलो रामपुर।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, और कार्यक्रम को भी सुनिए।
1: गाड़ी भी सुनते हैं सर जी आपका, बहुत अच्छा लगता सर।
0: और एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम जिसमें मनोरंजन भी साथ में है सुबह सवेरे 7:31 पर, उसको भी जरूर सुनिएगा, उसमें बहुत अच्छी जानकारियां आपको दी जाती हैं।
1: जी जी बिल्कुल सर जी।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत फिल्म हम आपके हैं कौन से, लीजिए सुनिएगा।
1: और कुछ दोस्तों से डेडिकेट कर सकते हैं?
0: हाँ बताएं।
1: पहले हमारे गुड़बन कड़ू जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, आत्मराम पाटिल जी हैं, नारायण प्रधान जी हैं, शाहरुख नूर अंसारी जी हैं सर, और सुनने वाले सर सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है, हम आपके और आपके दोस्तों की पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत, लीजिए सुनिएगा
1: जी। थैंक यू सर।
0: ओके।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर सर, नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? सर
0: बढ़िया है, आप सुनाएं। कौन बोल रही हैं?
1: मैं पूनम बोल रही हूँ, कानपुर से सर। जी
0: कानपुर से पूनम।
1: सर,
0: अच्छा जी, पूनम कैसी हैं आप?
1: जी सर, बहुत बढ़िया हूँ। और आज बहुत दिनों बाद आकाशवाणी रामपुर में आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हाँ जी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद आप भी ऑल इंडिया रेडियो से या किसी आरजे प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं।
1: जी हाँ सर, बिल्कुल, मैं भी फोन प्रोग्राम करती हूँ रेडियो आर एफ में, तो
0: अच्छा अच्छा
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: आकाशवाणी रामपुर सुनती हैं आप?
1: सर, सुनते हैं आकाशवाणी रामपुर से जो कार्यक्रम आते हैं, जो रामपुर आता है, युवाओं के लिए कार्यक्रम आता है, और
0: अच्छा,
1: दोपहर में आता है कार्यक्रम शनिवार को 1:30 बजे से। तो
0: कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको आजकल?
1: जी सर, कार्यक्रम तो सभी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगता है सुनकर, और आकाशवाणी रामपुर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और काफी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते हैं सर।
0: कभी आपने पत्र नहीं लिखा, ईमेल नहीं किया?
1: ईमेल करने के लिए समय कम मिल पाता है।
0: कोई बात नहीं, रात के समय जब आप सोने के लिए जा रही हो तो अपना ईमेल ड्राफ्ट में सेव कर लीजिए और संडे के दिन आप हमें भेज दीजिएगा, आपका पत्र शामिल हो जाएगा, ईमेल शामिल हो जाएगा।
1: जरूर कोशिश करेंगे कि संडे के दिन हम आपको मेल कर सकें।
0: क्योंकि देखिए,
1: और
0: पत्र लिखने के लिए समय हाँ निकालना जरूरी होता है, तो एक रात का वक्त ऐसा है जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो 5-10 मिनट अगर आप कंसंट्रेट होके लेटर लिखेंगे, ड्राफ्ट में सेव कर लेंगे और उसमें समय रहते उसे भेज देंगे तो यकीनन आपका ईमेल भी शामिल होगा और आपके जो सुझाव और जो हमें विचार है वो सुनने को मिलेंगे और उससे अवगत होंगे क्या आप चाहती हैं प्रोग्राम में, और अच्छा हम करें ये भी हमें जानने का मौका मिलेगा आपके पत्र के माध्यम से।
1: सर, मैं एक बात और जानना चाह रही हूँ कि जैसे रामपुर सोमवार को शुक्रवार को 2 दिन आता था, बट उसमें क्या है ना कि महीने में 1 या 2 हफ्ते नहीं आता है, तो ऐसा क्यों कर दिया गया सर?
0: सोमवार शुक्रवार में आप हेलो रामपुर की बात कर रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आवश्यक जो प्रसारण जो रिले होते हैं हमारे आकाशवाणी दिल्ली से या लखनऊ से हमें मिलते हैं, उस कारण जो ये प्रोग्राम है नहीं आ पाता है, और कोई आवश्यक जो प्रोग्राम लग जाते हैं जैसे दिल्ली से या लखनऊ से, तो हमें वो मतलब प्रसारित करने होते हैं जिस कारण ये प्रोग्राम जो है वो हट जाता है, और बाकी दिन ये सोमवार शुक्रवार को हमेशा आता है और आता रहेगा। आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: सर आज मैं जो गीत बता रही थी, मैं गीत भी बोल गई, कौन सा गीत बताया था सर मैंने, तो बातों बातों में, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद बात कर रही हूँ ना,
0: हाँ
1: इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ बात करने के लिए, इसलिए तो सर आपको मालूम है कौन सा गीत है, मैं मुझे याद नहीं आ रही कौन सा गीत है।
0: चलिए, हम आपको गीत सुनवा रहे हैं और उम्मीद है आपको पसंद आएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है और सावन का महीना भी आने वाला है।
1: बनता है, बिल्कुल आपने याद दिला दिया।
0: याद दिला दिया, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: रिमझिम
0: रिमझिम गीत सावन गए। अच्छा, मैं तो ऐसे ही बात करने लगा क्योंकि मानसून आ चुका है और बारिश भी अधिकतर हो रही है हर जगह। आपके कानपुर में बारिश का क्या हाल है?
1: सर मेरे कानपुर में तो बारिश हो रही है, 2 दिन से हो रही है, कल भी हो रही थी, आज भी बारिश हो रही है। और
0: अच्छा,
1: वही मानसून की बात करें तो आपके यहाँ का मानसून थोड़ा अभी कम है, बारिश
0: चलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारे यहाँ भी 2 दिन बारिश रही और आज नहीं हो पाई, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार जो है आने वाले दिनों में 4 या 5 या 6 तारीख में यहाँ भी बारिश हो जाएगी, और बारिश होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिएगा।
1: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमारा कॉल रिसीव किया, बहुत बहुत
0: ओके।

0: श्रोताओं, हमारे साथियों ने सावन का स्वागत करना अभी से शुरू कर दिया है। देखा आपने जो गीत सुना, हमारी जो पहली कॉलर थी इस गीत से पहले, उन्होंने इस गीत को पसंद किया था। आप सुन रहे कार्यक्रम हेलो रामपुर, आपके अपने साथी अखिलेश सक्सेना के साथ। आइए देखते हैं अगले साथी हमारे कौन हैं लाइन पर। हेलो,
1: हेलो रामपुर।
0: हाँ हेलो रामपुर,
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूँ।
0: गफ्फार भाई, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके परिवार में और आकाशवाणी परिवार में क्या हाल है?
0: हम भी सही हैं, आकाशवाणी परिवार में सब लोग सही हैं। आज इससे पहले कोई डिस्टरबेंस आया, आप अपनी पसंद का गीत बताइए, किस फिल्म का सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है ताजमहल। गाने के बोल में जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। और ललित सक्सेना जी को मेरा नमस्कार कह देना।
0: ललित सक्सेना जी को नमस्कार हम पहुँचवा देंगे और वो इस प्रोग्राम के माध्यम से आपका नमस्कार स्वीकार कर लेंगे, ऐसे उम्मीद है, वो सुन रहे होंगे प्रोग्राम। गफ्फार भाई
1: जी,
0: और जिंदगी में क्या चल रहा है आजकल?
1: प्रोग्राम सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के और केंद्र
0: आपके पत्र हमारे केंद्र पर आते हैं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम में और शामिल भी होते हैं। और हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप पत्र ऐसे ही लगातार जारी रखिए लिखना, और उसमें कोशिश कीजिए कि प्रोग्राम की प्रस्तुतिकरण, उसका आलेख, उसकी स्क्रिप्ट और कैसे वो प्रोग्राम आपको लगा और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या कुछ और हो सकता है, ये भी अगर आप वर्णनात्मक रूप से अच्छी तरीके से लिख के भेजेंगे तो और आपके सुझावों से हमें अच्छा प्रोग्राम बनाने की प्रेरणा मिलेगी।
1: वो बात आपकी ठीक है, बहुत लंबी चिट्ठी हो जाएगी, एक तो लंबी होती है और बहुत लंबी हो जाएगी।
0: नहीं नहीं, सीमित संक्षेप में हो सकता है, और आपका पत्र तो आता ही है, खैर अच्छी बात है। आपका गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और लीजिए सुनिएगा।
1: सुनने वालों के नाम है?
0: हाँ बिल्कुल,
1: राजे खान है, सुनियन खान है, शहनाज बाबू अंसारी है, मिराज अंसारी है, और इरफान खान साहब है, शायदा परवीन है, नवाबुद्दीन है, इकराम अली सुरेंद्र है, मसूद हुसैन है, शबनम अब्बासी है, शानूर अंसारी है, अबीर अहमद
0: ठीक है,
1: अनीसुर्रहमान, आकाश रस्तोगी, पम्मी पक्के वास्ते और नासिर राय इच्छा वास्ते।
0: ठीक है, हम आपके और आपके परिवार के लोगों की पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म ताजमहल का गीत, लीजिए सुनिएगा।
1: धन्यवाद।

0: हेलो रामपुर।
1: हेलो
0: हेलो रामपुर जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो रामपुर।
0: हाँ हेलो रामपुर,
1: शुभ संध्या।
0: शुभ
1: जी,
0: संध्या
1: मैं
0: जी
1: अनुप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि और असम से तालुका है।
0: आसाम से बोल रहे हैं, काफी दूर से आप बोल रहे हैं।
1: जी जी जी।
0: आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जी आज गाना सुना दीजिए, फिल्म का नाम है रॉकी और गाने का बोल ऐसे है, आ देखे जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, ऐसे करके गाने हैं। और कुछ दोस्तों को मैं याद करता हूँ।
0: जी बताएं।
1: पहले है आप जैसे दोस्त है और है बसंती लाल सूर्यवंशी जी, अविनाश जी, सतीश भाई और है उसका नाम है लुकेंद्र वर्मा जी, और है हमारे बहुत अच्छे सिस्टर है मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उसका नाम है बबीता बागेल जी, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी, और सिक्किम से हमारे बहुत अच्छे दोस्त है जिसका नाम है अर्जुन प्रधान, और मेरे एक दोस्त है उसका नाम है प्रेमजीत चक्रवर्ती जी, और ढेर सारे श्रोता भी सुन रहे हैं इस आकाशवाणी रामपुर का मन भावन प्रोग्राम सबके लिए, है ना?
0: ठीक है, हम आपके और आपके दोस्तों की पसंद पर फिल्म रॉकी की सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिएगा।
1: थैंक यू।

0: हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? हेलो, हाँ
1: हेलो रामपुर।
0: हेलो रामपुर,
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
1: सर, मैं तहसीलदार मोहल्ला पंजाबी विजय राठौर बोल रहा हूँ।
0: विजय राठौर बोल रहे हैं स्वार से। आपकी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा मोबाइल पास में लाइए।
1: जी सर, पास ही मोबाइल।
0: हाँ
1: जी
0: विजय, कैसे हैं आप?
1: बस बहुत अच्छे हैं सर, आप सुनाइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। और बताइए, गर्मी कैसी हो रही है स्वार में?
1: गर्मी बहुत हो रही है सर, 2 दिन से तो बारिश का मौसम नहीं बना है। अभी
0: अच्छा,
1: 2 दिन थी बारिश थोड़ी, तो मौसम अच्छा हो रहा था।
0: विजय टाइम बहुत कम है, 10:54 हो चुके हैं। अपनी पसंद बताइए जल्दी से।
1: सर खानदान फिल्म का गीत सुनवा देना, तुम ही मेरे।

श्रोताओं, अब समय आज्ञा नहीं दे रहा कि हम अगली कॉल शामिल करें, क्योंकि अगली कॉल शामिल करने के बाद गीत सुनवाना संभव नहीं हो पाएगा, समय बहुत कम है। आपको कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। हमारा पता है आपका पत्र मिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है patramila@rampur.gmail.com। आज का हेलो रामपुर कार्यक्रम समाप्त करने की अब अखिलेश सक्सेना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी हम फरमाइशी फिल्मी नगमों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार होंगे। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
4: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी के 11:10 हुए हैं। अब हमारे आज की दूसरी सभा के प्रसारण यहीं समाप्त होते हैं। कल सवेरे 5:50 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव और FM पर पुनः